FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 38 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की करेंगी
1: काशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मेरे मन में बसे हैं भोलेनाथ।

प्रभु आप तो कृपा के सागर हैं, प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर, राजेंद्र काचरू, सुमन कल्याणपुर, हरिओम शरण और साथियों को FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: चिंतन मननशील मनु की संतान होने से मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। परोक्ष प्रमाण रूप मति और श्रुत ज्ञानों के निमित्त कारण पांचों इंद्रियों के साथ मन को भी माना गया है।

0: गुण दोष के विचार की शक्ति वाला भाव मन मानव का परम उपकारी है। मनोबल या मानसिक शक्ति के द्वारा ही मानव ने महानतम कार्य संपन्न किए हैं। मनोयोग पूर्वक किए गए कार्यों की ही सफलता असंदिग्ध रहती है। जो व्यक्ति मन से ही अपने कार्यों में हार मान लेता है, वह अपने संकल्पित लक्ष्य को क्या तो वचन से प्रकाशित करेगा और क्या अपनी काया से उस कार्य रूप में परिणित कर सकेगा। कहा भी गया है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन की ही परतीत, रही मन मन ही लगाए के देख ले किन कोय, नर को वस करे वो कहा नारायण वस होए। महात्मा और दुरात्मा की पहचान करते समय भी देखा जाता है कि जो कुछ वह वचन से कह रहा है, क्या वैसा ही वह मन से सोच भी रहा है और उसे ही काया से कार्यान्वित भी कर रहा है या नहीं। महान आत्माओं के मन, वचन और कर्म के त्रियोग के सोचे, कहे और किए हुए विचार, वचन और कार्य में एक रूपता पाई जाती है, जबकि दुष्ट आत्माओं के मन, वचन और कर्म कभी एक रूप नहीं हो सकते, अतः कदापि विश्वसनीय नहीं होते। इसी प्रकार किसी भी वाचनिक उद्गार या कायिक कर्म की उत्पत्ति का प्रथम कारण भी मन को ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वचन से कही हुई कोई भी बात या काया से किया जाने वाला कोई भी कर्म पहले मन में ही अस्तित्व पाता है, वही सोचा विचारा जाता है। अतः उचित यही है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। इसीलिए गीता में भी अर्जुन द्वारा चंचल, प्रयत्नशील, बलवान और दृढ़ मन को वश में रखना, वायु के समान दुष्कर कहे जाने पर श्री कृष्ण द्वारा उसे अभ्यास द्वारा वैराग्य और वश में रखने का उपदेश दिया जाता है। मानवीय व्यक्तित्व के निर्माण में मुख्यतः तीन घटक हैं, शरीर, मन और बुद्धि। इनमें से मन की सामर्थ्य एवं विशेषताओं के महत्व से अनजान आज की सभ्य पीढ़ी संतुलन, धैर्य, साहस, समस्वरता आदि गुणों से हीन होती जा रही है। शौर्य, पराक्रम, जीवटता और सामंजस्य भी मनोबल की ही उपज है, जिनसे मानव निर्वाध गति से विकास की दिशा में अग्रसर होकर सफलताओं का वर्णन करता है। शरीर को स्वस्थ, सबल, समर्थ बनाए रखने में मन की ही मुख्य भूमिका होती है। अतः शरीर और बुद्धि के समान मन के विकास पर भी ध्यान दें। उत्कृष्ट जीवन और आचरण के लिए श्रेष्ठ चिंतन, अनुकूल वातावरण व अभ्यास के साथ मनोबल की भी विशेष आवश्यकता रहती है। मनुष्य को आगे बढ़ने और ऊंचे उठने की प्रेरणा व शक्ति मन से ही मिलती है। मन में जैसी कल्पनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं, कामनाएं एवं तृष्णाएं उठती हैं, उसी ओर वह क्रियाशील हो जाता है। अभ्यासशील बुद्धिमान पुरुष के मन की भी उद्दंड इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। इसलिए सारे सिद्धियों का मूल मंत्र संयम को ही मानना चाहिए, वही सभी पुरुषार्थों एवं योगों से बढ़कर है। हमारा वशीकृत मन लोक और परलोक में भी क्षण भर में जा सकता है। सभी प्रकार का ज्ञान मन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मन शुद्ध, पवित्र और संकल्पवान बन जाए तो जीवन की दिशा धारा ही बदल जाए। जिसने मन को जीत लिया, वह संसार को जीत लेता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय था जितेंद्रिया, आलेख महेंद्र मुक्त जैन का था और वाचन स्वर था डॉक्टर लिली खन्ना का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्रीराम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगी। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से कर दें। वृद्धावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

50 मिनट पर हमारे श्रोता सुनेंगे जानकारी कार्यक्रम खेती की बातें में। आज का विषय रहेगा पशुओं में क्रय प्रबंध। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत और 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 7 बजे का समय होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का और 7:18 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से। कार्यक्रम 31 मिनट पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी का। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता आज सुनेंगे ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे राधा रमन मंदिर वृंदावन। आलेख नरेंद्र आत्रेय का होगा और प्रस्तुति होगी आर के त्रिपाठी की। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कार्यक्रम गीतांजलि के कुछ नगमों का आनंद आप लेंगे। 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी वार्ता हिंदी साहित्य में पर्यावरण चेतना। वार्ताकार रहेंगे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। कर 25 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबोहवा। विषय रहेगा मानव का पर्यावरण से संबंध। आलेख और वाचन घनश्याम वर्मा का होगा। 5:30 पर हमारे श्रोता स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय रहेगा टीकाकरण। वार्ताकार होंगे रोहितास देवतिया जिला प्रतिष्ठण अधिकारी मथुरा। भेंटकर्ता होंगे ओपी सिंह। साथ ही हमारे श्रोता फिल्म संगीत का आनंद लेंगे 10:30 पर। 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। 11:30 पर आप पुनः आनंद लेंगे फिल्म संगीत का गाने सुहाने के अंतर्गत।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में परोया था अनुराधा पराठे और श्रीकांत पारगांवकर ने। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

12 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। साथ ही 12:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे ब्रजलोकगीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लावणी गायन, कलाकार होंगे घनश्याम दास। एक 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा वनिता लोक। आज की चर्चा का विषय रहेगा किशोरावस्था में पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे विशेष कार्यक्रम AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या है इसके अवसर एवं चुनौतियां। आलेख और प्रस्तुति होगी रेशमा अग्रवाल की और कार्यक्रम के संयोजक होंगे OP सिंह। 2:30 पर आप सुनेंगे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।

चाहिए जिससे कि हमको पशुधन से अधिक से अधिक लाभ मिल सके। पशुओं की संख्या यदि आपके पास 10 या इससे कम है तो प्राय उनको बांध कर रखने की बरसात में न कमी आ रही है जिसे टाइबर

या पारंपरिक या क्लोज व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था में पशुओं को बांध कर रखा जाता है और कुछ समय के लिए सुविधानुसार चराने के लिए खोला जाता है। दूसरी व्यवस्था में पशुओं को किराया खुला रखा जाता है। इस प्रथा को लूज हाउसिंग कहते हैं और इसका प्रयोग अधिक पशु होने पर भी किया जाता है। यह प्रथा अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। कोई भी व्यवस्था अपनाने पर पशु ग्रह को सबसे ऊंचे स्थान पर ही बनाना चाहिए, जिससे कि जल निकास की वहाँ पर उचित व्यवस्था हो। जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ दीवारों की ऊंचाई कम रखें, लगभग 2 मीटर, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में दीवारों की ऊंचाई अधिक रखनी चाहिए, जिससे कि गर्मी में छत की गर्मी पशुओं को प्रभावित न कर सके।

चाहिए जिससे कि फर्श की जो ठंडक है पशु को प्रभावित न कर सके। सर्दी के मौसम में कुछ को छोड़कर बाकी रोशनदान बंद कर देनी चाहिए जिससे पशुओं को सीधी सर्द हवा से बचाया जा सके। देसी पशुओं तथा बच्चों को सर्दी से बचाना बहुत जरूरी होता है। संकर गायों को सर्दी उतनी हानि नहीं होती है। साधारण परिस्थितियों में घर की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर सकती है जिससे पूर्वा तथा पछुआ दोनों हवाओं का लाभ गर्मियों में मिल सके। गर्मियों में पशुओं को रात में बाहर बांधते हैं और दिन में एक या घर में जहां हवा का आवागमन ठीक रहता हो। छत किसी भी सस्ते या स्थानीय सामग्री से बनाई जा सकती है। इन सबका मुख्य उद्देश्य पशु के आसपास का तापमान 25 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखने का होता है जो कि पशुओं के उत्पादकता के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रति गाय या भैंस छाए हुए ग्रह का लगभग 2 वर्ग मीटर तथा लगभग 11 वर्ग मीटर खुले स्थान की आवश्यकता होती है। जो पशु दिन में चरने जाते हैं उनमें यह खुला स्थान आवश्यक नहीं है। खाने की नाद की ऊंचाई 80 से 85 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर रख सकते हैं और इसकी गहराई 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस नाद की 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर लंबाई प्रति तौर पशु उचित रहती है। छोटी उम्र के पशुओं में कम तथा सानों के लिए यह नाद अधिक होनी चाहिए। खड़े होने के स्थान के पीछे 35 सेंटीमीटर चौड़ी एक नाली होनी चाहिए। फर्श तथा नाली का ढाल 2.5% होना चाहिए। तो इस तरह आपके पशुओं की व्यवस्था उनके ठहरने की व्यवस्था

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी, विषय था पशुओं का गृह प्रबंध और वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्वीय त्रिराष्ट्र आधिकारिक यात्रायाः द्वितीय चरणे उत्तर मैसेडोनिया देशं सम्प्राप्तवती. कस्यश्चित् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते. राष्ट्रपतिः स्व समकक्षया गोर्डाना सिल्जानोस्का दावकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति. सा उत्तर मैसेडोनिया देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टिजन मिकोस्की तथा संसदः अध्यक्षम अफ्रीम गाशी इत्येताभ्यां सह अपि

शोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म गाइड में, और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है जानवर।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म जब जब फूल खिले के गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से।

0: संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में विशेष जांच दल SIT के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा, अब 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा।

0: तथा कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन कल विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। एक रिपोर्ट।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। श्री मोदी ने सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और आवास की चाबी भी सौंपी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है।
2: हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है और मैं देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर, और आने वाला हर श्रद्धालु अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको देकर के जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कहीं कहीं अनियमित बारिश से पैदा हुई सूखे की समस्या और कुछ स्थानों पर अतिवर्षा से संभावित बाढ़ की चुनौती को लेकर कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ हो या सूखा, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, किसानों की फसल और आम जन की आजीविका की रक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री योगी ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले की परिस्थितियों के अनुरूप ही राहत और बचाव की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जन कल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जीरो पावर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड बनाने और सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा करते हुए इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करके परियोजना को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी की पाती साझा करते हुए युवाओं से कम एक कौशल सीखने की अपील की।
3: मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपील की है कि युवा यह संकल्प लें कि कम से कम एक कौशल सीखकर समाज और प्रदेश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला अपना प्रदेश कौशल से जुड़कर न केवल विकसित उत्तर प्रदेश बल्कि $1 trillion अर्थव्यवस्था के निर्माण का पथ भी प्रशस्त करेगा। श्री योगी ने युवाओं को याद दिलाया कि कौशल ही आत्मनिर्भरता का आधार, स्वाभिमान का संबल और विकसित होने की राह पर अग्रसर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है। कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले में SIT के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा ताकि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले का राजनीतिकरण न करने के निर्देश भी दिए। मुख्य

0: न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि श्रीराम मंदिर चढ़ावा विवाद अपराध का एक साधारण मामला है और न्यायालय का काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया था और अब राज्य पुलिस इसकी जाँच कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कल मेरठ में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों के अधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संवेदनशील स्थानों सहित सभी प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। DGP राजीव कृष्ण ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकार के तय नियमों का पालन कराया जाएगा।
2: इस बार भी जो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, कांवड़ की हाइट, कांवड़ के वॉल्यूम लेवल, डेसिबल और इस साल के कुछ नए चैलेंजेस हैं, महंगाई व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ कांवड़ के श्रद्धालु हैं उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनके लिए ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे कि कांवड़ के मार्ग हैं वो क्या रहेंगे। हमारा प्रयास यही है कि सबके
1: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में UP T20 लीग के सीजन 4 के टिकट लॉन्च किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठा रही है।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए, यूथ के लिए, विशेष रूप से प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी स्पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष रूप से उन्होंने ख्याल रखा है। स्पोर्ट की नई नीति लागू करके स्पोर्ट्स पर्सन को पुलिस में, अन्य सभी विभागों में सरकारी नौकरी देने का, और हमारे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें कि उनको DSP और तहसीलदार तक नौकरी देने की व्यवस्था की गई है।
1: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं। बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। पीलीभीत जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण आज वहां कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कल तक राज्य भर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में विशेष जांच दल SIT के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा। अब 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा तथा कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंची। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: संतान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान।

0: ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, वंदे ब्रज वसुंधराम। ब्रज की आप पावन धरा को नमन करें, वंदन करें और आपको सबसे पहले सुनना में यह ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे आज को विषय है राधा रमन मंदिर वृंदावन। आलेख नरेंद्र आत्रे को है और प्रस्तुत करता है आर के त्रिपाठी। तो भैया आनंद लो,

ब्रज की मंदिर ठाकुर द्वारे रूपक माला के अंतर्गत प्रस्तुत है आकाशवाणी मथुरा वृंदावन द्वारा तैयार रूपक श्री राधा रमन मंदिर वृंदावन। आलेख श्री नरेंद्र आत्रे का है, संयोजक हैं श्री कृष्ण शरद और प्रस्तुतकर्ता राम किशोर त्रिपाठी।

0: गोपाल भट्ट का जन्म विक्रम संवत 1597 माघ कृष्णा तृतीया की मध्यान वेला में कावेरी तट स्थित श्री रंगम के समीप वेलंगुंडी गांव में हुआ। दक्षिणात्य द्रावण ब्राह्मण इनके पिता श्री वेंकट भट्ट रामानुज संप्रदाय के विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुयायी थे।
1: भट्ट परिवार में जन्मे इस गौर वर्ण सुंदर रूप राश बालक को विद्वत्ता विरासत में मिली। एक निजी संस्कार लेकर भी जन्मा था ये बालक। वो था मधुर सुकोमल वाणी में प्रभु नाम संकीर्तन। भोली सूरत से बाल सुलभ वाणी में जब ये प्रभु नाम संकीर्तन करता था तो ग्रामवासी आनंद मग्न होकर सुर में सुर मिलाते हुए झूमने लगते थे।
0: भक्ति भाव की उर्वरा भूमि में प्रभु नाम संकीर्तन का बीज संजोए इस बालक पर कृपा दृष्टि करने को अवतारी श्री चैतन्य नीलाचल से दक्षिण की ओर पधारे।
1: श्री चैतन्य की माधुरीमयी मंगल संकीर्तन धुन ने श्री रंगनाथ मंदिर के ऐश्वर्य परक उपासकों को अभिभूत कर दिया। वेंकट भट्ट सावनत उन्हें घर लेवा ले आए। चातुर्मास अवधि वहीं रुकने का प्रबल आग्रह किया।
0: प्रभु ने वहां अपने प्रिय पात्र वेंकट के पुत्र को पहचाना, अपने दोनों चरण उसके मस्तक पर रख दिए और उडुपी के नर्तक गोपाल का स्मरण करते हुए बालक को गोपाल नाम से पुकारा। ये हुआ उनका ब्रज लीला परक नाम।
1: माता पिता के निधन के बाद गोपाल वृंदावन पधारे। वे यहाँ केशी तीर्थ स्थित रासस्थली के कृष्ण लीला कालीन वट वृक्ष के नीचे रम्य बालुका स्थली में अवस्थित हुए।
0: यहाँ आकर गोपाल की भावदशा ही बदल गई। वे सदा प्रिया प्रियतम भाव में निमग्न रहते। दक्षिण के भरतनाट्यम के आधार पर उन्होंने रास की स्थापना की।
1: गोपाल के इसी साधना काल के मध्य महाप्रभु चैतन्य देव ने नीलाचल से वृंदावन आ रही वैष्णव मंडली के हाथ एक पत्र, अपना डोर, कोपीन, बहिर्वास तथा बैठने का पट्टा काष्ठासन अपने प्रिय शिष्य गोपाल भट्ट के लिए भेजा।
0: श्री सनातन व श्री रूप गोस्वामी की आज्ञा से गोपाल पट्टाभिषिक्त हुए और माधव गौड़ेश्वर पीठ स्थापना का प्रथम पदन्यास हुआ।
1: आश्विन कृष्णा पंचमी को संवत 1590 में श्री चैतन्य का तिरोभाव हो जाने पर समस्त वैष्णव समाज में घोर अवसाद छा गया।
0: भक्त हृदयों को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण के 3 विग्रह उस समय वृंदावन में स्थापित थे, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी व श्री गोविंद जी।
1: श्री गोविंद देव जी की मंगला, श्री मदन मोहन जी का श्रृंगार तथा श्री गोपीनाथ जी का सांध्य दर्शन करना प्रत्येक वैष्णव अपना पुनीत कर्तव्य समझता था।
0: श्रृंगार सेवा में गोपाल बड़े निष्णात थे। दाक्षिणात्य एवं ब्रज की पारंपरिक पद्धतियों के जादुई सम्मिश्रण से इन तीनों ही श्री विग्रहों का ऐसा श्रृंगार करते कि वैष्णवों को अन्य किसी के भी द्वारा की गई श्रृंगार सेवा स्वीकार ही न होती। गोपाल पर भी इन तीनों ठाकुरों की रूप राशि का कुछ कम रंग नहीं चढ़ता था।
1: ऐसा सुंदर श्रृंगार सर्ज और उसी के शालिग्राम ऐसे जहां श्रृंगार की न गुंजाइश न दरकार, जाई को बटेश्वर ताई को ठौर नाए, उनके दिल में ऐसी हूक सी उठती कि मेरे ही शालिग्राम विग्रह में मुझे तीनों विग्रहों की रूप माधुरी का दर्शन हो।
0: दिन और रात इस आर्त की एक ही पुकार थी, हे ठगीले ठाकुर, अशरण शरण, विश्व मन हरण,

0: राधा रमन तुम्हारा दास बहुत तड़प चुका है, रूप रस माधुरी पिलाकर तप्त बदन को शांत कर दो नाथ।
1: वैशाख पूर्णिमा की प्रभात बेला भगवान चैतन्य श्री कृष्ण स्वरूप में राधा भाव द्युति समाहित कर स्वयं प्रकट हो गोपाल भट्ट को जगाते हैं। उठो गोपाल भट्ट, तुम्हारी प्रेम डोर से बंधा मैं आ गया हूँ। गोविंद की मुख कांति, गोपीनाथ का शोभित वक्ष स्थल तथा मदन मोहन की चरण माधुरी एक ही श्री विग्रह में संजोए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तुम मेरा प्राण मन से श्रृंगार करो।
0: गोपाल तंद्रा से चौंक उठे, अविलंब स्नान कर मंजूषा खोली, कोटि कंदर्प लावण्य रूप सजाए, अपरूप षोडशांगुल परिमाण नव नील नीरद श्याम विग्रह वहाँ विराज रहे हैं।

0: परिमाण नव नील नीरद श्याम विग्रह वहां विराज रहे हैं। ये विक्रम संवत 1599 की वैशाख पूर्णिमा थी।
1: महाअभिषेक की सामग्री जुटाई गई, तिल गुड़ का भोग लगाया गया, श्री राधा रमन नाम धराया और गुण मंजरी दास ने गाया।

0: गोपाल भट्ट ये जानते थे कि इस छबीले रंगीले ठाकुर की सेवा सन्यासी द्वारा नहीं अपितु सद गृहस्थ द्वारा ही संभव है। अतः उनकी आज्ञा पर उनके ही शिष्य गोपीनाथ के अनुज दामोदर गोस्वामी को सेवायत नियुक्त किया गया।
1: जयपुर नरेश राजा मानसिंह के पुत्र भगवंत दास ने लाल पत्थर निर्मित अत्यंत सुंदर एक कलात्मक दोल भेजा, जो रासस्थली में वट वृक्ष के नीचे लगा है। इसी में श्री राधा रमन जी विराजते थे।
0: लाल पत्थर के दोल के मध्य श्वेत छत्रीदार संगमरमर का सिंहासन ऐसा शोभित होता है जैसे श्री कृष्ण के रक्त चरण कमल के मध्य नख प्रभा छिटक रही हो।
1: इसी योग पीठ स्थल दोल स्थली को दामोदर ने सुरक्षित मंदिर का रूप दे श्री जी सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। ये मंदिर के मुख्य द्वार के बाएं पार्श्व में स्थित है। इसी के ठीक पीछे श्री गोपाल भट्ट जी की समाधि और वेणकूप विद्यमान है।
0: कालक्रम आगे बढ़ा और इसके साथ ही बढ़ा देव वन से पधारे श्री दामोदर गोस्वामी का परिवार। आवास निवास की समस्या जटिल हो चली थी।
1: उसके समाधान हेतु रास स्थली से सटे एक विस्तृत भूभाग को यमुना पार के गौरववादी राजपूत जमींदार से 80 मन अनाज 84 कलदार रुपए और टूटे हुए एक सींग वाला बैल देकर खरीदा गया और इसकी घेराबंदी करा दी गई।
0: ये घेरा राधा रमन घेरा कहलाया तथा दामोदर वंशज राधा रमणी गोस्वामी प्रसिद्ध हुए।
1: राधा रमणी गोस्वामी श्री चैतन्य दास की प्रेरणा से दिल्ली के एक अग्रवाल बांस व्यवसायी ने राधा रमन घेरा के मध्य संबत 1758 के आसपास एक सुदृढ़ तथा मध्यम आकार वाले मंदिर का निर्माण कराया।
0: बहुमूल्य रत्न जड़ित आभूषणों के साथ अपार धन संपत्ति श्री जी के चरणों में समर्पित की। इस बांस व्यवसायी को व्यापार में हुए अपार लाभ को श्री जी की कृपा मान उसने ये सेवा की थी। इस मंदिर में श्री राधा रमन जी प्रायः 125 वर्ष तक विराजे।
1: कालांतर में लखनऊ के नवाबों के एक रत्न परीक्षक और सेवक श्री बिहारी लाल शाह को श्री जी की प्रेरणा प्राप्त हुई।
0: उन्होंने प्राचीन मंदिर से लगे हुए भूभाग पर संवत 1889 में एक

0: परम मनोहर मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया।
1: शाह जी की कल्पना 5 वर्ष में साकार हुई और माघ शुक्ला पंचमी संवत 1884 में मंदिर का पाठोत्सव संपन्न हुआ।
0: श्री बिहारी लाल द्वारा लखनऊ में निर्मित स्वर्ण रजत सिंहासन पर श्री राधा रमन जी विराजे। श्री शाह ने अमूल्य रत्न जड़ित आभूषण तथा स्वर्ण रजत पात्र श्री जी के श्री चरणों में अर्पित किए।
1: इसके कुछ दिन बाद ही शाह बिहारी लाल की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र श्री गोविंद लाल तथा पौत्र रघुवर दयाल, मक्खन लाल, कुंदन लाल तथा फुंदन लाल शाह ने निर्माण के अवशेष कार्यों को संबत 1900 के लगभग पूरा कराया। शनई शनई मंदिर के यश तथा वैभव में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई, जो आज तक जारी है।
0: श्री राधा रमन जी अपने ही स्वरूप में श्री राधा नाम समाये हुए हैं। मंदिर में श्री राधा जी का पृथक विग्रह नहीं है, एक संपुट में स्वर्ण पत्र पर राधा नाम अंकित है।
1: यही नाम सेवा यहाँ हुआ करती है। यहाँ श्री राधा द्युति संबलित श्री गौर ही श्री राधा रमन विग्रह रूप में अवतरित हुए हैं। गौर का तेज उनमें स्वतः ही समावेश है।
0: माधव गौरेश्वर संप्रदाय के इस मंदिर में महाप्रभु श्री चैतन्य जी की कंठ डोर, कोपीन, बहिर्वास तथा पट्टा की भी प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजा होती है तथा विशेष उत्सवों पर इनका भी दर्शन भक्तों को कराया जाता है।
1: श्री जी की दैनिक सेवा यहाँ राग रसमयी उपासना विधि से की जाती है। इसमें ऐश्वर्य जनित अलगाव नहीं, अपितु माधुर्य मिश्रित श्री चरणों में अनुराग ही अनुराग है।
0: श्री राधा रमन के दर्शनाभिलाषी भक्तों के लिए दर्शनों का कोई समय बद्ध निश्चित कार्यक्रम नहीं है, ये भोग सामग्री तैयार होने पर निर्भर है। भोग में कोई भी वस्तु बाहर की नहीं धरी जाती है, यहाँ तक कि बाहर से अग्नि व माचिस का भी प्रयोग नहीं होता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता है यहाँ। और श्री जी के प्राकट्य के समय गोपाल भट्ट द्वारा मंत्रों से अभिमंत्रित कर जो अग्नि पैदा की गई थी, वो आज भी अखंड प्रज्वलित है तथा उससे ही कच्ची और पक्की रसोई का परिपाक होता है। गंधक लगाकर तैयार की गई अरहर की पतली तीलियों की मदद से उसी आग द्वारा दीपकों का प्रज्वलन हुआ करता है यहाँ।
0: दर्शनों के जैसे खुलने का कोई समय नहीं है, उसी प्रकार बंद होने का भी निश्चित समय नहीं है। परम कृपामय प्रभु दर्शनार्थियों के मंदिर प्रांगण में उपस्थित रहने तक दर्शन देते हैं।
1: प्रिया जी यहाँ प्रीतम के साथ परकीय भाव से विराज रही हैं। प्रिया प्रियतम का परस्पर प्रेम ही उनकी एक पावन निधि है।
0: रसराज कृष्ण एवं प्रीति रीति प्रवीणा ललित किशोरी जी का परस्पर मान मनोवल एवं मिलन की अधीरता लिए विवलता नित नवीन माधुर्य का हेतु है। श्री गोपाल भट्ट सेवित रम्य रेणुका में रास स्थली ही नित्य नव निभृत निकुंज लीलाओं की लीला स्थली है।
1: प्रणय के लीरत प्रिया प्रीतम के नित्य विहार में सेवा से कोई धृष्टता न हो जाए, इसलिए प्रत्येक बार दर्शन खुलने से पहले सेवायत द्वारा निज मंदिर की देहरी पर दंडवत कर चरणामृत ले देहरी धूल मस्तक पर लगा 3 बार ताली बजाकर कपाट खोलने की यहाँ परंपरा है।
0: प्रातः सर्वप्रथम मंगला दर्शन होते हैं तथा 3 बत्तियों से मंगला आरती होती है। इसके पश्चात श्री विग्रह का स्नान व अल्प श्रृंगार होकर धूप आरती होती है। भगवान के आगे भोग में कुलिया, रबड़ी, दही, मक्खन, दूध, लड्डू, मठरी, शकरपारे, मेवा आदि धरे जाते हैं।
1: प्रतिदिन मंदिर में ही ताजा दूध की बनी खीरसा से भरी गई मिट्टी की कुलिया ही श्री राधा रमन जी का मुख्यतम प्रसाद है। इन्हें संप्रदाय में अमृत केले नाम से जाना गया है। प्रत्येक भोग के बाद तांबूल अर्पित किया जाता है।
0: इसके उपरांत प्रभु विग्रह का पूर्ण श्रृंगार होकर फिर श्रृंगार आरती होती है। इसके बाद कच्ची रसोई प्रस्तुत होने पर श्री जी भोजनालय में पधारते हैं।
1: कच्ची रसोई में खीर, कड़ी, भात, मीठा भात, मूंग की दाल, अरहर की दाल, चना उड़द की दाल, दही बड़ा, मिस्से, मैदा और आटे के फुलका, मीठे फुलका आदि भोग में रहते हैं।
0: यहाँ जितना भी भोग बनता है सारा का सारा ही श्री जी के समक्ष रखा जाता है।
1: भोग उसर जाने के बाद राजभोग आरती संपन्न होकर श्री जी मध्यान्ह में श्री राधा कुंड लीला भावना से शयन कुंज कक्ष में पधारते हैं।
0: संध्या समय दिवस कुछ शेष रहने पर उत्थापन आरती होती है। कुलिया, लड्डू, मठरी, फल मेवा आदि भोग सामग्री अर्पित की जाती है। गर्मियों में शरबत, शिकरन, ठंडाई

0: अतिरिक्त रहते हैं। भोग उसर जाने के बाद दर्शन पुनः खुल जाते हैं।
1: संध्या समय श्री कृष्ण गोचारण से घर लौटते हैं।

0: माँ यशोदा अपने लाल पर नौ निधियां न्योछावर करती है। इस भाव की प्रतीक नौ प्रज्वलित बत्तियों से श्री विग्रह के आगे से तथा पीछे से संध्या आरती की जाती है।
1: ऋतु के अनुरूप शीत अथवा उष्ण जल से प्रभु का अंग सम्मार्जन कर सुवासित इत्र लेपन के पश्चात अल्प श्रृंगार तथा कोपीन मात्र धारण करा सिंहासनासीन कराया जाता है और दर्शन खुल जाते हैं।
0: इस समय दिन भर के गोचारण परिश्रम से लाल को विशेष भूख लगी होती है। माँ यशोदा वात्सल्य से भरकर कहती है,
2: ओ लाल लाई।
0: मंदिर में ओलाई के दर्शन खुल गए कि उच्च ध्वनि के संग दर्शन खुल जाते हैं।

0: 56 प्रकार की अनसखरी सामग्री श्री जी के ब्यालू भोग में अर्पित की जाती है। श्री राधा रमन ब्यालू की जय। पद गायन के बाद पुनः दर्शन खुलते हैं और भोग के दर्शन खुल गए ये उच्च स्वर ध्वनि की जाती है।
1: श्री राधा रमन जी की सेवा में ब्यालू के साथ ही दूध धरने का रिवाज नहीं है, यहाँ दूध भोग के दर्शन अलग से होते हैं।
0: रात्रि में शयन काल के समय प्रभु के नेत्रों में नींद झुक आती है।

उनकी भाव दशा में कोई व्यवधान न हो जाए, अतः शयन आरती में शंख घंटा ध्वनि न करके अर्चक अत्यंत मंद मृदु स्वर में अपने हाथ की घंटी बजाया करते।

0: श्री जी हमें छोड़कर शयन कक्ष में पधार जाएंगे, ऐसा जानकर भक्तों की इस समय दर्शन की आतुरता और निद्रालस्य वातावरण को देखते ही बनता है।
1: श्री गौर भये राधा रमन उन्हीं श्री गौर की कोपिन मात्र ही स्मृति स्वरूप धारण कर श्री जी शयन कक्ष में पधारते हैं।
2: पौड़े श्याम जननी गुण गावत।
1: ऐसी सात मंगलकारी आरती व नौ दिव्य दर्शन का सुख भक्तों को प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। ये हैं मंदिर में पधारे कुछ दर्शनार्थी।
3: अमी तोरुषी चटर्जी, अमी कोलकाता से केसची, अमी बिंदावन।

0: কয়েকদিন আগে এসেছি আর অনেকগুলো মন্দির দর্শন করলাম। ওর মধ্যে শ্রী রাধা রমণের মন্দির আমাকে খুবই ভালো লাগলো। প্রভুর শ্রী বিগ্রহ দেখে পরে আমার এমনি একদম অনেকই দিব্য অনুভূতি হয়েছে। আর আমি কামনা করি কি আগেও আমি বারবার বৃন্দাবনে আসতে পারি আর শ্রী রাধা রমণের দর্শন করতে পারি।
1: मैं अनिल कुमार, मुझे यहाँ राधा रमन मंदिर में आकर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और यहाँ का मंदिर बहुत ही शांतिपूर्ण है और इसकी मूर्ति बड़ी ही अनोखी है।
2: मैं बनारस से आया हूँ, मेरा नाम विपुल रॉय है। मैं अपने माता पिता के साथ में यहाँ ब्रज के मंदिरों को घूमने आया और यहाँ श्री राधा रमन जी के मंदिर के प्रांगण में आकर के मुझे बहुत ही अच्छी और बहुत ही शांति भरी अनुभूति हो रही है।
3: श्री जी की पूजा में पोशाकों के रंग का अपना अलग विधान है, अलग क्रम है। वे रवि मंगल को लाल, सोम को गुलाबी, बुध को हरी, गुरु को पीली, शुक्र को सफेद, शनि को काली नीली पोशाक धारण करते हैं। कोई नवीन पोशाक धारण कराने में ये रंग की मर्यादा नहीं है।
4: अक्षय तृतीया से शरद उत्सव तक जांघिया, शीत ऋतु में अंगरखी पैजामा, व्यंजन द्वादशी से बसंत पंचमी तक लबादा, दुशाला, दुलाई और मोजा धारण कराए जाते हैं।
3: ग्रीष्म काल में मोतियों के आभूषण तथा शीत ऋतु में रत्न जटित स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार हुआ करता है यहाँ। दैनिक पूजा में सिरपेच, एकादशी को चूड़ा तथा पूर्णिमा को मुकुट धारण कराया जाता है।
4: श्री राधा रमन जी अकेले ठाकुर हैं जिनका जन्मोत्सव एक ही वर्ष में दो बार मनाया जाता है। एक बार जन्म पूनो अर्थात वैशाख पूर्णिमा को और दूसरा जन्माष्टमी पर।
3: जन्माष्टमी के अवसर पर भी महाभिषेक दिन में ही संपन्न होता है यहाँ, मध्य रात्रि में नहीं, जैसा कि अन्य सभी मंदिरों में परंपरा है।
4: राधा रमणी गोस्वामी द्वारा इन दोनों ही अवसरों पर अपने श्री जी के मंगल हेतु बड़े ही विधि विधान से मूल शांति कराई जाती है।
3: नवीन यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, काजल लगता है, अपने सर्वोत्तम श्रृंगार और अनोखी छटा के साथ प्रभु स्वर्ण सिंहासन पर विराजते हैं, राई नोन उसारा जाता है और अंत में गोस्वामी जन प्रभु को अनेकानेक आशीर्वाद देते हैं।
4: इस अवसर पर अन्य भोग सामग्री के साथ श्री राधा रमन जी का आदि भोग तिल गुड़ भी धरा जाता है। इस तिल गुड़ भोग को प्राप्त कर लेने वाले भक्त जन अपने को बड़ भागी मानते हैं।
5: अभी आपने आनंद लियो ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे, विषय हो राधा रमन मंदिर वृंदावन, आलेख नरेंद्र आत्रेय को और प्रस्तुत करता है आर के त्रिपाठी। तो यही के संग आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। आप सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: मूस कॉपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी।

0: निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में

0: सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और PV सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with a North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance, NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA Alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with her North Macedonian counterpart Gordana Siljanovska Davkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Miskosti and Speaker of the Assembly Afrim.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: ये सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को, फिल्म का नाम है सिलसिला।

0: अभी आपने सुना आशा भोसले को फिल्म उमराव जान में, और आइए सुनते हैं किशोर कुमार आशा भोसले को, फिल्म का नाम है नमक हलाल।
1: अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

किशोर कुमार आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म नमक हलाल में, और आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को। फिल्म का नाम है साथ साथ।

में आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में गीतांजलि के कुछ नगमों का आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: जगजीत सिंह के गाए फिल्म प्रेम गीत के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता, हिंदी साहित्य में पर्यावरण चेतना। वार्ताकार हैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। सुनते हैं छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: पर्यावरण शब्द आवरण में परि उपसर्ग के संयोग से निष्पन्न है। परि का तात्पर्य हमारे चारों ओर का, आवरण का तात्पर्य ढकना है, अर्थात हम सभी तथा हमारा यह संसार, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि तथा वन, वृक्ष, नदी, पहाड़, समुद्र एवं पशु पक्षी आदि से आवृत है। समस्त कारकों एवं पदार्थों का समग्र रूप ही पर्यावरण है। पर्यावरण शब्द एवं उसका अर्थ अत्यधिक व्यापक है, जिसमें संपूर्ण चराचर जगत समाहित है। समस्त जड़ चेतन, वनस्पति, प्राणी इसी में पैदा होते हैं, जीवित रहते हैं, पुष्पित एवं पल्लवित होते हैं एवं समस्त क्रियाकलाप भी पर्यावरण में समाहित हैं। हमारे इस भौतिक नश्वर शरीर की संरचना भी प्रकृति के इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। हिंदी साहित्याकाश के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत उल्लेख किया है कि मानव का शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत अति अधम शरीरा। हिंदी साहित्य एवं भारतीय दर्शन स्वयं संपूर्ण रूप से पर्यावरण केंद्रित रहे हैं। पर्यावरण भारतीय जीवन दर्शन एवं साहित्य में आदिकालीन चेतना है। वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से विदित होता है कि तत्युगीन सभ्यता के व्यक्ति प्रकृति की पूजा किया करते थे। उनके लिए पृथ्वी उनकी माता थी, जिसकी रक्षा के लिए वे अपने समस्त कर्तव्यों का पालन किया करते थे। माता भूमि है, पुत्रोहम पृथिव्याः। इस प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन

पर्यावरण चेतना से ही अनुप्राणित है। वैदिक युग से आज तक हमारे जीवन में तुलसी, बरगद, पीपल आदि वृक्षों का बड़ा सम्मान किया जाता है तथा इनकी पूजा भी की जाती है। इन वृक्षों में हमारे जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी औषधीय गुण समाहित हैं एवं उनके प्रकृति के मध्य माता पुत्र का संबंध था, जिसका उल्लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुटज नामक निबंध में भी प्राप्त होता है। यह धरती मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ, इसीलिए मैं इसका सम्मान करता हूँ और मैं धरती माता के प्रति नतमस्तक हूँ। हिंदी साहित्य आदिकाल से ही पर्यावरण से प्रभावित रहा है। प्रकृति के प्रति प्रेम, संरक्षण, आत्मानुभूति तथा किसी को भी हानि न पहुँचाने का भाव, चाहे वह मनुष्य हो या पर्यावरण, हिंदी साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। आदिकाल से हिंदी साहित्य में प्रकृति के अनावश्यक दोहन अथवा शोषण का विरोध प्राप्त होता है। हिंदी के कवियों यथा कबीर, रविदास, गुरु नानक व अन्य साहित्यकार यथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि ने प्राकृतिक अनावश्यक शोषण अथवा दोहन के विरुद्ध स्वर गुंजायमान कर मानव को आत्मानुभूति के प्रति प्रेरित किया। आदिकालीन हिंदी साहित्य में रासो काव्य में प्रकृति का आलंबन व उद्दीपन प्रचुर उपलब्ध होता है। मिथिला के कोकिल कवि विद्यापति विरचित पदावली प्रकृति चित्रण की दृष्टि से अद्वितीय है। ऋतुराज वसंत का स्वागत किसी राजा के आगमन पर उल्लसित वातावरण के समान चित्रित किया गया है। यह प्रकृति के प्रति ममत्व का आत्मानुभूतिपूर्ण निदर्शन है। आयल ऋतुपति राज बसंत, धाओल अतिकुल माधव पंथ, दिनकर किरण भेल पौगंड, केसर कुसुम धयेल हे दंड, नृप आसन नव पीठत पात, कांचन कुसुम छत्र धरुमात, मौल रसाल मुकुल भेल ताब, समुकहें कोकिल पंचम गाय। ये तदुपरांत जब हम भक्तिकालीन हिंदी काव्य साहित्य कवियों की साधना में आध्यात्मिक तन्मयता एवं एक निष्ठता के भेव का दर्शन, भाव का दर्शन करते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी की रचनाओं में अनेकानेक स्थानों पर प्रकृति का रहस्यात्मक वर्णन प्राप्त होता है। यत्र तत्र पर्वत, वन, पशु पक्षी, नदी, उद्यान, उपवन का नैसर्गिक एवं उल्लास से ओतप्रोत भंगिमाओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। पर्यावरण संवर्धन हेतु गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस में लक्ष्मण एवं सीता को वृक्षारोपित करते हुए दर्शाया है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सीय कहूं लखन लगाए। भक्तिकालीन सूर के काव्य में प्रकृति की रूप माधुरी का सुरम्य चित्रण प्राप्त होता है। सूर के काव्य में प्रकृति की षड ऋतुओं का रूप सौंदर्य दर्शनीय है। बसंत ऋतु का मादक चित्रण उसमें सुलभ होता है। ऐसे ही शरद ऋतु की मनोहर छटा का वर्णन करते हुए सूरदास जी व्यक्त करते हैं कि सरोवर में नव कमल विकसित हो चुके हैं, शीतल चांदनी से संपूर्ण वन प्रदेश ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि स्नान कर रहा हो, आकाश निर्मल हो गया है, कुंजों में प्रसून सुगंध विकीर्ण होने लगी है, शीतल मंद सुगंधित वायु रोम रोम को रोमांचित कर रही है। आज निशोभित शरद सुहाई, शीतल मंद सुगंध पवन बह, रोम रोम सुखदाई। अथवा शरद चांदनी रजनी सो है, वृंदावन श्री कुंज, प्रफुल्लित सुमन विविध रंग जहां, तहां कूजत कोकिल पुंज। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य अप्रतिम होता है। समस्त धराधाम हरितिमा पूर्ण हो जाती है, सरोवर जल से आप्लावित हो उठते हैं, दादुर मोर चातक कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। ऐसी वर्षा ऋतु को विरहिणी अपने प्रियतम के विरह में कैसे काट सकती है। कैसे कह भरी हैं दिन सावन के, हरित भूमि भरे

सलिल सरोवर मिटे मग मोहन आवन के, दादुर मोर सोर चातक पिक सूनी निशा सिरावन के, गरज चहूं घन घुमण दामिनी मदन धनुष धर धावन के। आधुनिक हिंदी काव्य का सृजन यूरोप के औद्योगिकीकरण के समानांतर होता है, जहां प्रकृति मात्र सौंदर्य का उपादान रहकर क्रूर दृष्टि का शिकार होना आरंभ हो जाती है। कश्मीर सुषमा में श्रीधर पाठक प्रकृति की मनोहारी छटा बिखेरते हैं, तो हरिओध रचित प्रिय प्रवास में राधिका की हृदय व्यथा में प्रकृति के उपादानों में व्यंजित होती है, तो कृष्ण भी अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति में प्राकृतिक प्रतीकों का आश्रय लेते हैं। उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुज मुख को प्रायशः देखता हूँ। प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु हो। मैं प्रकृति की छटा का सुंदर चित्रण मैथिली शरण गुप्त के साकेत, पंचवटी, यशोधरा, सिद्धराज आदि काव्यों में सुंदर स्वरूप में चित्रित हुआ है। चंद्र ज्योत्सना में रात्रिकालीन वेला की प्राकृतिक छटा का मन भावन वर्णन दर्शनीय है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। प्रकृति की भव्यता पंत प्रसाद और निराला के काव्य में यत्र तत्र दृष्टिगोचर होती है। ये कवि पर्यावरण की रमणीयता में इतने मुग्ध हो जाते हैं कि प्रेयसी का प्यार भी इन्हें तुच्छ लगता है। पंत का पर्यावरण प्रेम दर्शनीय है।

0: चन। इसी प्रकार सांध्यकालीन छटा निराला को सुंदरी के रूप में आभासित होती है। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कामायनी आधुनिक काल का उत्कृष्ट महाकाव्य है जिसके आरंभ में प्रकृति के भयानक रूप का वर्णन है जिसमें जल प्रलय के पश्चात सर्वस्व विनष्ट हो जाता है। संभवतः प्रसाद जी का यह संकेत उद्दाम लालसाओं से ग्रसित उन लोगों के लिए भी है जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। परिणाम स्पष्ट है। हिमगिर के उत्तंग शिखर पर बैठ शिलासी भीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों में देख रहा था प्रलय प्रवाह। साहित्यकार मन प्रकृति के शोषण से भी व्यथित है। भोगवादी दृष्टि के साथ वैज्ञानिक प्रयोगों ने भी प्रकृति को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया है। युद्धों की विभीषिका में जब परमाणु त्रासदी के पश्चात मनुष्य नहीं बच पाते हैं तो बेचारी प्रकृति की क्या दशा होगी। अज्ञेय जी ने कहा, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। उसी पृष्ठभूमि में दिनकर जी ने लिखा, बुद्ध के पवमान में उड़ता हुआ असहाय जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरुपाय। लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यह नहीं ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में आदिकाल से आधुनिक काल तक पर्यावरण चेतना के प्रचुर दर्शन विद्यमान हैं। कवि साहित्यकार पर्यावरण के प्रति इतने आबद्ध हैं कि वे उसके वर्तमान शोषण एवं दोहन से अत्यधिक व्यथित भी दिखाई पड़ते हैं। उनका मानना है कि यदि पर्यावरण अर्थात प्राकृतिक उपादानों का इसी प्रकार दोहन होता रहा तो मानव जीवन भी असंभव हो जाएगा। इससे साहित्यकार जनता को सचेत भी कर रहे हैं। वे अपनी रचना धर्मिता से मानवता को संरक्षित करने का स्तुत्य प्रयास भी कर रहे हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता। हिंदी साहित्य में पर्यावरण चेतना, वार्ताकार थे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

कुछ देर बाद हमारे श्रोता जानकारी प्राप्त करेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता। वार्ताकार रोहितास देवतिया, जिला प्रशिक्षण अधिकारी मथुरा, और आपसे भेंट करेंगे ओपी सिंह।

ग्यारह बजे हमारे श्रोता सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीता कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। 12 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम की बात और SMS। 12:30 पर आप आनंद लेंगे ब्रजलोकगीत कार्यक्रम में लावणी गायन का। आज कलाकार होंगे घनश्याम दास।

102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए देवरिया और कासगंज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश चंद्र शर्मा का।
1: एक पेड़ माह के नाम बृहद वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ कृषि मंत्री श्री प्रताप साहू द्वारा नगर पंचायत बरियारपुर क्षेत्र में पौधरोपण कर किया गया। इस दौरान जिले में विभिन्न सार्वजनिक व व्यक्तिगत स्थलों समेत सरकारी भवनों के परिसरों में पौधे लगाए गए। अपने संबोधन के दौरान कृषि मंत्री ने गांव, खेत, बागीचे, मंदिर, तालाब, अमृत सरोवरों एवं सड़क के किनारे आदि सजीव वृक्ष लगाने की अपील की। वृक्षारोपण अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, स्कूली बच्चों, किसानों एवं अंत्योदय कार्ड धारकों में पौधे भी वितरित किए गए। इसके अलावा जिले के समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, पंचायत भवनों, ग्राम सचिवालयों, चरागार भूमियों एवं तालाबों के तटबंधों सहित विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी भूमियों पर वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ माह के नाम बृहद वृक्षारोपण अभियान के जिले के नामित नोडल अधिकारी रविंद्र कुमार प्रथम तथा जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने बतारपुर विकासखंड के सृजन ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर वृक्षारोपण करते हुए आम जन से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उसका संरक्षण करते रहने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के नेतृत्व में जिले के पुलिस अधिकारियों ने पुलिस विभाग के सभी परिसरों, थानों, चौकियों, पुलिस लाइन आदि पर पौधरोपण किए। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने महर्षि देवराहवा बाबा सोसा से राज चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा अधूरे कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर ट्रामा सेंटर चालू करने का भी निर्देश दिया। विकास के क्षेत्र में जिले को प्रदेश का मॉडल जिला बनाने के लिए जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ पारदर्शी पूर्वक तय समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी पूर्वक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का भी निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षमा नहीं होगी। विकास कार्यों व योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही उजागर होने पर जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिले में चयनित आकांक्षी ब्लॉकों को निर्धारित पैरामीटर के तहत संतुलित करने के लिए जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों की डिजिटल हाजिरी, कक्षा में निपुण तालिका, शिक्षक संदर्शिका, पठन पाठन की गुणवत्ता, मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस व अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का व्यापक व्यवस्था करते हुए पढ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा
2: सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में विभिन्न तरीके की योजनाएं संचालित की जा रही है। शिक्षा विभाग में अब जुलाई महीने

0: नए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है, जहाँ पे बच्चों को स्कूल आने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है ताकि बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर फोकस किया जाए, उसके साथ साथ बच्चों को निपुण भी बनाया जाए, उसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं विद्यालयों में और स्ट्रेंथन करने के लिए भी फोकस किया जा रहा है।
1: जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ समय पूर्व सभी तैयारियों को पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाढ़ के मद्देनजर सभी आवश्यक सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कर ले। बाढ़ विभाग व अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर रखते हुए उसका प्रभावी क्रियान्वयन करें। मार्ग दुर्घटनाओं में हो रहे जनहानि को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा उपायों की गौण समीक्षा की। दौरान उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि न हो इसके लिए हर संभव उपाय किए जाए। बार बार सड़क दुर्घटना होने वाली जगहों को चिन्हित करते हुए वहां पर आवश्यक संकेतक तथा अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया जाए। सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ कल्याणकारी शिविर का आयोजन जिले के विभिन्न तहसीलों में किया गया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला प्रोबेशन विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पात्र लाभार्थियों में जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र व अन्य उपकरण वितरित किया गया। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीएम डैशबोर्ड शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों व विभागीय योजनाओं की प्रगति का प्रतिबिंब है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही छब नहीं होगी। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव, हेपेटाइटिस बी आज के टीकाकरण, आशाओं का लॉजिस्टिक वितरण, BHND सत्रों तथा मिशन डिलीवरी सहित प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यों में लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। आगामी 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष संचारी रोग अभियान तथा दस्तक अभियान का क्रियान्वयन पूरी तरह से किया जा रहा है। इस दौरान आशा कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है तथा लक्षणयुक्त रोगियों को चिन्हित करते हुए उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर इलाज कराने का सलाह दिया जा रहा है। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी सुधाकर मणि ने बताया कि
2: आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घरों के भ्रमण कर लक्षण युक्त रोगियों को चिन्हित कर रही हैं तथा कुपोषित बच्चों का भी सूची तैयार किया जा रहा है जो स्वास्थ्य केंद्रों पर और अन्य आगे की जाँच के लिए संदर्भित किया जाता है।
3: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का।
4: जनपद कासगंज में 12 जुलाई को वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश गर्ग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव एवं नोडल अधिकारी राजेश कुमार ने पौधारोपण कर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रणय सिंह, पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधियों, अन्य अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने पौधे लगाए। मुख्य अतिथि राकेश गर्ग ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के वृक्षारोपण महायज्ञ के अंतर्गत जनपद कासगंज को 26,51,800 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसे जन सहभागिता से पूरा किया जाएगा। वक्ताओं ने नागरिकों से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। जनपद कासगंज में 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। अभियान के दौरान जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्षा जल संचयन, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा भूजल पुनर्भरण जैसे प्रभावी उपायों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य भूजल संरक्षण, उसके नियोजित विकास, विवेकपूर्ण उपयोग तथा अनियंत्रित दोहन पर रोक लगाने के प्रति आम जन को जागरूक करना है। इस वर्ष भूजल सप्ताह की थीम है जल संरक्षण का करें संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प। अभियान के अंतर्गत जनपद की सभी ग्राम पंचायतों, विकास खंडों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों में 7 दिवसीय सघन जल संरक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम मिशन मोड में संचालित किए जा रहे हैं। जनपद वासियों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने तथा भूजल संवर्धन और जल संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की जा रही है। इस विषय पर साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्त्री पारुल बंसल ने कहा,
5: मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूं कि वर्षा जल का अधिक से अधिक संचयन करें, अनावश्यक पानी की बर्बादी रोकें और अपने आसपास जल स्रोतों के संरक्षण में सहयोग दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल सुरक्षा रखने में अपना योगदान दें।

0: पद कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। 18 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर में धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में किया गया, जिसमें 4 मामले मौके पर ही सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए गए। कासगंज में आगामी कावड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में जिलाधिकारी प्रणय सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह द्वारा गंगा नदी के लहरा घाट सहित अन्य घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। गहरे पानी वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग, खतरे के संकेतक, नावों, गोताखोरों तथा सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 17 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में खरीफ एवं रबी वर्ष 2026 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज अभियान तथा जनपद स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि जिन पात्र किसानों के पास अभी तक केसीसी नहीं है, उनकी पहचान कर कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, बैंक शाखाओं, पैक्स, एफपीओ और कॉमन सर्विस सेंटर के समन्वय से विशेष अभियान चलाकर उन्हें केसीसी से जोड़ा जाए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
3: देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण, वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि, अनियमित सफाई व्यवस्था, जलमल निकासी की समस्या, खानपान की खाओ पियो तथा फेंको संस्कृति का प्रचलन, अपशिष्ट पदार्थों का निस्सरण, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का कर्णभेदी कोलाहल तथा सघन बस्तियों ने हमारे शहरी पर्यावरण को पूर्णतया प्रदूषित कर दिया है। प्रदूषित वातावरण के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना और परिणामतः जनजीवन एवं मानव स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। मानव तथा पर्यावरण का सदैव से अटूट संबंध रहा है। पर्यावरण प्रकृति प्रदत्त अमूल्य निधि है। इसका संरक्षण मानव जाति का परम दायित्व है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से दोहन प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है, जबकि इसके विपरीत आचरण से अर्थात कारखानों एवं वाहनों से निकलने वाला दमघोटू जहरीला धुआं, दैत्याकार मशीनों की दहाड़, वाहनों के हॉर्नों की चिल्लपों, ऊंचे ऊंचे मकानों एवं भवनों के कारण शुद्ध हवा तथा रोशनी की कमी, नालियों से बहकर अंततः समीपस्थ नदी तालाबों में मिलने वाला दूषित पानी, गंदी बस्तियों में जन सुविधाओं का अभाव होने से खुले स्थानों का उपयोग, प्लास्टिक की थैलियों तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों का बेतहाशा प्रयोग, रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति, पार्कों तथा सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों के अलावा जल संकट के कारण हरितिमा संवर्धन के प्रयासों को गहरा धक्का लगना स्वाभाविक ही है। पर्यावरण विदों द्वारा बताए गए 4 प्रकार के प्रदूषण अर्थात जल, थल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण ने शहरी वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। शहरी क्षेत्रों में होने वाले प्रदूषण के प्रमुख कारणों में जनसंख्या में बेशुमार वृद्धि, औद्योगिक विकास तथा स्वचालित वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या का विशेष योगदान माना जाता है। जब किसी भी क्षेत्र में घनी आबादी का दबाव होगा और वनस्पतियों की कमी होगी तो हवा में प्राण वायु ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी तथा दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे वायु प्रदूषण होगा और कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी। जगह की तंगी के कारण बहुमंजिला इमारतों से शुद्ध हवा तथा धूप की रोशनी मिलने में रुकावट होगी। स्वचालित वाहनों तथा कारखानों से हानिकारक गैसों का निस्सरण होगा, जिससे जन स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कारखानों तथा आबादी क्षेत्रों से निकलने वाले द्रव पदार्थों से जल प्रदूषण की समस्या होना भी स्वाभाविक ही है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमें इस प्रकार के प्रयत्न करने होंगे जिनसे हमारे शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखा जा सके। चतुर

विविध प्रकार की प्रदूषण मुक्ति अथवा शहरी पर्यावरण संतुलन के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। जनसंख्या वृद्धि को संतुलित बनाने, वाहनों की संख्या तथा उनके उपयोग को कम करने, खराब वाहनों को हटाने, उनकी प्रदूषण जांच कराने, हॉर्नों का प्रयोग न्यूनतम करने, प्लास्टिक की थैलियों तथा उससे बने अन्य बर्तनों का प्रयोग बंद करने तथा पार्कों और सड़कों के किनारे प्रदूषण रोधी वृक्षों की प्रजातियां रोपित करने के सार्थक प्रयास जरूरी है। इनके अलावा भी शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था को भली प्रकार संचालित रखने, पानी के स्रोतों की समय समय पर जांच कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, पाइपलाइनों के लीकेज को अविलंब रोकने, राष्ट्रीय राजमार्गों को बाईपास देने, सरकारी भूमि पर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने, घरों में पौधारोपण की व्यवस्था, गंदी कच्ची बस्तियों एवं सघन क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों तथा कूड़ेदानों की समुचित उपलब्धता और उनकी नियमित सफाई तथा सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान देकर ही हम हमारे शहरों को काफी हद तक प्रदूषण मुक्त रखने में सफल सिद्ध हो सकेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा। विषय था मानव का पर्यावरण से संबंध। आलेख और वाचन था घनश्याम वर्मा का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंट वार्ता। टीकाकरण रोहितास तेवतिया जिला प्रशिक्षण अधिकारी मथुरा से भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: नमस्कार, कार्यक्रम में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रोहितास सिंह तेवतिया साहब, आप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं मथुरा में। कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, लेकिन इलाज से बेहतर सुरक्षा होती है, बचाव होता है। तो प्रतिरक्षण का मतलब यही है कि जब हम टीका लगवाते हैं तो किसी भी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता एक व्यक्ति में आ जाती है, लेकिन अगर ये प्रतिरक्षा हमारे पास नहीं है, हमारे पास सुरक्षा नहीं है, तो निश्चित तौर पे कोई भी बीमारी जो हो सकती है उससे लड़ने की क्षमता हमारी कमजोर पड़ जाती है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रोहितास सिंह तेवतिया साहब, आप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत सर, प्रणाम कर रहा हूँ मैं आपको।
2: नमस्कार सर, और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार
1: जी। राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम है, नियमित तौर पर चलता रहता है, पूरे साल चलता रहता है, बीमारी कोई भी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीके आ गए हैं जो सरकार की तरफ से एक रोस्टर बना दिया गया है कि बच्चा पैदा होते ही उनको लगवाना ही है, चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में हो, घर में हो, परिवार में हो, या कैसे भी आपका जन्म हुआ हो। तो थोड़ा सा बताइए कि इस कार्यक्रम के पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है, और कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं, टीका हैं जो इस नियमित टीकाकरण में आते हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए जानने वालों
2: जी। सर्वप्रथम आपने जो प्रश्न किया, इसका उद्देश्य

0: सी बात है, इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे जो हमारे ऐसी जानलेवा बीमारियों से ग्रसित होते हैं जिनसे उनकी मृत्यु की संभावना से इंकार नहीं कर सकते हैं, तो ये टीके सरकार द्वारा, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध हैं। और इनमें से जो प्रमुखता से हम 12 बीमारियों से बचाव के लिए 11 प्रकार के टीके लगाते हैं, जिसमें बच्चे की पैदाइश से लेके, जन्म से लेके और 16 वर्ष तक की आयु तक के, और जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो गर्भावस्था के दौरान भी उनको टीके की सुविधा मिलती है, जिससे कि उनके साथ साथ जन्म लेने वाले बच्चे को भी एक सुरक्षा कवच मिलता है।
1: बना हुआ है कि भाई जन्म लेंगे तो पैदा होते ही ये वाले टीके लग जाएंगे, फिर एक जो कहते हैं कि जैसी गर्भवती होती है रजिस्ट्रेशन हो गया, कार्ड बना दिया जाता है, उस कार्ड को आप फॉलो करते रहिए, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत ये है कि हमारी आने वाले की, नवजात की या माता बहनों की स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, ये इसका उद्देश्य आप बता रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही इंगित भी किया कि एक जो जिसको हम सारणी कहते हैं, आपने रोस्टर शब्द का प्रयोग किया और साथ में आपने कार्ड की बारे में जिक्र किया, तो इसमें MCP कार्ड है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, जो हम फिजिकली कार्ड भी उपलब्ध कराते हैं। साथ में जो सरकार के द्वारा एक पोर्टल है, UN पोर्टल, पूर्व में जब वो कोविड का टीकाकरण हुआ था तो कोविन पोर्टल जो है सभी लोग फेमस हुआ था, उसी के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर सरकार के द्वारा UN पोर्टल को रोल आउट किया गया। ये पिछले 3 वर्ष से UN पोर्टल है और प्रत्येक बच्चे को इस UN पोर्टल पर हम दर्ज करते हैं, जिससे कि वो हमारी देखरेख में, हमारे परव्यू में आ जाए और उसमें जो टीकाकरण सारणी है, टीकाकरण सारणी के अनुसार फॉलोअप करके उसको टीके की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
1: जी, तो कुछ जो टीके चल रहे हैं उन पर अगर आप प्रकाश डालें कि किन किन बीमारियों से हम, कौन कौन सा टीका हमें सुरक्षित कर देता है एक बच्चे को, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: बिल्कुल सर, इसमें जो 12 बीमारियों से 11 प्रकार के टीके हैं, लेकिन अभी जब ये बारिश का मौसम दस्तक दे रहा है, मानसून आ जा रहा है, और मानसून में एक जो बीमारी प्रमुखता से आती है निकल करके, गलघोटू की, जिसे आम भाषा में गलघोटू और वैसे साइंटिफिकली डिप्थीरिया की बीमारी कहते हैं, इस बीमारी से बचाव के लिए बच्चे के जो है 6 सप्ताह पर, 10 और 14 सप्ताह पर पेंटा की वैक्सीन लगती है। उस पेंटा में 5 प्रकार के टीके होते हैं, उसी में डिप्थीरिया का टीका भी शामिल होता है। तत्पश्चात फिर इसमें DPT बूस्टर्स की 2 डोज लगती है, जो 1.5 वर्ष और 5 वर्ष पर होती है, और इसके बाद जब बच्चा 10 वर्ष की आयु का हो जाते हैं और 16 वर्ष की आयु पर हो जाते हैं तो TD का टीका। तो दरअसल ये 7 बार उसको खुराक लेनी होती है, तब जाके उसको डिप्थीरिया से बचाव मिलता है। ये पिछले 3 से 4 वर्ष की अगर मैं जनपद की भी चर्चा करूं, काफी बच्चे इसमें ग्रसित हुए थे और इसमें मृत्यु की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं अगर शुरुआती समय में इसको
1: नहीं लगवाया,
0: चिकित्सक की टीका नहीं लगवाया तो बीमारी होने की संभावना है, और बीमारी अगर हो गई है समय पर सही इलाज ना प्राप्त किया जाए तो फिर मृत्यु की संभावना से तब इनकार नहीं कर सकते। तो जो आपने अभी जैसे कहा कि भाई इसमें और भी हैं महत्वपूर्ण टीके, जो बीमारी है जैसे खसरा की, मीजल्स रूबेला,
1: जिसे हम, जिसको MMR अपन नाम देते हैं उसमें,
0: जी MR हमारे यहाँ MR है, जैसे मीजल्स रूबेला, 2 बीमारियों से बचाव के लिए टीका है। ये सर्दियों में अक्सर इसका प्रसार फैल जाता है। मैं इसमें बिल्कुल क्लैरिटी करना चाहूंगा श्रोताओं को भी कि जो हमारा नियमित राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें भी हम OPV की दवा देते हैं, पोलियो की, साथ में एक टीका इंजेक्शन भी लगता है जिसे FIPV कहते हैं, वो रूटीन इम्यूनाइजेशन मतलब नियमित टीकाकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत है। उसके अतिरिक्त एक ये एडिशनल खुराक है, पूर्व में जब 10-15 वर्ष पहले साल में कम से कम 11 राउंड्स होते थे, 12 महीने में 11 राउंड्स होते थे, 11 राउंड्स से मैं जो है हर महीने
1: जी
0: ये दवा दी जाती थी, लेकिन अब चूंकि पोलियो से मुक्त हो चुका है भारत, 2014 में डिक्लेयर हो चुका है कि हम पोलियो मुक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अब ये साल में एक बार राउंड होता है, पिछले 3 वर्षों से दिसंबर में हो रहा है,
1: जी,
0: अब वर्तमान में इस जून के महीने में
1: इसको लेकर के आए।
0: जी सर,
1: इसमें एक और जो आपने जोड़ा है जिसको हम HPV बोलते हैं, ऐसी बच्चियां जो 14 साल तक की हो रही हैं, आगे पारिवारिक जीवन में जाएंगी, तो आपने देखा होगा महिलाओं में कैंसर का जो रोग है वो काफी प्रिवेल हो रहा है और उसमें सर्विक्स वाला जो वो काफी निकल करके आ रहा है, तो इस पर भी चूंकि एक वैक्सीन आ गई है, क्या उसको इस टीकाकरण के कार्यक्रम से प्रशासन ने जोड़ा है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि इसी वर्ष 28 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस कार्यक्रम का अजमेर से शुरुआत की गई थी।
1: जी।
0: इसमें यह परिकल्पना की गई है सरकार के द्वारा, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, कि हमारी 14 वर्ष की बच्चियां हैं जिसका 14वां बर्थडे उसने मना लिया है, लेकिन अभी 15वां बर्थडे ड्यू है, मनाया नहीं है, उसको यह टीका लगना है।
1: जी।
0: एक ही टीका लगेगा और

0: बाजू पर, और इससे टीके से फायदा क्या मिलेगा? टीके से फायदा यह मिलेगा कि बच्ची को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाव रहेगा, क्योंकि ये टीके जिस उम्र में लगाए जा रहे हैं उस उम्र में ज्यादा इफेक्ट इनका रहता है, इसलिए उस उम्र में लगाने की इनकी एडवोकेसी की जाती है। मसलन मैं अगर आपको कहूँ, रोटा वायरस वैक्सीन जो हम दे रहे हैं वो 10 से बचाव करती है बच्चों में सर्दियों में
1: जी।
0: इसकी प्रेवलेंस 6 महीने के बच्चों में ज्यादा रहती है, तो इसलिए ये टीका 1 साल तक के बच्चों के लिए ही है। इस 1 वर्ष के बाद अगर बच्चा है तो उसको रोटा वायरस वैक्सीन टीका लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, क्योंकि उसको अब ये बीमारी होने की इतनी संभावना नहीं है।
1: इम्यूनिटी वो
0: डेवलप हो जाती है, सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो गई, सर्वाइव कर गए तो सेल्फ इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई। लेकिन आपने कहा कि जो बड़े हो गए, व्यस्क हो गए, तो उसमें भी है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो महिलाएं हैं जो गर्भवती होती हैं, तो उनको टीडी का वैक्सीन लगता है जिससे कि उनको टिटनेस से बचाव मिले। देखिए पूर्व में जब आपने बहुत पहले जानते होंगे कि टिटनेस के बच्चे पैदा हुए और उनको टिटनेस की शिकायत मिली, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, हम न्यूनेटल टिटनेस से मुक्त हो चुके हैं। तो ये
1: क्योंकि वो गर्भवती महिला को ही लग जाता है, तो बच्चों
0: को भी नहीं जाता। तो इसलिए इसमें अब जब पूर्व में कोविड हुआ था तो कोविड में आप जानते हैं सभी को टीके की सुविधा गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई थी, भविष्य में अगर किसी तरह का रहता है तो वो सभी के लिए होगा, तो ऐसा हम सोचते हैं।
1: डॉक्टर साहब बात कर रहे थे एचपीवी वैक्सीन 14 साल की बच्चियों वाले पे, इस पे थोड़ा सा और विस्तार से बताइए जी।
0: बिल्कुल सर, ये वैक्सीन जो है नई वैक्सीन नहीं है, सन 2008 से इसको दिया जा रहा है, पूर्णतः सेफ है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए क्या होता है, 14 वर्ष की बच्चियां अभी समझदार उतनी हो रही होती हैं, उतनी समझदार नहीं होती हैं। अभी क्या होता है, सुई वाला टीका लगना है और बाहर वो कमरे के बाहर बैठी हैं और सुबह नाश्ता करके नहीं आई है मान लीजिए, और गर्मी भी पड़ रही है, पसीने भी आ रहे हैं और थोड़ा सा उमस हो रखी है, और वो उन्होंने देखा कि अंदर जाने से पहले ही टीका लगा और वो ऐसे लगा कि ये जो है गिर गई, तो क्या होगा कि टीके से गिर गई, ऐसा नहीं होता है। दरअसल हम इसलिए ऐसा कहते हैं कि नाश्ता करके आए, पेट अपना हो और थोड़ा सा अलग बैठे, मतलब टीके को देखते देखते भी उनको चक्कर आने लग जाते हैं बच्चियों को। तो ये दोनों ही तरीके से सुविधा उपलब्ध है जिला अस्पताल में, और हमारे जो 12 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल हैं हमारे 10 ब्लॉक में हैं, जैसे वृंदावन सीएससी पर भी है। तो यहाँ जो हर दिवस में हम इसको प्रयास कर रहे हैं टीके को लगाने का। दूसरा हम ये जो है तीसरे शुक्रवार को जो समाज में ही जाकर हमारा वैक्सीनेटर समाज में ही बैठता है, कम्युनिटी में ही बैठता है, और वहाँ वो पहले से ही यूविन एक ऐप है, यूविन ऐप पर आप जाकर के देख सकते हैं कि नजदीक में कहाँ पे टीके लग रहे हैं। जैसे कोविड में हम अपॉइंटमेंट ले लेते थे, आप आधार के माध्यम से सेल्फ रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल में जाकर के स्वयं का अपना रजिस्ट्रेशन करके और आप अपॉइंटमेंट ले लें, फिर आपको कोई आधार वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां फिर आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और उसमें आपके पास जो भी ओटीपी पहुंचता है वो आपने लिया है, तो जिससे कि आपकी कंसेंट भी आ जाती है उसी में। लेकिन अगर आप जगवाने जा रहे हैं तो आधार ले जाएं, जिससे वो यूविन पर आ जाएगा और आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। मैं बताऊं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को कि जो महिलाओं में कैंसर है सबसे, ये दूसरे नंबर का कैंसर है, पहला उनकी छाती का कैंसर, स्तन कैंसर, और दूसरा सर्वाइकल कैंसर। और 30 वर्ष की उम्र के पश्चात किसी भी महिला को होने की संभावना से इंकार नहीं कर सकते हैं, और 97-98% केसेस में वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। और ये वैक्सीन अगर इन बच्चियों को अभी से लग जाती है तो उनको वो एक्सपोजर होने पर इम्यूनिटी रहेगी, तो वो ऐसी इनको ये कैंसर होने की डेवलप होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी।
1: मतलब बहुत एक संभावना है, उसको खत्म हम कर रहे हैं,
0: बिल्कुल खत्म
1: कर रहे हैं, जीवन में मिल रही है।
0: अगर सर एक
1: बड़ा कदम जो है,
0: एक बच्ची को अगर भविष्य में इस तरह कैंसर की स्थिति हो रही है तो वो बच्ची ही नहीं, जब वो 35-40 वर्ष होगी तो उसके परिवार, उसके परिवार के भरण पोषण पर और उसके आमदनी पर सब पे इम्पैक्ट रखती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और कैंसर तो एक बीमारी भी ऐसी जिसको देख करके ही व्यक्ति को ऐसा लगता है उसमें, तो एक बहुत बड़ा कदम है। हम श्रोताओं से कहना चाहेंगे ये एचपीवी वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर तेवतिया बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन तरीका यही है कि 14 साल की अगर बच्ची आपकी हो रही है तो फिर पूरा 1 साल पड़ा हुआ है, उसमें तुरंत उसको जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और इसका लाभ उठाएं। उसमें चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे कि मैं दूसरी उस पर आ रहा हूँ, हमारे श्रोता हमसे जुड़े व्हाट्सएप के माध्यम से, आप लिख रहे हैं कि छोटे बच्चों को कितनी उम्र तक कितने टीके लगने चाहिए, प्रकाश जैन नांदेड़ से।
0: मैं बिल्कुल उनको भी जवाब देना चाहूंगा।
1: जी, जी, जी।
0: उन्होंने जब कहा कि छोटे बच्चों को कितनी बार टीका लगना चाहिए, देखिए इसमें जो अमिताभ बच्चन जी का एक आता है, आपने सुना होगा कि 5 साल 7 बार।
1: जी जी,
0: तो 5 साल तक के बच्चों को 7 बार टीका लग जाना चाहिए।
1: हाँ।
0: उसके पश्चात फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु पर 2 और जोड़ दीजिए, तो कुल 9 बार बच्चों को टीका लगता है। और अगर बच्ची फिर भविष्य में वो गर्भवती होती है, मतलब शादी के होती है और पश्चात में गर्भवती होती है, तो गर्भावस्था के दौरान टीके, तो छोटे बच्चों में हम 5 साल में 7 बार का टीका,
1: 5-7 आप याद रखिए,
0: 5 साल में 7 बार
1: तक 7 टीके लगेंगे और 2 फिर जो है बाद में।

0: जो
1: बाद में
0: बूस्टर डोज
1: बूस्टर
0: रहती है,
1: डोज
0: डोज
1: मिलती
0: रहती
1: है।
0: है।
1: जी जी
0: और इस तरह के जो चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं, जैसे अभी ये HPV वाला आया कि 14 साल तक की जो बच्चियां हैं वो ले सकती हैं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर,
0: वो फिर एडिशनल होता जाता है,
1: एडिशनल।
0: चलता जाता है, तो
1: ये सर
0: उसमें
1: जो HPV वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, यही सेम वैक्सीन गार्डासिल 4 आप बाजार में जाएंगे तो 4 से 5 हजार की कॉस्ट में पड़ता है ये,
0: बताइए बताइए।
1: और ये
0: ओके,
1: सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराएगा,
0: निःशुल्क
1: सेम
0: है।
1: वही वैक्सीन है
0: हाँ
1: गार्डासिल
0: हाँ
1: 4।
0: तो

0: तो मतलब ये एक जिसको हम कहते हैं कि स्वास्थ्य हमारा धन है, चीजें सरकार मान के चल रही है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी है, परिवार किसी भी परिवार में अगर कोई बीमारी आती है तो वो पूरा परिवार उसको भुगतता है, चाहे आर्थिक रूप से एक व्यक्ति तो शारीरिक रूप से उसका वो कर रहा है, लेकिन पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति, समय का खराब होना, मानसिक परेशानियां, तो ऐसी बीमारियां ना हो, और जिसमें कैंसर की तो बहुत बड़ी बात है
1: बिल्कुल
0: इसमें,
1: सर,
0: तो बहुत बड़ी सुरक्षा सरकार लेकर के आई है।
1: बिल्कुल सर। इसमें जो
0: जी
1: है हमारे यहाँ जनपद मथुरा की बात करें, हम लोग जो एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम लोग लगभग 31,000 से अधिक बच्चियों को ये
0: हाँ
1: टीके से जो है आच्छादित करेंगे। 31,446 हमको बताया गया है, जो हमारी जो आबादी का 1% जो है इतनी उम्र की बच्चियां
0: मतलब
1: होंगी,
0: 14 साल की लगभग
1: इतनी
0: इतनी
1: बच्चियां हमारे
0: बच्चे,
1: जनपद में
0: और
1: होंगी,
0: सबको ही हमें
1: सबको
0: लगाना,
1: लगाना
0: ये
1: है।
0: हमें
1: हाँ
0: 100%
1: हाँ
0: टारगेट है। तो और हर साल जो बच्ची 14 साल की होती
1: जी,
0: जाएगी
1: उसको
0: उसको
1: लगते
0: फिर, तो इस
1: हैं
0: तरह से एक तरह से सोसाइटी में हम सर्वाइकल कैंसर की इम्यूनिटी
1: इम्यूनिटी
0: पैदा।
1: डेवलप कर लेंगे, हर्ड
0: जी
1: इम्यूनिटी हो जाएगी हमारी। और दूसरा इसमें यह है कि अगर किन्हीं बच्ची ने पूर्व में अगर टीका लिया हुआ है तो वो भी अपना यूएन पर रिकॉर्ड चढ़वा दें, उनको आवश्यकता नहीं है टीके की, लेकिन वो रिकॉर्ड भी उनका आ
0: रिकॉर्ड
1: जाएगा,
0: आ जाएगा
1: रिकॉर्ड आ जाएगा,
0: उसमें कि
1: डिजिटल
0: भाई
1: उसमें आ
0: हमारी
1: जाएगा।
0: जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं
1: हाँ, तो
0: उसमें हम
1: जानकारी में आ जाएगा कितनी बच्चियां कवर हैं और कितनी।
0: कुछ और कहना चाहें चलते चलते जो है टीकाकरण के संबंध में, जो स्वास्थ्य विभाग की जो योजना है, जो कार्यक्रम है, उसमें व्यक्तियों से क्या अपील करना चाहेंगे, श्रोताओं से आप क्या
1: सर
0: अपील
1: पहले सर
0: करेंगे?
1: आपका टीम का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित किया और इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी को अब बताने के लिए मौका दिया। मैं सभी श्रोताओं से हार्दिक अपील यही करूँगा, एक निवेदन, कि ये जो टीका है ये जो जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए है, और जब वो बीमारी हो जाती है तो और ऐसी स्थिति में आ जाती है कि आप जो है उसको अस्पतालों में यहाँ और वहाँ लेकर के जा रहे हैं, फिर भी जो है उसमें बच्चे की जान जाने की जोखिम रहती है, उससे अच्छा है कि आप समय से जो टीका सारणी के अनुसार है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, आपके क्षेत्र की ANM अथवा वहाँ की आशा आंगनवाड़ी दीदी से संपर्क करें, और संपर्क करने के पश्चात जो उनके टीके छूटे हुए हैं वो टीके अवश्य लगवाएं। और अगर जैसे पेंटा का टीका लगता है या DPT लगता है तो उसमें बुखार की संभावना रहती है, तो उसके लिए हम पैरासीटामोल सिरप इसीलिए डिस्पेंस करते हैं कि अगर अगले 1 दिन 2 दिन में बुखार या कुछ इस तरह का आ रहा है तो उसको दिक्कत ना हो।
0: जी
1: तो
0: जी
1: अगर Penta-1 लगवाया टीका हमने और हल्का बुखार आया तो फिर 4 हफ्ते बाद Penta-2 टीका लगना है, तो आप ऐसे इससे घबराएं नहीं और टीके अपने समय से पूरे करवाएं।
0: जी जी डॉक्टर साहब, आपकी बात को शीतल यादव वृंदावन से उन्होंने सुना है और उस पर वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है कि 5 साल 7 बार की बात ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर कोई टीका लगने से छूट जाता है तो बाद में भी क्या लगवाया जा सकता है, उसका कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं होगा बाद में लगवाने का ये?
1: बिल्कुल, इसमें देखिए जो मैंने शुरू में ही बताया, और इसमें हमें जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस के अनुरूप हम उनको इसका पालन करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई टीके छूट गए हैं तो भी आप परेशान ना हो, आपके उसके बाद उसकी उम्र के सापेक्ष में जो टीके लगने चाहिए वो टीके उसको निःशुल्क आपके नज़दीकी चिकित्सा इकाई या आपके समाज में जो टीके का हमारा छाया VHSND सत्र होता है, हर बुधवार शनिवार को टीके लगते हैं, आप ही के क्षेत्र में लगते हैं, और जहां पूरे जनपद में आप जहां भी निवास करते हैं वहां एक माइक्रो प्लान के अनुसार उस महीने में एक बार बुधवार या शनिवार को आपके यहाँ हमारा जो है ANM आशाएं वहां बैठती हैं, आंगनवाड़ी दीदी की मदद लेती हैं और उनको घर से बुलाकर एक नियत जगह पर टीके लगाती हैं। तो
0: जी
1: किसी
0: जी
1: प्रकार का कोई टीका छूट गया है तो वो टीका लग सकता
0: जी
1: है।
0: डॉक्टर साहब, मैं चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि समय तो थोड़ा सा कम रह रहा है उसमें, कि बीच में एक बड़े लोगों के लिए भी Hepatitis B और इनके भी कुछ टीके आए थे, क्या अभी भी है लोगों को उससे सुरक्षा ले लेनी चाहिए? क्योंकि जब कई बार आदमी लगता है अब तो मैं तो स्वस्थ हो गया, बड़ा हो गया, अब शायद मेरे को कुछ नहीं, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, विकसित होती रहती है, तो हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा चलते चलते बताना चाहें?
1: बिल्कुल सर, इसमें Hepatitis B जिसमें
0: जी
1: पीलिया से बचाव का है, लीवर में ये फ्यूचर में लीवर के कैंसर से बचाव भी करती है, ये भी राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में है उपलब्ध, ये बच्चों के लिए है। तो पैदाइश पर जो टीका लगता है, पहला टीका जो पैदाइश पर लगता है 24 घंटे के भीतर, वो Hepatitis B का ही टीका लगता
0: जी
1: है,
0: जी
1: और बाद में उसको 3 टीके और मिल जाते हैं Penta-1 के साथ, पेंटा के साथ में 6 सप्ताह 10 सप्ताह और 16 सप्ताह की 14 सप्ताह की उम्र में।
0: जी जी
1: तो लेकिन वयस्क हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, हमारे अस्पताल में सभी को हमने लगवाए हुए हैं, लेकिन वर्तमान में अभी ये टीकाकरण कार्यक्रम में बच्चों के लिए उपलब्ध है।
0: जी जी चलते चलते एक श्रोता और

0: हेलो,
1: राधे राधे।
0: राधे राधे भैया, नाम बता दीजिए।
1: मैं आनंदगंज से बोल रहा हूँ, मथुरा से, मानिक चंद
0: मानिक चंद, आनंदगंज से।
1: जी। मेरी 72 साल की उम्र है।
0: जी, बताइए।
1: अभी ऐसी कोई मतलब आगे कोई बीमारी का चांस हो सकती है क्या?
0: नहीं, हम तो टीकाकरण की बात कर रहे हैं। आपकी 68 साल उम्र आप बता रहे हैं, तो आप क्या जानना चाहते हैं ये बताइए।
1: ये जानना चाहता हूँ कि मैं मतलब 2-3 किलोमीटर रोज चलता हूँ, क्या है
0: हाँ, ये तो अच्छी बात है। 2-3 क्या 5 किलोमीटर चलिए।
1: तो थोड़ी सी मिर्च खाने में परेशानी होती है।
0: अच्छा, खाने में या मिर्च खाने में, क्या क्या कह रहे हैं आप?
1: खाने में मतलब लाल मिर्च खाते हैं ना।
0: हाँ तो मत खाइए, हरी मिर्च खाइए, काली मिर्च खाइए, दक्षिणी मिर्च खाइए, क्या
2: आप
0: परेशानी
2: कहाँ
0: है?
2: निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं?
1: तो ये जानकारी चाहता हूँ, कोई बीमारी तो नहीं है ये
0: नहीं
1: लाल
0: नहीं
1: मिर्च?
0: नहीं नहीं ये
2: अच्छी, आप ये बताइए आप कहाँ निवास करते हैं?
1: राधे राधे।
2: राधे राधे।
0: ये आनंदगंज की बात कर रहे हैं,
2: आनंदगंज मतलब
0: मथुरा के
2: मथुरा में
0: लिए।
2: ही।
0: हाँ हाँ
2: आप, आपको अगर फिर भी कोई संशय है तो
0: हाँ
2: आप जिला अस्पताल आकर के, या नजदीकी शहरी जो PSC है, हमारी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो आप, मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ कि आप कहाँ पर हैं। हमारी जो 10 PSCs हैं वृंदावन कोसी कला के अलावा, 8 यहीं पर हैं। एक रूपम टॉकीज के सामने हैजा हॉस्पिटल के नाम से है, और बलदेवपुरी जो है जयगुरुदेव के पास में, BSA के पास में, सुखदेव नगर, इस तरह से 10 PSCs हैं। आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर से परीक्षण करा सकते हैं।
0: जी, वैसे भी 60+ में, 50+ में तो एक नियमित जांच
2: जांच होना चाहिए,
0: परिवार के लोग कराते हैं। तो आप आनंद लीजिए, जो है घूमते ही अच्छी बात है। चलते चलते एक गीत के साथ हम छोड़ जाते हैं लोगों को, कि भाई ये जो हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम है, जिसमें आज हमारे साथ जुड़े डॉक्टर रोहितास तेवतिया साहब, आप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, आपने अपने अनुभव की बात, जानकारी की बात, और जो टीकाकरण का एक नियमित रोस्टर है उसके संदर्भ में बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए। लेकिन ये हम सब के लिए और हम सब की जिम्मेदारी भी है कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको, और जो नए चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे 14 साल की बच्चियों के लिए एक वरदान के रूप में HPV वैक्सीन का जो ये कार्यक्रम जुड़ा है, इसका लाभ ज़रूर लें, और अपनी बच्चियों को होने वाले सर्वाइकल कैंसर से जब वो पारिवारिक जीवन में जाएंगी बचाव का एक सुरक्षा कवच अवश्य ज़रूर उनको पहनाएं। डॉक्टर तेवतिया आप आए, जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर,
0: नमस्कार।

वार्ताकार थे रोहितास देवतिया, जिला प्रशिक्षण अधिकारी मथुरा, और आपसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेश्वर में देशगान।
1: कण कण रतन है

कि माटी का कण कण रतन है, ऐसी माता को मेरा नमन है। अभी आपने सुना ये देशगान FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू को भी आपने सुना फिल्म दिल है कि मानता नहीं। और आइए सुनते हैं उदित नारायण, अलका याग्निक, सपना अवस्थी और साथियों को। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

उदित नारायण, अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म अकेले हम अकेले तुम में, और आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल कुमार सानू को। फिल्म का नाम है आशिकी।

अभी आपने सुना उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों को। फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। आइए सुनते हैं।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई में, और आइए सुनते हैं आशा भोसले को, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म आरजू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की है।
1: हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी,
3: सर जी नमस्कार। दीक्षित जी, मैं जबलपुर MP से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ। और दीक्षित जी कैसे हैं? प्रणाम, नमस्कार।
2: नमस्कार अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं सर?
3: मैं भी ठीक हूँ, बस आपसे बात हो गई और अच्छे से बातचीत हो जाती तो और दिल अपना।
2: घर परिवार में सब ठीक है?
3: सब ठीक है, आपके परिवार और चैनल के सदस्य मथुरा आकाशवाणी परिवार
2: सभी लोग अच्छे हैं?
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, सब अच्छे ही रहे, ऊपर वाले से ही कामना करता, आप भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।
2: मौसम कैसा है आपके यहाँ?
3: तो आपने बना हुआ टिप टिप लगी बारिश, अभी थोड़ा सा खुला है, नहीं तो टिप टिप जमीन लगा है
2: जी। बादल छा गए हैं
3: जी, सवेरे से बरस ही रहे हैं थोड़े रुक रुक के।
2: वाह
3: जी सर,
2: बताइए अशोक जी आज क्या फरमाइश है कार्यक्रम में?
3: प्यासे सावन का मेंगारे मेंगारे,
2: मत परदेश जा रे, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, राधे राधे सर।
0: राधे राधे, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: सर मैं नगला चंद्रवान से, इंदियाल धाम खरे मथुरा से लव कुमार बोल रहा हूँ। सर
0: लव कुमार जी, स्वागत है कार्यक्रम में, क्या हाल चाल है?
1: सर अच्छे हैं, और हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है? सर
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
1: हाँ सर, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है।
0: बताइए क्या फरमाइश रहेगी ऐसे मौसम में?
1: फरमाइश रहेगी सर, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे।
0: सुनवाते हैं लव कुमार जी आपकी फरमाइश पर ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर। राधे राधे।
0: राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: जी भैया नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है भैया जी।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया है, काफी अच्छे हैं। आपके नियमित श्रोता साथी योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा मौसम है बेमेतरा में अब?
1: मौसम तो 3-4 दिनों से खुशनुमा है भैया, और बारिश भी बराबर होने लग गया है।
0: लगभग सभी जगह एक ही हाल है। अब बारिश शुरू हो गई है, मौसम सुहाना हो गया है
1: जी
0: और झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिल गई है।
1: जी
0: बताइए, आज योगेश जी आपकी क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में?
1: फिल्म निगाहें से सुनवा देंगे। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया,
0: मैं परदेसी घर वापस
1: घर
0: आया।
1: वापस आया। जी
0: जी, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी।
1: धन्यवाद भैया।

0: हेलो
1: हेलो आकाशवाणी।
0: सर जी, नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका।
0: मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। बहुत दिन के बाद।
1: जी, गंगाधर जी कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया हूँ सर, आपके कार्यक्रम सुन के और आनंद हूँ मैं।
1: वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और परिवार में कैसे हैं सब?
0: सब कुशल मंगल है सर।
1: क्या चल रहा है आजकल आपका?
0: अभी तो सर 2-4 दिन बारिश हुई, अभी आज धूप निकला है,
1: अच्छा,
0: थोड़ा गर्मी से राहत मिल गई, जो
1: बिल्कुल।
0: ठंड होगा सर।
1: बताइए, आज आपकी क्या फरमाइश रहेगी?
0: आज सूरज फिल्म का सर, बहार हो फूल बरसाओ मेरा महबूबा है, कुछ मित्रों का नाम ले तो सर।
1: बिल्कुल, ले लीजिए।
0: हमारा तुकाराम जाधव जी है, भगवान सिंह जी है, राजेंद्र गंगवार जी है, दिलीप झा, सुनील झा, लोकेंद्र वर्मा, तनुश्री सातारा से, ये सभी दोस्त है सर।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर आपको।

0: हेलो
1: हेलो आकाशवाणी।
0: सर, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल सिंह, ग्राम नगर यही राया पर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ।
1: स्वागत है नेत्रपाल जी, क्या हाल चाल है?
0: पर ठीक है, हल्की थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है,
1: मौसम अच्छा हो
0: मगर
1: गया है?
0: काफी ठंडा हो गया है।
1: जी, होना भी चाहिए। और इस समय खेती के काम चल रहे हैं तो बारिश की आवश्यकता है।
0: हमारे धान लग रहे हैं सब,
1: जी,
0: और धान की ट्रांसप्लांट हो रही है।
1: अच्छा बताइए नेत्रपाल जी, आज फरमाइश क्या रहेगी?
0: सर, फिल्म है जंजीर,
1: जी
0: दीवाने दीवानों को घर चाहिए।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद नेत्रपाल जी, आपने फोन किया।
0: राधे राधे।
1: राधे राधे।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति थी देवराज कृष्ण दीक्षित की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और पोषण उस धन की सबसे मजबूत नींव। साथियों, रोटी में हो ताकत, दाल में हो प्यार, पोषण से ही जीवन बने खुशियों का संसार। आपको स्वीकार हो हमारा नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वागत है आपका अपने इस फिल्म संगीत के सफर में, जिसमें हम सुनवाते हैं आपको प्यारे प्यारे कुछ गीत और साथ ही आपसे करते हैं चर्चा। तो इस चर्चा के सफर में आज का विषय है साथियों, यूनाइटेड नेशंस डिकेट ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, यानी संयुक्त राष्ट्र का पोषण पर कार्य दशक। साथियों, इस पहल का उद्देश्य दुनिया से कुपोषण को कम करना, हर व्यक्ति तक पौष्टिक भोजन पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। हम जब भी अपने जीवन के विषय में सोचते हैं तो साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य भी आगे बढ़ता है। लेकिन ये क्या, हम अक्सर स्वाद के पीछे भागते हैं और हमारा शरीर स्वाद नहीं साथियों, पोषण से चलता है। शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, स्वस्थ वसा, पर्याप्त पानी। यदि इनमें कमी हो जाए तो शरीर धीरे धीरे बीमारियों का घर बनने लगता है। सेहत का जो रखता ध्यान, खुशियों से भर जाता है उसका जहान। रंग बिरंगी थाली हो जब, मुस्कुराता रहता है हर इंसान।

साथियों, हम बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशंस के बारे में, यानी हमारे शरीर को प्राप्त होने वाले पोषक तत्व। दुनिया में आज भी लाखों बच्चे साथियों को पोषण का शिकार हैं, ये आप सभी जानते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा हम सभी को बहुत तेजी से समय के साथ हर खबर मिल जाती है। कई लोग पर्याप्त भोजन तो खाते हैं लेकिन सही पोषण नहीं मिलता। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, अत्यधिक चीनी, तला हुआ भोजन धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। थाली में जब रंग सजेंगे साथियों, फल सब्जी के साथ हम चलेंगे, दूध दही और दाल भी मिलेगी, तभी तो खुशहाल जिंदगी भी मिलेगी। एक अच्छी थाली में क्या क्या होना चाहिए जो कि संतुलित भोजन कहलाए? हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध या दही, साबुत अनाज, दालें और प्रोटीन, पर्याप्त पानी, यही है स्वस्थ जीवन का मंत्र। दवा से पहले भोजन चुनिए और भोजन में ही दवा को बुनिए। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि गर्भवती महिलाओं का जो पोषण है और बच्चों का पोषण है और किशोरियों में आयरन की कमी, बुजुर्गों के लिए संतुलित आहार, ये कैसा होना चाहिए, इन सभी पर संयुक्त राष्ट्र विशेष जोर देता है। मां स्वस्थ होगी तो शिशु मुस्काएगा, घर आंगन खुशियों से भर जाएगा। इसके लिए हमें कुछ आसान आदतें बनानी होंगी, यानी हमारी जो खराब आदतें हैं उन्हें छोड़कर हमें कुछ अन्य आदतें आसान बनानी होंगी। सुबह का नाश्ता कभी न छोड़ें, दिन में पर्याप्त पानी पिएं, अत्यधिक नमक, चीनी और तेल से

रोज थोड़ा व्यायाम करें, घर का ताजा भोजन खाएं, स्वास्थ्य का रखिए सम्मान, पोषण बने जीवन की शान। साथियों, संयुक्त राष्ट्र का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, सही पोषण, स्वस्थ जीवन और बेहतर भविष्य। यदि हम अपनी थाली बदल दें तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदल सकता है। हर थाली में पोषण आए, हर घर में खुशहाली छाए, न कोई भूखा न कोई कमजोर, यही हो दुनिया का सुंदर दौर। सेहत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, संतुलित भोजन से बड़ी कोई दवा नहीं होती।

साथियों, अभी हमने बात की संयुक्त राष्ट्र का पोषण पर कार्य दशक के बारे में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, कुपोषण से बचाव, स्वस्थ जीवन शैली और पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ में हम आपसे एक और चर्चा करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे खारजी पूजा, जो कि त्रिपुरा में मनाई जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहां परंपरा की जड़ें गहरी हों, वहीं संस्कृति की शाखाएं सदैव हरी भरी रहती हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहां हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति, भाषा और लोक परंपराएं हैं। इन्हीं विशिष्ट परंपराओं में से एक है त्रिपुरा की प्रसिद्ध खारजी पूजा, जो श्रद्धा, आस्था और सांस्कृतिक एकता का अद्भुत पर्व है। खारजी पूजा त्रिपुरा का एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है। साथियों, यह हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर 7 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व 14 देवताओं

यानी चतुर्दश देवता की विशेष पूजा इस पर्व में की जाती है। इन देवताओं को त्रिपुरा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक आस्था का प्रतीक माना जाता है। पूजा से पहले देवताओं की मूर्तियों को पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है, फिर विधि विधान से उनकी आराधना की जाती है। खारची शब्द का संबंध पापों और अशुद्धियों के निवारण से माना जाता है। इस पर्व का संदेश है कि मनुष्य अपने भीतर से अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को त्याग कर सत्य, प्रेम और सद्भाव का मार्ग अपनाए। धरा की खुशहाली का जब होता है सम्मान, खारची पूजा देती है संस्कृति का अमूल्य वरदान। भक्ति में जो झुकता है वही ऊंचा कहलाता है, प्रेम और सद्भाव से ही जीवन मुस्कुराता है। साथियों, खारची पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का भी उत्सव है। इस अवसर पर विशाल मेले लगते हैं, लोक नृत्य, लोक संगीत और पारंपरिक कला का प्रदर्शन होता है। दूर दूर से लोग इस मेले में शामिल होकर त्रिपुरा की समृद्ध लोक संस्कृति का आनंद लेते हैं। रिवायतों की लौ कभी बुझने नहीं देना, अपनी विरासत को यूं बिखरने नहीं देना। जो जोड़ती है दिलों को वही है सच्ची पूजा, मोहब्बत का ये सिलसिला ठहरने नहीं देना।

साथियों, हम बात कर रहे थे त्रिपुरा में होने वाली खारजी पूजा के विषय में, वहां की संस्कृति, वहां होने वाले इस कार्य से जुड़े हुए समाज में जो एकता है, मानवता के मूल्यों के प्रति हम बातचीत कर रहे थे। आज जब आधुनिकता की दौड़ में कई लोक परंपराएं पीछे छूटती जा रही हैं, तब खारजी पूजा हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, समाज में एकता और मानवता के मूल्यों को अपनाने का संदेश देता है। रंग अनेक पर भाव एक, यही भारत की शान है। हर उत्सव में बसता अपना हिंदुस्तान है। खारजी पूजा का संदेश रहे हर दिल में सदा, प्रेम, शांति और एकता से महके यह जहां सदा।

साथियों, फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS।

सांस समाप्त हो और कोई इच्छा बाकी रहे वह है मृत्यु, श्वास शेष रहे और इच्छा समाप्त हो जाए वह है मोक्ष, और श्वास चलती रहे और जीवन में आप अपने कार्यों को निभाएं, परिपूर्ण करें, वह है आपका सच्चा और अच्छा जीवन, जिसके अंतर्गत आपकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती है। मोक्ष और जीवन को जीने की इच्छा सब कुछ सम्मिलित करके अच्छे कार्यों में संलग्न रहना ही जीवन की पूर्णा होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गीत बात और SMS में, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

साथियों, फिल्म संगीत के साथ आपके मैसेज के सफर पर चलते चलते पढ़ लेते हैं आपके प्यारे प्यारे से ये फरमाइशी मैसेज। लेकिन उसके पहले आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म बेताब के इस गीत को। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आरडी वर्मन ने। आइए पढ़ लेते हैं अब आपके संदेश। गांव फरांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का संदेश हमें प्राप्त हुआ। जामुन देवी साहू, बबलू साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े। अगला संदेश हमारे पास आया है बत्ता परिवार से, कनेरा मोहल्ला पटियाला से। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता का हमसे जुड़े।

चुके हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ के विश्वनाथ साहू पंकज और तिरुपति साहू, उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी, साहिल भारती हमसे जुड़ चुके हैं लगान पडरिया छत्तीसगढ़ से। संदेश मिला है हमें गांगेनगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, प्रतीक्षा, शैलेश, स्वप्निल, रक्षिता और रियांश लोखंडे का। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया, साईराज, विशाल सपकाल का संदेश हमें प्राप्त हुआ। हमसे जुड़ चुके हैं अगला संदेश भेजकर राजू लवानिया, राधेश्याम उपाध्याय, ये हमसे जुड़े हैं खांडौली आगरा से। संदेश मिल चुका है हमें हमारे अगले फरमाइशकर्ता का, जो कि हमसे जुड़े हैं संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, मॉडल टाउन करनाल से आप हमसे जुड़े। जिला बरंगल से मोहम्मद खाजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया का संदेश हमें मिला। अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन का संदेश हमें मालियान मेरठ से प्राप्त हुआ। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस, मुनीन उरीसा, नलगोंडा तेलंगाना से आप हमसे जुड़े। महाराष्ट्र के रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार हमसे जुड़ चुका है। हमारे अगले फरमाइश करता हैं अमजद अली अब्बास आलम, ये हमसे जुड़े हैं मगनपुर झारखंड से, साथ में लाडली बेबी निशा और सभी घर के सदस्य हमसे जुड़ चुके हैं। सुनीता शिंदे, यशराज, प्रशांत, ऋषि, कृष्णा घोट के हमसे जुड़े रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से, मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा, आजमीन गुड़िया तेलंगाना भोंगीर से हमसे जुड़े। शनि मंदिर चौक खंडवा के दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, ईशान कार्तिक का संदेश भी हमें मिल चुका है। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य, दिनेश का संदेश भी हमें मिला। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से आप हमसे जुड़े। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय सरोज जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर के रोहन और आर्य जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर सुमन जायसवाल का संदेश भी प्राप्त हुआ। हमारे अगले फरमाइश करता है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो हमसे जुड़े हैं जनकपुरी सहारनपुर से, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता पप्पू, महक सुनीता रानी, आरजू पप्पू और हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल, पूरा खुशदिल परिवार चकला बाजार समाना शहर पंजाब से हमसे जुड़ा। कोल सिटी बरकाना काना से हमें संदेश भेजा है अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक ने। संदेश भेजकर हमसे जुड़ चुके हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान के रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान।

तुलसी मस्कीन बीना आशीष राजा चैतन्य मेघा मस्कीन हमसे जुड़े हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, चंडीगढ़ के राहुल खुराना, रचिता किशु रिधान और रिधान खुराना हमसे जुड़ चुके हैं। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है जाकिर मुलाणी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानूबी और बादशाह, पूरा मुलाणी परिवार हमसे जुड़ चुका है फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से। तेलंगाना के चोटू पल से कस्तूरी रामुडू और बुमा देवी पृथ्वी नारायणा का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं मारहरा दरवाज़ा एटा के नवी हसन अब्बासी, सेहनाज, नवेद हसन, सुहेल, अनम, यशफ और रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से ज़ुबैर अली खान, सबीहा अंजुम खान का संदेश भी हमें मिल चुका है। साथियों आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

साथियों, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की जुगलबंदी में फिल्म धरती के इस गीत को। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और शंकर जयकिशन ने इसकी धुन तैयार की। आइए पढ़ लेते हैं अब आपके संदेश। ज़िला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा और अनस रेहान हमसे जुड़ चुके हैं। अगला संदेश हमें मिला है संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र के सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा वाघमारे और शशांक वाघमारे का। हमसे जुड़ चुके हैं संदेश भेजकर मामुलवाड़ी महाराष्ट्र के सोपान तायड़े, विजया जिंगाव विदर्भ से बसंतरा भोजने और सुनंदा भोजने का संदेश भी हमें मिला। सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना लव्या, आरव मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, एस के पप्पी खुराना का संदेश हमें MLB रोड ग्वालियर से मिला। हमसे जुड़ चुके हैं कृष्णा कॉलोनी हांसी के सुभाष योगी, सुशील, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बविता मिगलानी, सोनाली, सुरेश नारंग, आशु शेख, अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार, संदीप मक्कड़, वली भाई, कुशवाहा रेशमा, राज एसटी कुशवाहा हमसे जुड़ चुके हैं सहारनपुर चंदर नगर से, सदर बाजार कुरावली के अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा का संदेश हमें मिल चुका है। हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिरा, रुचिका रामेकर और समस्त रामेकर परिवार, रहाट गांव, कंप अमरावती महाराष्ट्र से हमसे जुड़ चुके हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के PS हांवकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान, आशीष मुरहेकर का संदेश भी हमें प्राप्त हो चुका है। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा हमसे जुड़े पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता जाधव जालना शहर से, नेहरू चौक पैठड़ के डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता, आरती प्रसाद, सोनम बेबी सिया हमसे जुड़ चुके हैं। ये फरमाइश आई है हमारे पास नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा के अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ के सोहन जोशी हमसे जुड़ चुके हैं। शब्बीर हुसैन, शहजाद, मुजुबाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन सब्जी मंडी बुलढाणा से हमसे जुड़े। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति, पौरुष, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु से हमसे जुड़े। संदेश मिला सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम परिवार वाले हमसे जुड़े हैं। कुमार हेड़ा सहारनपुर से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीशु, अर्णव, तासु, सत्यमानंद का संदेश पाकुड़ झारखंड से मिला। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल के मुन्ना भगत, गुड्डी भगत हमसे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन, शमसुल कमर राही का संदेश भी हमें मिल चुका है। गोकुल चौक गंगा गंगजला सहरसा बिहार के राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली, फलाना झा हमसे जुड़ चुके हैं। अगला संदेश हमारे पास आया है कुमार गली श्रीरामपुर के अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका का, पुनावले पुणे के अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवने हमसे जुड़ चुके हैं।

चंडीगढ़ के सतीश अनेजा, विमला अनेजा का संदेश हमें मिल चुका है। तमतम एयरपोर्ट कलकत्ता के बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता और पिहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, रिया जिया, टूसी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शाह, जय प्रकाश साव, बसंत लाल साव, हीरा मोती पन्ना लाल साव हमसे जुड़ चुके हैं। तो आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

प्रकाश रंभाड़े, भारती, जानवी, वैष्णवी, हर्षल रंभाड़े का संदेश हमें काशी निवास नागपुर से मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं अकरम हुसैन प्रिंस उर्फ डाग बाबू, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी, नाज मंजिल महसूल सीतामणि से ये संदेश हमें मिला। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया का संदेश भी हमें मिल चुका है। तुलसी मस्कीन, बीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन हमसे जुड़ चुके हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, पंचकुला चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का संदेश भी हमें मिल चुका है। अगला संदेश हमारे पास आया है सौरव निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका, श्रीनिजा का, जेल रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। हमसे जुड़ चुके हैं हमारे अगले फरमाइशकर्ता नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे। ये संदेश हमारे पास आया है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा का, राजनगर मधुबनी बिहार के राजू कुमार गुप्ता, विनीता, रविराज, गौरव कुमार, समस्त मित्रगण, छपरा दालदली बाजार के संजय कुमार गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, सर्वजीत कुमार और सुधांशु कुमार गुप्ता का संदेश भी हमें मिल चुका है। ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पारासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित, फुटानी चौक, नरहन इस्टेट से हमसे जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र के शत्रुघ्न ढाड़े, वकील वाल्मीकि ढाड़े, नीनाजी स्वप्निल ढाड़े का संदेश हमें प्राप्त हुआ। बागपत उत्तर प्रदेश के संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पार ढींगिया का संदेश भी हमें मिला। हमसे जुड़ चुके हैं राजेश सेन, सुरेखा, शुभम, अक्षय, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से ये संदेश मिला। खमरिया छत्तीसगढ़ के साबित खान, धर्म

इंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। तो चार देवता मुरिया जय देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर हमसे जुड़े हैं। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। साथियों, समय हो चला है अब कार्यक्रम को यहीं विराम देने का, आपसे अनुमति लेने का। चलते चलते बस यही कहूंगी कि सफलता के दो ही पायदान हैं, निरंतर अभ्यास और लगन। जिनके पास ये दो फौलाद हैं, वे असंभव को भी संभव कर लेते हैं। यदि हम हर ओर से हार चुके हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, ऊपर वाले की शरण में हमें जाना चाहिए। वहाँ से उम्मीद की किरण हमें अवश्य मिलेगी। जब भी लगे मन में तनाव और उदासीनता, तब प्रभु पर भरोसा कीजिए, शत प्रतिशत फल मिलेगा। अपने आप को हमेशा मजबूत रखिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रजलोक गीत। आज के कलाकार हैं घनश्याम दास। आइए सुनते हैं घनश्याम दास के स्वर में गाए हुए कुछ लावणी गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं घनश्याम दास के गाए हुए कुछ लावणी गीतों का।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं घनश्याम दास के स्वर में लावनी गायन का।

कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज के कलाकार थे घनश्याम दास। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 77,491 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,179 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज एसएस प्रणय और देविका सिहाग सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन

केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: अपराह्न 1:10 पर समवेत स्वरों में होगा देशगान। अपराह्न 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा। चर्चा होगी किशोर अवस्था में पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इसके अवसर एवं चुनौतियाँ। आलेख एवं प्रस्तुति रेशमा अग्रवाल की, संयोजन OP सिंह का। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी खुशबू मिश्रा। 1:45 अपराह्न आप सुनेंगे फिल्म संगीत। NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे अपराह्न 2:30 पर। संध्या 5:30 पर आरंभ होगी हमारी दूसरी सभा, युवा भाइयों के कार्यक्रम युववाणी के साथ, जिसमें आज की बात के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान, सभी प्रकार के नशा से दूर रहें विषय पर होगी चर्चा। संध्या 6:15 पर किसान भाई सुनेंगे अपना फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा खरीफ मौसम की सब्जी वाली फसलों में कृषि कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ब्रजमोहन, कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा। संध्या 6:45 पर कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकेंगे

संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत भक्त कथा भक्त राम नारायण के बारे में कथाकार गौरी अग्रवाल से आप जानकारी प्राप्त करेंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या 7:31 पर शाम सुहानी आप सुन सकेंगे। रात्रि 8 दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी संसद समीक्षा। रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम मनी टॉक और रात्रि 9:45 पर कार्यक्रम मंथन दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे, जिसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे संवेद स्वरों में देशगान।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवे स्वरों में देशगान FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का

0: मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं खुशबू मिश्रा।

स्वस्थ तन में बसता है उज्जवल भविष्य, अच्छी आदतें ही बनाती हैं जीवन को समृद्ध। नमस्कार बहनों, वनिता लोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ आपकी सहेली खुशबू। बहनों, आज हम बात करेंगे अपने बच्चों के बारे में। हमारे बड़े होते बच्चों की ज़रूरतें क्या क्या हो सकती हैं, यानी कि किशोरावस्था की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो सिर्फ हम माताओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर जिंदगी है, हमारा जो ज़्यादातर समय है वो किचन में ही तो बीतता है, और किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा ध्यान हमें देने की बात है वो है बच्चों का खान पान। यानी कि 10 से 19 वर्ष की आयु जीवन का वो महत्वपूर्ण दौर है जब शरीर मन की भावनाओं में तेजी से बदलाव आते हैं। इस समय सही पोषण, नियमित व्यायाम और अच्छी जीवन शैली अपनाना बहुत आवश्यक होता है। यही आदतें आगे चलकर स्वस्थ और सफल जीवन की मजबूत नींव बनती हैं। बहनों, किशोरावस्था में पोषण का महत्व ही इस उम्र में शरीर का विकास तेजी से होता है, इसीलिए संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है। रोजाना भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें, अंकुरित अनाज, दूध, दही, पनीर, अंडा या अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, साबुत अनाज जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, प्रोटीन मांसपेशियों और शरीर की वृद्धि में मदद करता है, जैसे दालें, सोयाबीन, मेवे, और उतना ही ज़रूरी है आयरन और कैल्शियम, विशेषकर हमारी बेटियों के लिए तो बहुत आवश्यक है ताकि खून की कमी यानी कि एनीमिया से बचा जा सके। आयरन आप बहुत आसानी से पालक, गुड़, चना, किशमिश, दालें मैं आराम से पा सकते हैं, वहीं कैल्शियम आप दूध, दही, पनीर, तिल से पा सकती हैं। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। सबसे बड़ी बात बहनों ये है कि इस बदलते दौर में जंक फूड का प्रचलन बहुत तेज़ी से हो चुका है, तो जंक फूड से आप अपने बच्चों को बहुत दूर रख सकते हैं। प्रतिदिन 45 से 60 मिनट तक योग उनको सिखाएं या करवाएं, दौड़, खेल कूद या साइकिल चलाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। 8 से 10 घंटे की नींद लें, किसी भी तरह के नशे से अपने बच्चों को दूर रखें, मोबाइल, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें। लेकिन बहनों, आज का जो युग है, जो आज की जो तकनीक जो युग है वो तकनीकों का कह सकते हैं कि युग है, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर हाथ में मोबाइल और हर हाथ में देखें तो माउस आपको देखने को मिल जाता है। हर दिन कोई ना कोई खोज हमारे जीवन को बेहतर

0: बना रही है। इन्हीं तकनीकों में सबसे चर्चित जो नाम है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसी विषय पर हम आज आपको एक विशेष कार्यक्रम सुनवाते हैं। विषय है एआई क्या है, इसके अवसर और चुनौतियां। प्रस्तुति है रेशमा अग्रवाल की, संयोजन है ओपी सिंह का।
1: सहम सहम कर जो हवाएं चलने लगी हैं, अंधियारे देश की गाथा ये कहने लगी हैं। मध्यम मध्यम एक नए साए का इंतजार है, हर कोई आजकल एआई नाम की बीमारी का शिकार है। नमस्कार, मैं रेशमा अग्रवाल आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के बारे में। क्या है एआई, इसके अवसर, चुनौतियां और भविष्य। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं, जहां डॉक्टर आपके बीमार होने से पहले ही बीमारी का पता लगा लेता है, जहां आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें नहीं बल्कि एक समझदार मशीन बैठी है। और सोचिए अगर ये मशीनें एक दिन हमसे ज्यादा समझदार हो जाएं, अगर वो हमारे फैसले हमारी जगह खुद लेने लगें और हमसे भी पहले जान जाएं कि हम क्या सोचने वाले हैं, तो क्या होगा। ये कोई साइंस फिक्शन की फिल्म की कहानी नहीं, ये है आज की रियलिटी यानी वर्तमान की वास्तविकता, और इसी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे संक्षेप में एआई कहा जाता है, जिसका अर्थ है बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता जो आज हमारी दुनिया को बदल रही है और कल हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का वो दिमाग है जिसे इंसानों ने बनाया था और अब यह इंसानों को ही समझने लगा है। इंसान ने शुरुआत से ही अपने काम को आसान करने के लिए औजार बनाए हैं, पहले पत्थर, फिर लाठी, फिर पहिया और धीरे धीरे मशीनें। लेकिन आज इंसान ने जो औजार बनाया है वो सिर्फ काम नहीं करता, वो सोचता भी है, और यही है एआई।

कृत्रिम बुद्धिमता का इतिहास क्या है। एआई की कहानी उतनी नई नहीं है जितनी लगती है। 1950 में महान वैज्ञानिक अलन की ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा था, क्या मशीन सोच सकती है। ये सवाल एआई की नींव बन गया। शुरुआत में कंप्यूटर गणित करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि कंप्यूटर दिमागी इंसानी की तरह सीख सके। 1956 में अमेरिका की एक कॉन्फ्रेंस में पहली बार शब्द इस्तेमाल हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद धीमी गति से रिसर्च चलती रही। कभी लोगों को लगा कि एआई असंभव है, लेकिन इंटरनेट, बिग डेटा और तेज कंप्यूटर आने के बाद एआई सचमुच उड़ान भरने लगा। और आज एआई सिर्फ लैब की थ्योरी नहीं है, बल्कि हमारे हाथ की मोबाइल स्क्रीन में आ चुका है। आज एआई चित्र बना सकता है, लेख लिख सकता है और संगीत तैयार कर सकता है, और इसके साथ ही साथ भाषाओं का अनुवाद भी कर सकता है और जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान भी सुझा सकता है।

0: की तरह सीख सके, समझ सके और निर्णय ले सके। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। जैसे चैट जीपीटी से आप सवाल पूछते हैं और यह आपको जवाब देता है, गूगल मैप आपको रास्ता बताता है और नेटफ्लिक्स आपकी पसंद की मूवी सजेस्ट करता है, तो ये सब एआई का जादू है। एआई का उपयोग हमारे रोजमर्रा के कामों में चुपचाप हो रहा है। हमारी दैनिक दिनचर्या में एआई का उपयोग मोबाइल का फेस लॉक, ट्रैफिक नेविगेशन, ऑनलाइन शॉपिंग की रिकमेंडेशन, भाषा अनुवाद, हेल्थ केयर में बीमारी की शुरुआत में ही पहचान आदि में किया जाता है। सही मायनों में देखा जाए तो वर्तमान समय में एआई किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो शिक्षा, कृषि, बैंकिंग, परिवहन, साइबर सुरक्षा और हर जगह अपनी ये अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इंसान की क्षमताएं सीमित हैं। हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते, लाखों डेटा एक सेकंड में नहीं समझ सकते, लेकिन यह एआई कर सकता है। एआई हमें तेज, स्मार्ट व प्रभावी बनाता है। इसके बारे में जानकारी देते हुए अरिक्ता उपमन्यु,
1: अगर हम आज के समय की सबसे प्रभावशाली तकनीक की बात करें तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है। मेरे अनुसार एआई केवल भविष्य की तकनीक नहीं है, बल्कि आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई ने सीखने का तरीका पूर्ण रूप से बदल दिया है। अब विद्यार्थी अपनी गति और अपनी आवश्यकता के अनुसार पढ़ सकते हैं। कठिन विषयों को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया है, भाषा की बाधाएं कम हुई हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहले से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो एआई स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत उपयोगी साबित हो रही है। कई बीमारियों की शुरुआती पहचान, मेडिकल रिपोर्ट्स का विश्लेषण और बेहतर इलाज में एआई डॉक्टरों की मदद कर रही है। इससे उपचार अधिक तेज और सटीक हो रहा है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो एआई उनके सशक्तिकरण का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। आज महिलाएं घर बैठकर नई नई स्किल सीख रही हैं, ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कर रही हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाओं तक पहुंचना भी हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। युवाओं के लिए एआई अवसरों का नया संसार लेकर आई है। आज का युवा एआई सीखकर स्टार्टअप शुरू कर सकता है, शोध कर सकता है, एक समाधान विकसित कर सकता है और देश विदेश में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि एआई का उपयोग जिम्मेदारी, नैतिकता और रचनात्मक सोच के साथ किया जाए। हमें हमेशा यह याद रखना है कि एआई का उद्देश्य इंसान की जगह लेना नहीं, बल्कि उसकी क्षमता को और बेहतर बनाना है। यदि हम इसका सही और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें तो एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवा के विकास और देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा। वैज्ञानिक इसके अच्छे बुरे परिणामों को लेकर समय समय पर विचार विमर्श करते रहते हैं। आज दुनिया तकनीक के माध्यम से तेजी से बदल रही है। विकास को गति देने और लोगों को बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और भूमंडलीकरण ने जहां विकास की गति को तेज किया है, वहीं इसने कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया है। जहां वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेक लाभ गिनाते हैं, वहीं ये यह भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्यों को ही होगा, क्योंकि उनका काम मशीनों से लिया जाएगा जो स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वे मानव सभ्यता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में इनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता है। तकनीक की रफ्तार और इंसान की सुरक्षा के बीच का यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए

0: आज एआई पर सख्त नियम बनाना जरूरी है, तो इसी पर हम आज बात कर रहे हैं एसडीटीटी वोकेशनल इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर शिप्रा राठी मैम से। तो मैम नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो मैम आप इस पर क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। एआई ने हमारी लाइफ को इजी कर दिया। आज हम लोग बहुत सारे एआई टूल्स के माध्यम से चीज़ें बहुत सुगमता से कम समय में कर सकते हैं, बट उसके बाद उससे हमें परेशानियाँ भी बढ़ गई हैं। आज बहुत सारे टूल्स के उपयोग ने ना केवल जीवन को बर्बाद भी करा है और आबाद भी किया है। आज वॉइस क्लोनिंग एआई के थ्रू हो जाती है, फोटो क्लोनिंग्स हो जाती हैं, जिनसे सोशल सिक्योरिटीज का बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। आपके पास किसी अपने एकदम परिचित का फोन आता है, आप उसकी हेल्प करते, पता चलता है वो तो एआई क्लोनिंग थी। तो इस तरीके की जब चीजें आती हैं, तो जरूरी है कि इस पर प्रॉपर नियम बनाए जाए, सरकार कड़ा रुख अपनाते हुए एआई के गलत प्रयोगों को रोक दे। अभी हाल में मैंने देखा है कि अगर हम किसी की बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो एआई पे, खासतौर से जैसे मैंने अभी चैट जीटीपी पे देखा, जेमिनी पे देखा, एक मैसेज सर्कुलेट हो जाता है कि आप जो है ये इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो अगर इस टाइप के कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर खासतौर से फेस रिडक्शन, फेस क्लोनिंग, वॉइस क्लोनिंग या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन पे रोक लगाना बहुत जरूरी है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसे आर्टिफिशियल ही रहने दीजिए, उसे जिंदगी में एक्चुअलिटी में मत घोलिए, दायरों में रखिए और उसके दायरे सरकार को निर्धारित कर देने चाहिए।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा शिप्रा राठी जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तकनीक की रफ्तार और इंसान की सुरक्षा के बीच का यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आज एआई पर सख्त नियम बनाना जरूरी है। हर तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। गलत जानकारी फैलाना, फर्जी तस्वीरें और वीडियो बनाना, साइबर अपराध, निजता का खतरा तथा कुछ पारंपरिक नौकरियों पर प्रभाव, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए एआई का उपयोग जिम्मेदारी, नैतिकता और कानून के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि तकनीक तभी सार्थक है जब वह मानवता के हित में काम करे। नई तकनीक से डरने के बजाय उसे समझें, जिम्मेदारी से अपनाएं और अपने ज्ञान तथा कौशल को लगातार बढ़ाते रहें। यही डिजिटल युग में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि एआई आपका प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि यह आपका सहयोगी बन सकता है। जो लोग एआई का सही उपयोग करना सीखेंगे, वही भविष्य की दुनिया में आगे बढ़ेंगे।

0: भविष्य उनका है जो तकनीक से डरते नहीं बल्कि उसे अपनाते हैं, अर्थात कई तकनीकों को अपनाने के साथ साथ अपनी रचनात्मकता, मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों को भी बनाए रखेंगे। AI मानव का विकल्प नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सहयोगी है। यदि इसका सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह भारत और विश्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आइए तकनीक को मानवता की सेवा का माध्यम बनाएं और ज्ञान, नवाचार तथा नैतिक मूल्यों के साथ भविष्य की ओर आगे बढ़ें। इसी संदेश के साथ हमें आज के इस विशेष कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: बहनों, अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम AI क्या है, इसके अवसर एवं चुनौतियां। प्रस्तुति थी रेशमा अग्रवाल की, संयोजन था OP सिंह का। बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में खुद का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बहुत सी बहनें क्या करती हैं कि मेकअप उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो बरसात के मौसम में अपना मेकअप कम रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने चेहरे को, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें खीरा और गुलाब जल से। खीरे का उपयोग प्राकृतिक सनस्क्रीन लोशन बनाने में किया जा सकता है। इसके लिए पहले खीरे को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें, फिर उसमें गुलाब जल मिलाकर अच्छी तरह से एक घोल तैयार कर लें। इस मिश्रण को त्वचा पर लगाएं, ये त्वचा को ठंडक के साथ साथ धूप के प्रभाव से बचाने में भी सहायक होता है। जैतून का तेल आप लगा सकती हैं। सनबर्न हो इसके लिए एलोवेरा का आप उपयोग कर सकती हैं, नारियल तेल का आप उपयोग कर सकती हैं। तो ये ऐसे कुछ घरेलू टिप्स थे जिनका उपयोग करके आप अपनी त्वचा का बेहद ख्याल रख सकती हैं इन बरसात के मौसम में। इसी के साथ वनिता लोक कार्यक्रम में बस इतना ही, और अपनी सहेली खुशबू को दे इजाज़त। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोग। इस कार्यक्रम को आज प्रस्तुत किया खुशबू मिश्रा ने। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना, किसान भाइयों, आज दिनांक 21/7/2026 यानी 21 जुलाई 2026 को शाम को 6:15 से हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आज का विषय है

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोग। इस कार्यक्रम को आज प्रस्तुत किया खुशबू मिश्रा ने। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना, किसान भाइयों, आज दिनांक 21/7/2026 यानी 21 जुलाई 2026 को शाम को 6:15 से हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में आज का विषय है खरीफ मौसम की सब्जी वाली फसलों में सामयिक कृषि कार्य। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर ब्रजमोहन, विषय विशेषज्ञ KVK वेटनरी कॉलेज मथुरा। किसान भाइयों, यदि आप खरीफ मौसमी की सब्जी वाली फसलों से सामयिक कृषि कार्य जैसे पौधरोपण, खड़ी फसलों रोग एवं कीट नियंत्रण, सब्जी तोड़ने के बाद उसकी ग्रेडिंग, पैकिंग एवं मार्केटिंग के साथ जैसे विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर ब्रजमोहन, विषय विशेषज्ञ KVK वेटनरी कॉलेज मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-55-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय होगा आज शाम 6:15 से 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे मीत ब्रदर्स और मोनाली ठाकुर को फिल्म बागी के इस गीत के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन को फिल्म दिल चाहता के इस गीत के लिए। जावेद अख्तर ने गीत को लिखा और संगीत शंकर एहसान लोय का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत।
1: दिल चाहता
0: साथियों, इस गीत को हमने फिल्म चलते चलते से लिया है। इस गीत को आवाजें दी हैं अभिजीत और अलका याग्निक ने, गीत को लिखा जतिन ललित ने और संगीत जावेद अख्तर का।

0: फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations. Reiterates government's commitment.

0: का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने

0: और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
1: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में

0: अस्त व्यस्त है।
1: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन आईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @IIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का

खरीदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही

0: खड़ी फसलों, रोग एवं कीट नियंत्रण, सब्जी तोड़ने के बाद उसकी ग्रेडिंग, पैकिंग एवं मार्केटिंग के साथ जैसे विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर ब्रजमोहन, विषय विशेषज्ञ KVK वेटनरी कॉलेज मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सअप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:15 से 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई।
1: चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
3: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
3: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
3: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
3: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
3: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
3: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
3: जॉन बील मेला
2: जी,
3: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
3: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
3: जी। पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
3: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
3: हाँ विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
2: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
3: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
2: अरे नहीं।

0: जी जी हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
1: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
0: जी
1: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
0: जी जी जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
1: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
0: जी
1: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
0: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
1: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
0: जी, फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
0: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है। क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया, यमन भैया, कहाँ हो भैया?
2: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है।
2: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
3: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
0: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
2: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
3: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ,

0: कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
1: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुंचे डिब्रूगढ़।
0: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुंच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
1: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
2: नमस्ते पापा।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटा आप लोग?
2: ठीक है।
1: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
2: बड़ा मजा आया।
1: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आजा आजा आजा। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
0: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
1: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चावतान जी घर पर हैं क्या?
3: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
2: नमस्ते अंकल।
3: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना?
1: बिल्कुल ठीक पहचाना।
3: आइए, स्वागत है आप सबका।
1: धन्यवाद।
3: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा वर्मा।
1: अरे भाई हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
2: अंकल हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
3: थैंक यू।
4: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
3: ओहो वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
1: जी,
3: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा।
3: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
1: अरे
3: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
1: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
2: अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
1: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
4: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
3: बेटा ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
1: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
2: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
3: थैंक यू।
1: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
3: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
1: अच्छा
2: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
3: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
1: जल उत्सव क्यों?
3: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
1: अच्छा।
3: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
1: हाँ।
3: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
1: जी।
4: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
3: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
2: तो हम भी चलें?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
2: चलो चलो चलो।
0: थोड़ी देर में शोभा यात्रा

0: बौद्ध विहार के पास पहुंची। वहां की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोंस खोंस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
1: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
0: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
2: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे।

0: हैप्पी संकेत।
1: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
2: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
3: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
4: अरे!
1: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
5: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
2: अच्छा।
5: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
2: जी अंकल।
5: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
6: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
5: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
6: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
3: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
7: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
8: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को

0: व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
1: क्लैप एंड स्माइल।
2: हेलो फ्रेंड्स।
3: हेलो।
2: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। सो वी विल सिंग द हैप्पी सॉन्ग अगेन बट विद अ डिफरेंस।

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET-NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुम लता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार. उमंग.

अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 5:30 पर हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं. सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार. श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान का अभ्यास बेहद फायदेमंद है. ये तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को कम करके मन को शांत करते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं और चिंता डिप्रेशन के लक्षणों में कमी लाते हैं. नियमित अभ्यास से भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त होती है. मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ खास योगासन हैं. अगर हम इनको जीवन में अपनाएं तो हम काफ़ी हद तक अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं और मानसिक तनाव से दूर रह सकते हैं. उनमें प्रमुख है बालासन, इसे चाइल्ड पोज भी कहते हैं. ये मस्तिष्क को शांत करता है व तनाव व थकान को दूर करने में मदद करता है. सेतु बंधासन, ये आसन चिंता को कम करता है और दिमाग को आराम पहुंचाता है. वृक्षासन, एकाग्रता बढ़ाने और मानसिक संतुलन के लिए बेहतरीन मुद्रा है. कुछ प्राणायाम भी हैं जैसे अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है जो मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है

और मन को स्थिर करता है। भामरी प्राणायाम इसके अभ्यास से मस्तिष्क की नसें शांत होती हैं, जिससे गुस्सा, चिंता और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। और एक महत्वपूर्ण है ध्यान यानी मेडिटेशन। रोजाना 10-15 मिनट का ध्यान करने से मस्तिष्क में सुधार होता है, आपको वर्तमान में जीना सिखाता है और नकारात्मक विचारों को हावी होने से रोकता है। इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हमारे देश में काम कर रही हैं, आप उनसे संपर्क करके मेडिटेशन की क्लासेस ऑनलाइन या स्थल पर जाकर ले सकते हैं। मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान के वैज्ञानिक लाभों के बारे में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम दिनचर्या को सुधारें, अच्छा खान पान लें, अच्छी निद्रा लें, लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार और हंसी मजाक वाला व्यवहार रखें, तो काफ़ी हद तक हम मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं। लोगों का भला करना भी इसमें एक काम महत्वपूर्ण है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे युवा साथी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए योग को अपनाएंगे और जीवन शैली को बेहतर बनाएंगे।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
5: और साथियों, अब आपको सुनवाते हैं वार्ता मास मीडिया के क्षेत्र में कैरियर। आलेख आरती शर्मा का है और वाचन उषा पांडे का।
6: मन में हो विश्वास और कर्म में प्रकाश, तो कोई राह नहीं होती कठिन दुश्वार। जो जज्बा रखे निरंतर बढ़ने का मन में, कदम ठहरते नहीं कभी जीवन में। श्रोताओं, हर नया संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और यही मजबूती

0: हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है और आसमान छूने के लिए जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जमीन यानी जीवन की सच्चाई, सफलता की सीढ़ियां जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और परिश्रम से चढ़ना जानते हैं। आज का युग सूचना का युग है और मास मीडिया इसकी सबसे बड़ी ताकत। मास मीडिया आवाज भी है और बदलाव का साधन भी। मीडिया केवल खबरें नहीं देता, यह समाज का दर्पण भी है। और आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वह है मास मीडिया। मास मीडिया यानी वह शक्ति जो समाज को जोड़ती है, विचारों को आकार देती है और सबसे बड़ी बात, एक साथ लाखों लोगों तक संदेश पहुंचाती है। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है क्योंकि यह सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करता है। आज के दौर में जहां सूचना ही शक्ति है, वहां मास मीडिया की भूमिका और भी अहम हो जाती है। और इसी विषय पर गहराई से रूबरू कराने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आरती शर्मा, जो कि मास मीडिया स्टडीज की जानकार हैं और शिक्षाविद भी। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: आज के समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं, कंप्यूटर का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और इस आधुनिकता की दौड़ में हर कोई सक्सेस होना चाहता है। सफलता हर किसी को अच्छी लगती है और उसके लिए सहारा वो लेता है सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया तो अपनी जगह कामयाब है ही, हम आज बात करेंगे अपने युवा पीढ़ी के लिए मास मीडिया के बारे में, क्योंकि मास मीडिया के तहत उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है, कैसे उनका मार्गदर्शन हो सकता है, कैसे उनका करियर बन सकता है इस राह में, आज यही जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आपके साथ हमारे कार्यक्रम में हैं। आप हमें बताइए सबसे पहले कि ये मास मीडिया स्टडीज विषय है क्या?
1: देखिए, दो तरीके के मीडिया होते हैं जी। एक प्रिंट मीडिया जैसे अखबार और मैगजीन, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे रेडियो टेलीविजन, तो और एक नया मीडिया अब आया है जिसको कहते हैं न्यू मीडिया, यानी कि आप कह सकते हैं सोशल मीडिया। तो हम मास मीडिया स्टडीज में इन सारे मीडिया के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं, उन्हें सब पढ़ाया जाता है, इनके प्रोस एंड कॉन्स बताए जाते हैं कि क्या सही है। उनको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि समाज में मीडिया किस तरीके से असर डालता है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि शिक्षा और सूचना भी प्रदान करता है। ये हम बच्चों को बताते हैं मास मीडिया स्टडीज के थ्रू।
0: शिक्षा और सूचना की आपने बात की और इसके तहत तकनीकी जानकारी बच्चों को दी जाती है इससे जुड़ी हुई, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप इस विषय को बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप ज़्यादा ध्यान किस बात पर देते हैं?
1: देखिए, सब्जेक्ट है तो थियोरेटिकल भी होता है और काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल बातें भी इन्हें बताई जाती हैं, जैसे कि इन्हें वीडियो एडिटिंग सिखाई जाती है, प्रेजेंटेशन सिखाया जाता है, इंटरव्यूज़ कैसे तैयार करते हैं या रेडियो प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं, उनमें क्या क्या बातें, बारीकियां सब इनको बताया जाता है, तैयार किया जाता है। और हमारे बच्चे इसमें बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, अच्छे से सीखते भी हैं। कई सारे बच्चों को इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वीडियो एडिटिंग और इसमें इनाम मिल चुके हैं। और जहां तक थियोरी की बात करें तो CBSE का हमारा स्कूल है, तो इसमें कई सारे बच्चों को पूरे 100 out of 100 मार्क्स भी मिलते हैं। इसलिए हम इनको पूरा प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन देते हैं।
0: बहुत सारे बच्चों को रुचि होती है मास मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। बच्चे बनना चाहते हैं जो वो बनना चाहते हैं, वाक्पटु होना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर बोलने की कला होती है और हमारी युवा पीढ़ी चाहती है कि हम आगे बढ़ें, कुछ करें। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे जिनके अंदर ये प्रश्न बार बार आता है कि ये कितना ज़रूरी है जीवन में।
1: देखिए, ये सूचना का युग है
0: जी,
1: है ना, डिजिटल युग है, तो हम बच्चों को केवल किताबों तक तो सीमित नहीं कर सकते, उन्हें दुनिया में बाहर निकलना है। और सबसे बड़ी बात जो हम उन्हें सिखाते हैं वो है मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी यानी कि उन्हें ये समझना है कि क्या सही है और क्या गलत। देखिए, मीडिया आपको बहुत सारी चीज़ें देता है, तो उनको इतनी समझदारी देना ये हमारा काम है कि क्या गलत है और क्या सही है, किस पर विश्वास करना है, किसे नहीं करना है। जो सोशल मीडिया है उसमें एक सबसे बड़ी कमी है कि अच्छाई भी है पर कमी यह है कि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फेक होती है और ट्रोलिंग होती है उसमें खासतौर पे। तो हमें उन्हें ये सिखाते हैं कि कितना सही

0: है और क्या सही है क्या गलत है, तो उनको चुनना है इस पे, और यही हमारा सब्जेक्ट मास मीडिया स्टडीज उन्हें बताता है।
1: सही और गलत में अगर बच्चे आपसे जानना चाहें, युवा पीढ़ी, हम लोग, कि प्रिंट मीडिया का कितना योगदान है?
0: देखिए, प्रिंट मीडिया को तो बहुत ऑथेंटिक मीडिया मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो अखबार में छपा है, आपने अक्सर देखा होगा कि अखबार में अगर गलत कुछ इन्फॉर्मेशन छप जाती है तो वो उसकी अगले दिन अपोलॉजी आती है।

0: तो वो उसकी अगले दिन अपोलॉजी आती है कि हाँ हम क्षमा मांगते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। और प्रिंट की शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है, आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया एक अच्छा मीडिया माना जाता है,
1: इससे लिखने की कला भी,
0: लिखने की कला। हम ये बच्चों को सिखाते भी हैं कि कैसे उनको स्क्रिप्ट तैयार करनी है और कैसे उन्हें बोलना है, इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और उन्हें प्रेजेंटेशन आता है। देखिए हमारे मास मीडिया के जितने भी बच्चे होंगे वो आपको कॉन्फिडेंट दिखेंगे, आप अभी उनसे कुछ बुलवाएंगे तो वो रेडी रहेंगे कि वो बोल सकते हैं और आपके सामने कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं।
1: सुनने के साथ साथ पुस्तकीय ज्ञान कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए?
0: देखिए पुस्तकीय ज्ञान भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं उनमें तो राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग चारों चीज़ें शामिल हैं। तो अगर वो रीड नहीं करेंगे, अगर उन्हें ज्ञान पढ़ने से नहीं आएगा तो शायद उनकी इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए थियोरी जानना और पुस्तकीय ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: रेडियो और दूरदर्शन कितना महत्वपूर्ण है शिक्षा और समाज के लिए?
0: देखिए रेडियो सबसे सस्ता और सबसे सुलभ माध्यम है। अगर आप रेडियो देखेंगे गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है
1: जी,
0: उसमें सूचना भी आती है, मनोरंजन भी आता है और गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज हैं, मुझे लगता है कि गांव के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृषि दर्शन प्रोग्राम या फिर किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम, यूथ के लिए प्रोग्राम, सबके लिए, भाइयों बहनों सबके लिए कवर करता है रेडियो और सस्ता है। आप देखिए कि हम जब ट्रैवल करके आ रहे थे तो उसमें भी रेडियो एक अहम भूमिका निभा रहा था। दूरदर्शन शायद हम उतना नहीं देख पाएंगे या फिर कोई और माध्यम को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से रेडियो प्रोग्राम और रेडियो का जो संचालन का तरीका है वो बहुत ही बेहतर है और बच्चों के लिए भी वो एक बहुत अच्छा,
1: सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता, इसकी
0: विश्वसनीयता भी है बहुत ज़्यादा
1: जी। रेडियो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना को लेकर के चलता है, दूरदर्शन की भी यही भावना है। और ये बच्चों को जानना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप इसकी विश्वसनीयता और इसके साथ जानकारी और इसके बोलने की कला को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जी आजकल सोशल मीडिया ने जो पारंपरिक मीडिया है यानी प्रिंट मीडिया, इसको किस तरह से प्रभावित किया है?
0: देखिए यंगस्टर्स हैं जो खास तौर पे यूथ, उनके पास सबके पास मोबाइल आ चुका है तो, और मोबाइल इतना हैंडी है, इतना उनके पास रहता है कि वो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो जो पारंपरिक मीडिया है जैसे कि न्यूज़पेपर, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, वो उतना देखना पसंद नहीं करते हैं। तो यही चीज़ हम उन्हें मास मीडिया स्टडीज़ में बताते हैं, रिलायबिलिटी की, वैलिडिटी की, कि क्या इम्पोर्टेंस है। आपको सिर्फ उस चीज़ पे विश्वास नहीं करना है जो आपके आगे पब्लिश हो रही है, आपको उसकी ऑथेंटिसिटी को जानना है कितना सच है। इसलिए हम ये बताते हैं कि पारंपरिक मीडिया सोशल मीडिया से बेहतर है अगर आप उसको रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी के टर्म्स में देखेंगे। तो
1: प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में आप हमेशा बच्चों को बताते होंगे?
0: बिल्कुल। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की हर जगह क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आप रेडियो प्रोग्राम में भी देने आएंगे या कहीं पर भी इंटरव्यू देने भी जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या सवाल पूछा गया है और किस तरह से आप उसका उत्तर दे रहे हैं, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है।
1: यानी तो कहीं भी जाने से पहले, बोलने से पहले उसके बारे में
0: पूरी सोचना भी है और पूरी जानकारी लेके जाना है तभी उसको बोलना है।
1: जो छात्र अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं मास मीडिया में, उनके लिए आप क्या कहना?
0: देखिए ये तो बहुत ही अच्छा फील्ड है, लिखने को ले लीजिए, लिखने का भी फील्ड है, बोलने का भी इसमें काम है, कैमरे के सामने भी है, कैमरे के पीछे भी है, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास जिसमें आप अपना फील्ड बना, अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप शुरू से मास मीडिया स्टडीज़ पढ़ते हैं तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो 3 साल के बेसिक ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं, उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। और अगर आप CBSE स्कूल्स की बात करें, उन्होंने तो ये स्किल सब्जेक्ट के रूप में लगाया है। स्किल यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको कुछ लर्न करने का मौका मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतर मौका होगा जानने का कि आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं।
1: जी विद्यालय में तो ये विषय है ही,
0: हाँ,
1: बच्चों की ग्रोथ के लिए रखा गया है इस विषय को, उनके सर्वांगीण विकास के लिए। और विद्यालय के अतिरिक्त आप डिप्लोमा की बात कर रही थी, तो डिप्लोमा कितने समय का लगभग होता है?
0: देखिए

0: डिप्लोमा कोर्सेज के अलग अलग टाइम है. ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ट्वेल्थ की बात करते हैं तो 3 साल में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, BJMC कहते हैं उसको, या फिर बैचलर ऑफ मास मीडिया भी है, या फिर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं. बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं आप, एडवर्टीजमेंट में जा सकते हैं, डिजिटल मीडिया के में जा सकते हैं, डिजिटल न्यूज़ में जा सकते हैं, या सिंपल BA मास स्टडीज में भी कर सकते हैं आप, या सिंपल BA मास कम्युनिकेशन में भी आप कर सकते हैं.
1: जी, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास तो होगा ही, एक अच्छा उनको करियर मिलेगा, उनकी ग्रोथ होगी और उनकी जीविका का ये साधन भी बनेगा, और साथ ही समाज का पुनर्निर्माण का एक जरिया है ये. समाज
0: जी बिल्कुल
1: में किस तरह से बच्चे उन्नति कर सकें. बहुत सारी जो माताएं हैं वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित रहती हैं कि हमारे बच्चे इस फील्ड में कोई उनका भविष्य नहीं है, तो आप हमारी बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा करियर जब वो चुनते हैं तो उन्हें ग्लैमर चाहिए.
1: जी,
0: तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें ग्लैमर भी है, जिसमें पैसा भी है, और जिसमें आपको अपनी स्किल्स दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका भी है. तो करियर के का अगर हम लें तो ये सबसे अच्छा मीन्स है जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है. पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग है, इसमें जो वो चाहें अपने हिसाब से विषय चुन सकते हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के फील्ड में हो, जर्नलिज्म में हो, या वीडियोज़ के रिलेटेड हो, अपने आप चुनें और अपना करियर बनाएं. देखिए, सफलता के लिए मेहनत तो जरूरी है, और इस फील्ड में तो रचनात्मकता से लेकर मेहनत
1: और सृजनात्मकता भी
0: सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है.
1: जी, आपने ग्लैमर की बात कही, ग्लैमर से न्यू मीडिया जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, जिससे बच्चे भटक जाते हैं. इसी वजह से माता पिता उन्हें दूर रखना चाहते हैं सोशल मीडिया से, लेकिन सोशल मीडिया एक तरह से जहाँ दुष्प्रभावित करता है वहाँ कहीं ना कहीं वो मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन बच्चे नहीं समझते. तो ऐसे में आप बच्चों का क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि वो जो न्यू मीडिया है, सोशल मीडिया है, उससे बचते हुए अपनी ग्रोथ कैसे करें?
0: देखिए, मार्गदर्शन के लिए मैं यही कहूँगी कि मीडिया लिटरेट होना ज़रूरी है.
1: जी,
0: मीडिया में कितने प्रिजडिसेस हैं, कितने स्टीरियोटाइप्स हैं, क्या उनको चुनना है, क्या गलत है, क्या सही है. अगर कोई फिल्म मेकिंग भी है तो वो उनका मेन मकसद अपना पैसा कमाना और अपनी फिल्म को अच्छा बनाना ये है. तो आपको चुनना है, आपको दिमाग लगाना है कि क्या सही है और क्या गलत है, और जैसे ही आप इसको समझ पाएंगे तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है.
1: आरती जी, आपने हर एक पक्ष पे अपना नज़रिया रखा, बच्चों का मार्गदर्शन किया, यहाँ तक कि आपने हमारा, माताओं बहनों श्रोताओं का मार्गदर्शन किया. बस कार्यक्रम के अंत में यही कहना चाहूँगी कि सपनों की उड़ान को पंख दो विचारों के, संघर्ष से सजाओ राह तलबगारों के, जो थकते नहीं रुकते नहीं तूफानों से, वही छूते हैं ऊंचाइयां आसमानों से. आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
2: श्रोताओं, अभी आपने ये भेंट वार्ता सुनी मास मीडिया के क्षेत्र में कैरियर. वार्ता करती आरती शर्मा और इनसे भेंट कर रही थी उषा पांडे. और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का.

0: अशोता ओसी गीत के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगा। UCC के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी

0: अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समर्पित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

अब से थोड़ी देर बाद संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। यह हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का संचालन करेंगे रूपकिशोर शर्मा और दीपक गोस्वामी। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा खरीफ मौसम की सब्जी वाली फसलों में कृषि कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ब्रजमोहन, कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा। श्रोताओं, यदि आप भी इस कार्यक्रम में खरीफ मौसम की सब्जी वाली फसलों में कृषि कार्य के संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें सीधे टेलीफोन करके विशेषज्ञ से जानकारी ले सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता और मोबाइल से डायल करने वाले श्रोता टेलीफोन नंबर से पहले मथुरा का एसटीडी कोड 0565 अवश्य लगाएं। इस प्रकार संपूर्ण नंबर हो जाएगा 0565 25 30 135। याद रखिएगा, कार्यक्रम का समय है संध्या 6:15 से लेकर 6:45 के मध्य।

ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा संध्या 7:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भक्त कथा, भक्त राम नारायण, कथाकार होंगी गौरी अग्रवाल। संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। देशगान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:15 पर। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी सनम।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहानी तराने आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे दत्तात्रेय वीणा वादन। वादक कलाकार होंगे डीआर पार्वतीकर। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।

0: इस सभी भैया बहनान को रूप किशोर और
1: दीपक गोस्वामी की राम राम।
0: दीपक भैया आपको हमारी राम राम और डॉक्टर साहब आपको भी हमारी राम राम।
2: राम राम साहब।
0: भैया जैसो कि आप सब जानो ही हो, आज के दिन यानी मंगलवार को आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार होए, क्योंकि आज के दिन आपके जो प्रश्न होए वो प्रश्न फोन के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ के पास आमे और आपको वाको समाधान मिले। तो दीपक भैया आज आप कौन सी बात पे बात करवा चाह रहे हैं?
1: आज को विषय है हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम में खरीफ मौसम की सब्जी वाली फसलन में कृषि कार्य, यानी जो खरीफ मौसम में हमारे किसान भैया हैं जो सब्जी उत्पादन को कार्य कर रहे हैं, जिनकी फसलन में कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं बिनके काजे आज आप प्रश्न पूछ सको। और आज हमारे स्टूडियो में जो आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ब्रजमोहन जो कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा से हमारे मध्य पधारे हैं, तो डॉक्टर साहब आपको स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यह खरीफ के मौसम में जो हमारे किसान भैया हैं और सब्जी को उत्पादन कर रहे हैं, तो यह फसल में मुख्यतः जो समस्या आवे वो का आवे? और जहाँ से पहले हम डॉक्टर साहब से बात करें, हम अपना नंबर आपको दोबारा बताए दें, मथुरा से जो वार के श्रोता हैं या जो श्रोता हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारा नंबर है 0565-25-30135। यह नंबर पे आप फोन करके अपनी कई भी समस्या को समझ सकें, जान सकें। और आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ब्रजमोहन जो कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा से हैं और विषय है खरीफ मौसम की सब्जी वाली फसलन में कृषि कार्य। तो डॉक्टर साहब जो मुख्य बात यही है कि खरीफ के मौसम में जो सब्जी वाली हमारी फसल है, इनमें जो मूलतः जो छोटी छोटी समस्या हमें बिन के काजे कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो हमारे किसान भाई इनको परेशान?
2: जी बिल्कुल। देखिए जो खरीफ का मौसम है इस समय में जो हमारे किसान भाई हैं, अगर हम सब्जियों की बात करें तो जिनमें मुख्य रूप से लौकी है, तोरई है, खीरा है, टिंडा है, करेला है, बहुत सारी कद्दूवर की फसलें हैं जिनकी खेती करता है। चूँकि बरसात का सीज़न है, तो बरसात का सीज़न जब आता है तो अपने साथ दो चीज़ों को साथ जरूर लेके आता है, पहला कीट पतंगे और दूसरा बीमारियां, जिनमें सड़न की समस्या हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पाउडरी मिड्यू हो सकता है, डाउनी मिड्यू हो सकता है, इन सब चीज़ों को साथ लेके आता है। अगर किसान भाई समय पर उनका देखभाल, उनका रख रखाव, पानी की जल निकासी की उचित व्यवस्था अपने खेत में रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि बीमारियां और कीड़े लगने का जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम होती है। एक चीज़ अपने साथ और लेके आता है ये मौसम, वो है खरपतवार। तो क्योंकि इस समय खरपतवारों का जो इन्फेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर किसान भाई अपनी फसलों के आसपास सफाई रखते हैं, अपनी मेड़ों को साफ रखते हैं, जहाँ पर उनकी फसलें लगी हुई है उनमें से खरपतवारों को निकाल कर बाहर डाल देते हैं, तो बाहर डाल के उसको उचित जगह उसका प्रबंधन कर देते हैं, यानी गड्ढा खोद कर उसमें दबा देते हैं ताकि उसकी कंपोस्ट वगैरह बन जाए, तो बहुत सारी बीमारी और बहुत सारे कीट पतंगों का समाधान तो बिना दवाई के वहीं पर हो जाता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब कि लोगों की भी ये शिकायत रहे कि सब्जी में दवाई बहुत ज़्यादा लगाई।
2: जी तो सर, दवाई लगाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है ना अपने खेतों की जो, देखिए अगर हम अपने शरीर की साफ सफाई रखते हैं, अपने घरों की साफ सफाई रखते हैं, तो खेत भी हमारे साफ सफाई चाहते हैं। जितने खरपतवार अधिक होंगे खेत के अंदर, उतने ही कीट पतंगों के लगने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि कीट पतंगे अल्टीमेटली दवा स्प्रे करने के बाद उसी के अंदर घुस जाते हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते। अगर वो घास का खरपतवार वहाँ नहीं होंगे तो कीट पतंगे कहीं नहीं जाएंगे, वो उस दवाई से उसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा और कीट पतंगे मर जाएंगे।
1: जो भैया हमारे यह कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आप तो जान ही हो आज को कार्यक्रम है हेलो किसान वाणी, और यह कार्यक्रम में आज को जो विषय है खरीफ मौसम की सब्जी वाली फसलन में कृषि कार्य। और कहीं भी अगर आपको कोई समस्या हो तो भैया हमारे नंबर 0565-25-30135 पे फोन करके आप अपनी समस्या को पूछ सको। हेलो हेलो, एक किसान भैया को फोन आ रहा हो। हेलो, हमारी बात नहीं है भाई उनसे। तो डॉक्टर साहब जो हम बात कर रहे हैं वो खरीफ मौसम की जो सब्जी वाली फसल में कृषि कार्य से संबंधित बात कर रहे हैं
2: जी,
1: तो या में बात चल रही दवाई के संबंध।
2: जी हाँ,
1: तो जो ऐसी अभी आप जो बता रहे हैं कि ऐसे कछु कार्य है सकें जैसे हम बगैर दवाई के भी अपनी फसलन की सुरक्षा कर सकें, तो डॉक्टर साहब
2: जी।
1: हेलो हेलो,

0: हेलो।
1: ये बहुत ही जो आपने बात पूछी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसान भाई अपने खेत की सफाई और उसके खरपतवार का नियंत्रण अच्छे प्रकार से रखते हैं तो बहुत सारी हमारे कीट पतंगों का जो समाधान है वही हो जाता है, हमें दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात यह होता है कि जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो है मौसम में बरसात कभी हल्की होती है कभी तेज़ हो जाती है।
0: जी
1: लेकिन ऐसी स्थिति में जैसे हमारे कद्दू वर्गीय फसलें हैं जो ज़मीन पर किसान भाई लगाते हैं तो उनमें नुकसान सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो उसका फल होता है बेल होता है वो मिट्टी के संपर्क में रहती
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: अगर किसान भाई उस समय वैज्ञानिक तकनीकी का इस्तेमाल करें, या तो फेंसिंग पे अपनी लौकी तोरी को लगाएं या मचान पे अपनी लौकी तोरी को
0: यानी आप जो
1: लगाएं।
0: कहना चाह रहे हो ऊंचाई पे थोड़ी
1: जी
0: सी
1: हाँ, वो
0: मास्क की
1: मचान,
0: लगाए
1: जी
0: सकें।
1: हाँ, जो लौकी तोरी आपका है, करेला है, अगर आप उसको मचान पे उसकी खेती करता है तो जो फल है वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आते और वो ऊपर से लटके रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पानी अगर खेत के अंदर भर भी जाता है, अगर आपके पास ड्रेनेज की अच्छी फैसिलिटी है, आप निकासी की अच्छी व्यवस्था है आपके पास में, तो
0: हेलो, एक किसान भैया हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब।
1: पानी की निकासी उसके पास में अच्छी व्यवस्था है तो वो पूरा पानी कुछ समय के बाद निकल जाता है, तो हमारी फसल जो है वो सड़ने गलने से बच जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपके फल तैयार होते हैं और वो बेल अगर मिट्टी के ऊपर फैली होती है और आपको उसकी तुड़ाई करनी होती है तो कई बार आप देखोगे और पाओगे कि वो जो बेल है कई बार आपके पैर के नीचे आती है, और जितना उसके भाग आपके पैर के नीचे आएंगे वो वहीं से फट जाएगी, और फटने के बाद में वो बेल
0: हेलो
1: वहां से आगे बढ़ना बंद कर देगी।
0: हेलो, एक किसान भैया हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब,
1: तो ऐसी स्थिति में आप जो जिस बेल से हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको 2-2.5 महीने तक फल देगी, वो आपको फल नहीं देगी। लेकिन अगर वो मचान पे लगी होगी तो मचान पे लगने के बाद आप उसको सावधानी पूर्वक उसको आराम से तोड़ सकते हैं और वो बेल कभी भी आपके पैरों के अंदर नहीं आएगी। कद्दी वर्गीय फसलों में सबसे बड़ा फायदा आपको तभी होगा जब आप उसकी जो खेती मचान के ऊपर करें, या जो आपने फेंसिंग लगा रखी उस फेंसिंग के ऊपर आप उसको
0: हाँ,
1: चढ़ा दें।
0: जहां मचान की सुविधा ना हो,
1: जी
0: बासन
1: हाँ,
0: क्यों लगाए
1: वहां आज
0: गए?
1: आजकल झोपड़ी नुमा भी एक स्ट्रक्चर बना देते हैं,
0: जी जी
1: उस
0: जी जी
1: झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर में ये होता है कि आप बांस की, जरूरी नहीं इसके लिए आप किसी आयरन पोल का इस्तेमाल करें, आप बांस को, डंडों को एक झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको उसके ऊपर आप बेल को चढ़ा देते हैं, तो आप पाओगे कि जो भी फल होंगे वो उसके अंदर की तरफ लटकेंगे, जिसमें किसी भी तरह के कोई कीट पतंगों का नुकसान नहीं होगा। अगर किसी फल के अंदर
0: या मैं
1: कोई,
0: फल फल की बढ़वार भी अच्छी
1: जी
0: हो
1: हाँ,
0: गठे हुए मेरे।
1: कभी कभी आप देखते होंगे मार्केट के अंदर कभी लौकी तोरई आते हैं, जो ग्राहक उस चीज को खरीदने के लिए आता है उसको पलट पलट के देखता है और वो देखता है कि कहीं से सफेद होती है कहीं से हरी होती है, जबकि हरी और सफेद होने से उसकी क्वालिटी के अंदर कोई अंतर नहीं आता। लेकिन जो ग्राहक होता है उसकी जिज्ञासा होती है कि जो लौकी है आधा किलो का होना चाहिए और चारों तरफ से हरा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि
0: तो
1: जब फल,
0: ये बाजार की मांग के अनुरूप
1: ये
0: है।
1: बाजार की मांग होती है, इसमें ग्राहक ही आपको बताता है कि कौन सी क्वालिटी का जो लौकी है या तोरई है या खीरा है ककड़ी है वो अच्छी क्वालिटी का है। तो सफेद होने से उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जब ग्राहक पैसा देता है तो वो उसको पूरा हरा चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो लौकी है वो अगर मिट्टी के संपर्क में आता है तो मिट्टी की गर्मी से उसके नीचे की क्लोरोफिल उड़ जाती है, वो सफेद हो जाता
0: सफेद हो
1: है, वो
0: जाती है,
1: बेकार नहीं होता। लेकिन ग्राहक को चाहिए हरा, और हरा कहां से मिलेगा? जब वो हवा में
0: ये बहुत
1: लटकेगा
0: महत्वपूर्ण
1: या
0: बात है।
1: मचान के ऊपर लटकेगा या किसी जो आपने स्ट्रक्चर बना रखी है उसके ऊपर लटकेगा, तो आप देखोगे वो चारों तरफ से हरा होगा, क्योंकि वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा, और जब मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा तो उसके अंदर गलन की कोई समस्या नहीं होगी और आपको कीट पतंगों की रोकथाम करने के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
0: यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो किसान भैया है उनकी खेती में लागत भी कम हो रही है।
1: जी हाँ बिल्कुल, तो आप अगर तकनीकी का इस्तेमाल करते, तकनीकी जो है आपकी लागत को कम करती है और आपके उत्पादन को बढ़ाती है।
0: यह कार्यक्रम में आज हमारे संग हैं डॉक्टर ब्रजमोहन जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा से हैं, और आज का विषय है खरीफ मौसम की सब्जी वाली फसलन में कृषि कार्य। और हमारा नंबर है 0565-253015,
1: जी
0: या नंबर पे आप फोन करके अपनी समस्याओं की जानकारी ले सकते हैं।
1: जी दूसरी एक चीज और, जो जिन किसान भाई इस समय बैंगन लगा रहे हैं या टमाटर लगा रहे हैं, मिर्च लगा रहे हैं, उनमें भी कर्लिंग की बहुत बड़ी समस्या
0: हाँ,
1: आती है।
0: टमाटर की खेती
1: जी
0: में
1: हाँ,
0: तो
1: उनमें कर्लिंग की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इस समय अगर खेतों के चारों तरफ आप सफाई नहीं रखोगे तो जो कीट पतंगे आएंगे, जिनमें मुख्य रूप से व्हाइट फ्लाई होता है, वो कर्लिंग की समस्या यानी सुकड़ेपन की समस्या, क्योंकि वो जो मक्खी होती है एक पौधे से दूसरे पौधे पर बैठती है, उसका रस चूसती है और जो वायरस होते हैं उनको पौधे के ऊपर छोड़ देती है, तो हमें उस मक्खी को कंट्रोल करना होता है। उस मक्खी को कंट्रोल करना, अगर एक बार वो बीमारी खेत के अंदर घुस जाती है तो उसकी रोकथाम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो
0: तो
1: जाता
0: यह
1: है।
0: अगर

0: प्राथमिक स्थिति में अगर समझ ले तो किसान को लक्षण कैसे दिखाई देंगे?
1: शाम के टाइम आप खेत के अंदर जाइए और खेत में पौधे को हिला के देखिए आप, अगर कोई भी वहां पर कोई भी कीट पतंगा होगा, सफेद मक्खी होगी, वो आपको जरूर उड़ती हुई दिखाई देगी। दिन में वो आपको नहीं दिखाई देगी, सुबह और शाम में दिखाई देगी। तो किसान भाई सुबह और शाम के टाइम एक बार खेतों में जाके अपनी फसल को प्रॉपरली देखें, और उसमें अगर कोई भी एक दो कीट पतंगा भी उड़ता हुआ उसमें दिखाई देता है, सीधा स्प्रे शेड्यूल को फॉलो करें। जो किसान भाई हमारे जैविक खेती करते हैं वो नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जो
1: जी हाँ, वो नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल में जिसमें एजाइट्रिएक्टिन 0.03% होता है, उसकी 2 ml के हिसाब से पानी में घोल के उसका स्प्रे कर सकते हैं। और जो किसान भाई जैविक खेती नहीं करते, वे एसीफेट नाम की एक कीटनाशक दवाई आती है जिसकी 1 ml मात्रा, ज़्यादा मात्रा उसको इस्तेमाल नहीं करते, केवल 1 ml मात्रा इस्तेमाल करनी है। ठीक है, 1 liter पानी में इस्तेमाल करके आप अपने फसलों पे उसका स्प्रे करें तो वो जो व्हाइट फ्लाई का अटैक है वो बिल्कुल रुक जाएगा। तो बरसात के समय में
0: अब डॉक्टर साहब एक जो प्रश्न है वो ये है कि कद्दू वर्गीय फसल में बरसाती जो हमारी टिंडे की खेती है
1: जी,
0: वाकई हमारे जो किसान भैया है वह खेती को कैसे करें और वहाँ में जो मूल समस्या है वह को समाधान कैसे करें?
1: देखिए, बरसात में जो इस समय किसान भाइयों ने अपने खेत में जो कद्दू वर्गीय फसलें बो रखी है उनमें टिंडा भी इस समय चला हुआ है। अगर किसान भाई इस समय में खेती करना चाह रहे हैं, चूंकि बरसात का सीजन चला हुआ है, तो बरसात के सीजन में जो टिंडा है उसको आप मचान पे करें तो वो बेहतर होगा। क्योंकि
0: हेलो
2: हेलो
0: हाँ जी, राम राम साहब।
2: राधे राधे जी।
0: राधे राधे साहब, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
2: बरौली से बोल रहे हैं, छाता के पास से।
0: हाँ जी साहब, समस्या बताओ। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात को, आप समस्या बताओ अपनी।
2: समस्या ये है, हमारी कुछ कद्दू की और उसकी चौला की बेल है
0: जी,
2: उनमें फल लगे और एक दो बेलन में।
0: अच्छा,
2: अब उसमें फल कुछ लगता है, कम लगता है और वो जल जाता है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या कुछ जवाब हमारे किसान भैया पूछना चाह रहे हैं?
1: किस चीज में आपका जो फल लगता जल जाता है? कद्दू में?
2: हाँ, कद्दू और हाँ काफी फल।
1: देखिए, जो आप कद्दू की बात कर रहे हैं कि वो जल जाता है, वो पहले हो रहा था, इस समय जो है अब नई वो फ्रूटिंग शुरू होगी। अगर आपने अपनी वो मचान पर लगाई हुई है तो मचान पर लगने के बाद में मेरे हिसाब से वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर जमीन फ्लैट लैंड पे आपने समतल खेत के ऊपर आपने वो लगाई हुई है तो कीट पतंगों का आक्रमण जरूर होगा। कीट पतंगे क्या है कि जो नया फल लगता है उसमें अपने प्रोबोसिस से उसका रस चूसते हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर अपने अंडे दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको एक स्प्रे शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा कि आप कोई भी कीटनाशक दवाई जैसे कि थायोमेथोक्सोम है या अल्फा मैथ्रीन है, साइपर मैथ्रीन है, उसकी 2 ml मात्रा 1 liter पानी में डाल के उसका स्प्रे इसके ऊपर कर दें। स्प्रे करने के लिए सबसे जो बेहतरीन समय होता है वो मौसम थोड़ा साफ सा होना चाहिए, थोड़ी धूप निकलनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप उसके ऊपर स्प्रे करिए तो काफी हद तक वो उसका कंट्रोल हो जाएगा, जो फल लग रहे हैं वो स्वस्थ फल बच जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में, क्योंकि इस समय कीट पतंगों का आक्रमण ज्यादा होता है, जिस फल को भी वे पंक्चर करेंगे या रस चूसेंगे उसमें वो समस्या आएगी और वो समस्या आने के बाद में फल या तो ड्राई हो जाएगा या फिर झड़ जाएगा।
0: तो भैया आपने अपने प्रश्न को उत्तर समझ लिया, और भी कुछ आप पूछना चाह रहे या विषय में? हेलो, हाँ, किसान भैया से हमारा संपर्क समाप्त है। तो आज के हमारे कार्यक्रम में जो विषय चल रहा है, या मैं अगर आप अपनी सब्जी की जो फसल है या मैं कोई समस्या महसूस करें तो हमारे नंबर 0565-2530-135 या नंबर पे आप संपर्क करके हमें पूछ सकें। तो डॉक्टर साहब जो बात चल रही टिंडे की खेती में
1: जी हाँ,
0: तो टिंडे की खेती में जो परेशानी है
1: जी,
0: हमें कीट पतंगा की या ऐसी उनकी बड़वार कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें तो मेरे हिसाब से काफ़ी फायदेमंद होती है किसान के लिए, जिनमें आपका अर्का टिंडा होती है और पंजाब टिंडा, इनकी खेती बहुत महत्व बढ़िया होती है और इनका जो उत्पादन क्षमता है इनकी अच्छी होती
0: है। में कुछ अलग तरह के टिंडे जो
1: टिंडे देखिए जो आ रहे हैं वो वैरायटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। बहुत सारी हाइब्रिड कंपनियां जो टिंडों की प्रजातियों को मार्केट के अंदर लेके आ रही है, उनके बीच मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे अर्का टिंडा होता है इसकी 40 से के लिए
0: जी भैया जुड़ना चाह रहे हैं
1: जी।
0: हाँ जी,
2: हेलो,
0: राम राम सर। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, राम राम साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: हेलो,
0: हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या शुभ नाम है आपका?

0: जी मेरी थोड़ी सी जमीन पड़ी है, 5-7 बीघे जी, में मैं उनको सब्जी लगाना चाहूँ।
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये नए किसान भैया सब्जी अपने खेत में लगा।
0: हेलो,
1: जी बोलिए,
2: आपको आवाज आने की आवाज आ रही है।
1: हाँ कोई नहीं, देखिए इनकी इनकी जो समस्या है वो मैं बताना चाहूँगा आपको।
2: जी जी
1: ये किसान भाई हैं, नए किसान भाई हैं, इनके पास कुछ जमीन खाली पड़ी हुई, इसमें खेती करना चाहते हैं सब्जियों की।
2: जी
1: देखिए खेती जिनके पास स्पेशली मैं इस बारे में बताना चाहूँगा आपको कि जो किसान भाई जिनके पास जमीन का आकार छोटा है उनके लिए सब्जी उत्पादन सबसे बेहतरीन विकल्प।
2: जी जी
1: क्योंकि लंबी फसल को पैदा करने के लिए उनके पास खेती ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि कोई भी हम फसल लेना चाहते हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है या धान है, तो कोई भी फसल जो होगी वो 120 दिन से कम की नहीं होगी, लेकिन जो सब्जी वाली फसलें हैं वो 45 से लेकर 50 दिन के अंदर अपना प्रोडक्शन शुरू कर देती है। बस बरसात के टाइम में जब सब्जी उत्पादन करने वाले हमारे किसान भाई हैं उनको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी वो अपने खेत में लगाना चाहते हैं, मान लिया मिर्च लगाना चाहते हैं, टमाटर लगाना चाहते हैं, बैंगन लगाना चाहते हैं या भिंडी लगाना चाहते हैं, वो उनको मेड़ों पर लगाएं, हल्की हल्की मेड़े बनाएं ताकि अगर बरसात का पानी उसके अंदर भर जाए तो वो जो बीज उन्होंने मेड़ों पर लगाया हुआ है वो बिल्कुल सेफ बच जाए।
2: हाँ जी, एक किसान भैया रक्षा हमारे संग जुड़ रहे हैं। हाँ राम राम सर।
0: राम राम सर,
2: कहा नाम है देहारो, कहाँ से बोल रहे हो आप?
0: मैं गांव अरिंग से बोल रहा हूँ साहब, मत्सिंग।
2: हाँ जी बताओ साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से?
0: मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ साहब, मेरी 5-7 बीघे जमीन पड़ी है, मेरे नाम कुछ सब्जी हरी लगाना चाहूँ, मैंने क्या लगाना चाहिए?
2: वही की जानकारी डॉक्टर साहब अभी दे रहे हैं।
1: जी मैं यही आपको जानकारी देना चाह रहा था कि जो किसान भाई हमारे जिनके पास जोत का क्षेत्रफल कम होता है या छोटी खेती करने वाले, उनके लिए सब्जी उत्पादन एक बहुत बेहतरीन विकल्प है। क्योंकि कोई भी आप सब्जी की खेती कर लीजिए, बहुत सारी वैरायटी ऐसी हैं जो बहुत जल्दी, लेकिन सामान्यतः 45 से लेकर 50 दिन में वो अपना प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं। बस ध्यान आपको एक रखना है कि जब भी आप चाहे टमाटर लगा रहे हैं या बैंगन लगा रहे हैं, मिर्च लगा रहे हैं, भिंडी लगा रहे हैं, ठीक है ना, उसको आप मेड़ों पर लगाएं। उस पर लगाने से ये फायदा होगा कि अगर बरसात भी होती है, पानी खेत के अंदर भरता भी है, तो उस भरे हुए पानी को आराम से आप उसका पानी का निकास आराम से कर सकते हैं, और जो बीज आपका उसके ऊपर मेड़ के ऊपर लगा होगा या पौधा मेड़ के ऊपर लगा होगा उसको उसका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप वो फ्लैट लैंड में लगा हुआ, समतल खेत में लगा हुआ है, तो पानी अगर गलती से निकासी की आपके पास में सुविधा नहीं है तो वो पौधा हमारा खराब हो जाएगा, वो गल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप विशेष रूप से ध्यान रखें, और जहां तक आपकी बात है आप उसके अंदर मिर्च भी लगा सकते हो, टमाटर भी लगा सकते हो, बैंगन भी लगा सकते हो, भिंडी को आप रिजिच के ऊपर भी लगा सकते हो। अगर आप मचान पे खेती करना चाहते हो और मचान आपको मचान पे खेती करने की आपके पास व्यवस्था हो तो आप वहां पर बांसपल्ली लगा कर लौकी भी लगा सकते हो, तोरई भी लगा सकते हैं, टिंडे की खेती भी कर सकते हैं आप, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। और जो जगह खाली बची होती है उसके अंदर आप पालक भी लगा सकते हैं, और आने वाले मौसम में आप मूली की खेती भी कर सकते हैं।
2: हेलो
3: हेलो हेलो सर, राधे राधे।
2: हाँ राधे राधे,
3: हम जेल के बारे में बताना चाहते हैं।
2: बेर, बेर का जो फल होता है उसके बारे में?
3: हाँ ऐसे हैं, कोई जाति दिन लगाते हैं।
2: अच्छा तो आप अपना प्रश्न पूछो, आप पहले तो बताओ कहाँ से बोल रहे हो आप, आपका नाम क्या है?
3: हमारा नाम सौरव है, गांव से बोल रहे
2: हैं। अच्छा तो अब आप प्रश्न पूछो, डॉक्टर साहब आपके प्रश्न को सुन रहे हैं, फिर आपको उत्तर देंगे।
3: मैं घीचा की बेल फेल बोते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं
1: बेर पे।
3: यस सर।
1: देखिए आपका आपके जो बेर है वो बेर लगा कहाँ पर है? आपका बेर के जो पौधे हैं वो गांव के आसपास ही लगे हुए हैं या गांव से दूर लगे हुए हैं?
3: घर पे ही लग रहे हैं।
1: घर पे लग रहे हैं, उसके आसपास आप गाय भैंस वगैरह भी बांधते होंगे?
3: यस सर।
1: हाँ अब आपकी समझ में आ गया ना, जहां पर भी आप गाय भैंस बांधते हैं तो वहां से जो गोबर होता है वहां पर दुनिया भर के मक्खी और मच्छर भी होते हैं, ठीक है ना? और वो मक्खी है मच्छर, क्योंकि अब सितंबर के महीने में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी बेर की, उसके बाद में उस पर बेर लगने शुरू हो जाएंगे। तो जब बेर आपके मटर के दाने के बराबर हो जाए तभी से आपको एक उस पर छिड़काव करने का पूरा एक शेड्यूल लेके चलना पड़ेगा। सर जनरली हम क्या देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई है जिनके पास जो फलों के पेड़ हैं अपने घरों के आसपास ही होते हैं, तो जानवर भी जनरली वहीं बंधे होते हैं।
2: जी, जी, जी।
1: और जानवर जब वहीं बंधे होते हैं तो जानवर गोबर करते हैं, गोबर पर दुनिया भर की मक्खी मच्छर आते हैं, फिर उसके बाद वो शेल्टर लेने के लिए पौधे के ऊपर चले जाते हैं।
2: हेलो हेलो,
1: वे फिर पौधों के ऊपर जाते हैं, तो पौधों पर उस समय जो भी फल होता है, जो भी फूल होते हैं वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या

0: है कि जो जानवर होता है वो पौधे के चारों तरफ भी घूमता है और वहां पर घूमता भी है, तो वहां पर गोबर और पेशाब भी खूब मात्रा में डालता है जितनी पौधे को जरूरत नहीं होती। एक तो ये बात होती है, दूसरी बात क्या, जब पौधे के चारों तरफ वो घूमता है तो वहां की मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है और ऐसी स्थिति।
1: हेलो, हाँ जी, राम राम सर, आवाज आ रही है आपको हमारी? आप अपना प्रश्न पूछो, कहाँ से बोल रहे हो आप? हेलो, किसान भैया से संपर्क हमारा टूट गया।
0: तो वो पौधे के चारों तरफ भी घूमते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वहां की मिट्टी होती है बहुत सख्त हो जाती है। जब मिट्टी जितनी सख्त होगी पौधे की जड़ों में उतना वायु का संचरण कम होगा, और जब वायु का संचरण कम होगा तो उसके पौधे की जड़ों के अंदर फंगस का असर होना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कभी हम देखते हैं कि पौधे का आधा हिस्सा सूख गया है, आधा हिस्सा हरा होता है। वो सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि वे उसकी निराई गुड़ाई करते नहीं और जानवर को उसके नीचे और बांध देते हैं। तो वो चाहे पौधा बेर का हो, चाहे वो पौधा आम का हो, चाहे वो नीम का हो, चाहे किसी भी चीज का पौधा, उस पौधे को नुकसान होना बहुत स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में पौधे के चारों तरफ कम से कम 1 मीटर तक मिट्टी पोली होनी चाहिए जिसके अंदर निराई गुड़ाई भी करते रहें।
1: अब जैसे कि डॉक्टर साहब आप जो बात कर रहे हैं ये तो लगभग मैं समझता हूँ कि जितनी अन्य खेती है सब में भी ये नियम लागू होता है, स्वच्छता का।
0: जी हाँ,
1: स्वच्छ अगर हमारी स्थिति रहेगी तो हमारी फसल में भी अच्छा उत्पादन मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन।
0: आप देखिए बरसात के समय में क्या होता है कि जब किसान भाई हमारे खेत के अंदर भिंडी तोड़ने के लिए जाते हैं या बैंगन तोड़ने के लिए जाते हैं, लौकी तोरे तोड़ने के लिए जाते हैं, तो कभी कभी देखते हैं कि जिस जो फल गल गया सड़ गया उसको भी वहीं डाल देते हैं। तो जो कीड़ा होगा वो पहले उस फल को खाएगा जो जमीन पे पड़ा होगा, और फिर जैसे ही वो खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद फिर बेल पे आ जाएगा। जबकि हम किसान भाई को बार बार ये एडवाइस देते हैं कि जो भी काने फल हैं या खराब फल हैं या सड़े हुए फल हैं आप वहां से उनको उठाइए, उठाने के बाद गड्ढा खोद के आप गड्ढे के अंदर डाल दीजिए, दबा दीजिए उसको, यानी उन कीड़ों को वहीं खत्म कर दीजिए। अगर किसान इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रख ले तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 50% हम बीमारी का समस्या का समाधान बिना दवाई के वहीं पर ही कर देंगे।
1: अब अक्सर जब दवाई की बात आई है तो ऐसी स्थिति में जब अगर कहीं फसल में हमारे बैगन में या हमारे टिंडे में अगर हमारे कहीं कीट लग गए हैं तो ऐसी स्थिति में छिड़काव और उनको सावधानी कैसे रखनी?
0: देखिए दो चीजें हैं, क्योंकि लौकी तोरई ये जितनी भी हमारी सब्जी वाली फसलें हैं इनका फल लगने के बाद में कुछ समय में तैयार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनका कोई कीड़ा लग भी गया है तो पहले वैज्ञानिक सलाह ले लें कि हम इस दवा का स्प्रे करने जा रहे हैं। वो वैज्ञानिक आपको बता देंगे कि आपने उसकी तुड़ाई कब करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी सब्जी आप मार्केट के अंदर लेके जाएं उसमें किसी भी तरह का स्प्रे कम से कम 10 दिन पहले रोक देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने आज स्प्रे करा और कल को उस सब्जी को तोड़कर आप मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं तो उसके पेस्टिसाइड रेसिड्यूज उसके अंदर होंगे, जो खाएगा उसको भले ही उस समय कोई नुकसान ना दे लेकिन आने के टाइम में उसके नुकसान उसको देखने को जरूर मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि एक स्वच्छ उत्पादन मार्केट के अंदर जाना चाहिए जिससे कि जनमानस को उसको खाने के बाद फायदा होना चाहिए। तो जो भी आपको कीट पतंगों की रोकथाम करना है या फंगस की रोकथाम करनी है, अगर आपको मार्केट में उस फसल को लेकर जाना है तो 10 दिन पहले अगर उसमें रोग लग भी गया है तो आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए। स्प्रे तभी करें जब उसकी आप तोड़ लें, उसको फसल को तोड़ने के बाद आप फिर स्प्रे करिए ताकि नया फल जो लगेगा उसके ऊपर वो बढ़िया होगा, और वो तब तक उसके तोड़ने का टाइम आएगा तब तक उसके रेसिड्यूज काफी हद तक खत्म हो चुके होंगे।
1: अच्छा, ये तो तोड़ने की बात हुई। अब जैसे तोड़ के बाजार में ले जाने तो या मैं ग्रेडिंग जो शब्द है यानी उसकी समान आकार की अगर छटाई करके किसान ले जाए तो वहां से कहीं बाजार में
0: जी हाँ,
1: लाभ है।
0: बिल्कुल
1: ये बहुत महत्वपूर्ण विषय।
0: देखिए सर, हम बात कर रहे हैं अपने पूरे फसल चक्र की बात कर रहे हैं।
1: जी जी।
0: हमने बहुत अच्छी खेती की, अगर हम उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे तरीके से हम उसकी पैकिंग करके हम उससे अच्छे तरह से नहीं लेके जा रहे हैं तो बाजार में भी भाव अच्छा नहीं मिलता और वो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी बहुत अच्छी नहीं रहती। क्योंकि जितने भी हमारी सब्जियां हैं उन सबके ऊपर प्रकृति का एक आवरण बना होता है जिसमें हल्के हल्के आप रोम देखते होंगे। अगर लौकी तोरई का वो रोम हट जाए या वो वहां से रगड़ लग जाए तो वहीं से खराब होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं किसान भाइयों को कि वे बोरे में भर के या पोलोथिन में भर के उसको लेके जाते हैं सब्जियों को, जो आप इस तरीके से लेके जा रहे हैं उसकी सेल्फ लाइफ वहीं से आप समझ लीजिए कि 20% हमारी खराब हो जानी है। रीजन क्या होता है कि वो वहां से उसका एवोपरेशन बराबर नहीं होता, और जो मार्केट में रेट लगाने वाले होते हैं चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो आड़ती हो, चाहे वो खरीदने वाला हो, वो हमारी आइडियोलॉजी को भी देखता है कि हम उसको किस तरह से कैरी करके लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम उसी सब्जी को कैरेट में करके लेके जाएं तो कैरेट के ऊपर एक कैरेट के ऊपर दूसरी तीसरी रख के लेके जाएंगे।
1: मतलब आपको कहना ये है कि जो हम थैलिन में पैक करके ले जा रहे हैं बाजार में बाकी जगह कैरेट में ले जाएं।
0: हाँ जी, कैरेट में लेके जाएं तो सामने वाला देख लेगा कि किसान हमारा समझदार है, पढ़ा लिखा है, कैरेट में लेके आ रहा है और किसी फल को किसी भी जो उत्पाद को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ।

0: वो आपके ऑटोमेटिकली आपके कहने से पहले रेट अच्छे लगा देगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो ट्रैवलिंग में जो ट्रांसपोर्टेशन में हमारी बहुत सारी सब्जियां खराब होती हैं, वो खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उस पर रगड़ लगती जाती है। लेकिन अगर कैरेट्स के अंदर हम ट्रे के अंदर उसको रख कर लेके जाएं तो किसी फल पे कोई भी रगड़ नहीं होती। आपने देखा होगा सेब की पैकिंग कितनी अच्छी तरीके से करते हैं, सेब में सेब एक सेब दूसरे सेब के संपर्क में कभी भी नहीं आता।
1: जी
0: रीजन क्या है कि उसकी कैरेट उसी तरीके से बनी होती है
1: जी
0: कि एक एक खांचे में एक एक फल होता है। अगर हम कैरेट में उसको कैरी करके लेके जाएं,
1: अगर
0: चाहे वो
1: डॉक्टर साहब
0: लौकी
1: मूलतः
0: है
1: बात करी जाए या
0: जी।
1: समय जो सब्जी वाली फसलन के कृषि कार्य से संबंधित, तो क्योंकि समय हमारा बहुत जल्दी है, तो यह स्थिति में हम एक छोटी सी जानकारी अगर संक्षिप्त रूप में देना चाहें तो किसान भाइयों को हम क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: देखिए बरसात का सीजन है, किसान भाई अपने खेत का रखरखाव अच्छे प्रकार से करें और वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करें, और किसान भाई पोली हाउस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो किसान भाई आने वाले समय के लिए अपनी पोत तैयार कर रहे हैं तो वो लो टनल का इस्तेमाल करें। लो टनल एक छोटी टनल होती है जिसके अंदर आप बीज लगा सकते हैं। बीज लगाने के बाद लो टनल के अंदर आप नई पोत तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के बाद फिर हमारा ट्रांसप्लांटिंग का समय शुरू होगा। तो अपनी लो टनल की व्यवस्था करिए। लो टनल उनके पास में नहीं है तो बांस के आकार की एक टनल बना लीजिए, उसको किसी ऐसे तिरपाल टाइप से ढक दे ताकि वर्षा की सीधी बूंदे उसके ऊपर ना लगे। तो अपनी आने वाली फसल के, क्योंकि सब्जी उत्पादन में जो किसान भाई रिले क्रॉपिंग का इस्तेमाल करता है, यानी फसल आपकी कटने से पहले ही उसकी पोत तैयार करके अपने खेत के अंदर रख लेता है, तो वही किसान फायदा उठाता है। समय का ध्यान रखें और अपनी फसल को अपने खेत को खाली होने से पहले ही लगा लें।
2: दीपक भैया, देखो डॉक्टर साहब ने समय को ध्यान रखने की बात कही अपनी फसल में, और फसल में बुवाई से लेके कटाई मढ़ाई तक हमें समय को ध्यान रखना चाहिए।
1: और आज कार्यक्रम में भी समय को ध्यान रखना है। हमारी घड़ी हमें इशारा कर रही है कि हम कार्यक्रम में विदा लें। तो आज डॉक्टर साहब हमारे मध्य आए और खरीफ मौसम की सब्जी वाली फसल के कृषि कार्य के संबंध में जानकारी दी। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और किसान भैया को रूप किशोर की राम राम,
1: दीपक गोस्वामी की राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

ये थे हेमलता जसपाल सिंह और साथी, फिल्म थी अखियों के झरोकों से। और अब सुनते हैं श्री हनुमान चालीसा, स्वर हरिहरन का है।

हरिहरन और साथियों की गाई इस पारंपरिक भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरी उड़ान।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, ब्रज साहित्य कार्यक्रम। यह कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में भक्त कथा, भक्त राम नारायण। कथाकार हैं गौरी अग्रवाल।
1: भक्त राम नारायण की जन्मभूमि वैसे तो पंजाब हती, परंतु वो बहुत ही पहले मोक्षदायिनी भगवान शंकर की नगरी काशीपुर में आकर रहने लगो। बाकी संग पंजाब के और बहुत लोग आके रहवे लगे। राम नारायण भगवान शंकर को परम भक्त तो वो रोज सवेरे जल्दी उठ के गंगा नहातो और भगवान शंकर के दर्शन करतो। फिर घर पे जाके पार्थिव पूजन, शिव सहस्त्र नाम को पाठ, महामृत्युंजय जप मंत्र का भक्ति पूर्वक करतो। दोपहर तक तो बाको पूजा पाठ ही निपटतो। बाकी घरवारी और बाको बेटा शंभूराज भी भगवान शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। ओम नमः शिवाय का नाम तो उनके परिवार के मुंह पे ही रखो रहतो। आशुतोष भगवान शिव जी की कृपा ते बाको काम धंधो भी खूब बढ़िया चलवे लगो। बू थोड़े ही दिनन में खूब पैसा वालो है गयो। जब आदमी पे धन दौलत बढ़े तो अभिमान और स्वार्थ भी बढ़ जावे। पर जा भक्त के यहाँ पे शंकर जी की कृपाते ऐसो नाय भयो। श्री राम नारायण पे जैसे जैसे धन बढ़ो, वामे त्याग विनय और नम्रता के संग संग वे धन का उपयोग दूसरे की सेवा में भी करवे लगो। जाते वाको नाम बड़ो प्रचलित है गयो। पंजाब ते जो लोग उनके संग आए उनमें एक को नाम लाला दयाली राम हतो। बू राम नारायण की उन्नति ते मन ही मन बड़ो जलतो। जे बात अलग है कि राम नारायण के मन में ऐसी कोई बात ना थी।

राम नारायण को जा बात को बिल्कुल अंदाजो ना हतो। लाला दयाली राम की जलन राम नारायण के प्रति बढ़ती ही चली गई। अब तो वो खुल्लम खुल्ला राम नारायण को ललकारवे लगो, वो बाकी बेज्जती करवे को एक हो मौको अपने हाथ से जाने देवे। एक दिन राम नारायण जी गंगा में नहा के घर को जा रहे के रास्ता में अचानक दयाली राम बाकी सामने आ गयो और बाकी खूब बेज्जती करी और साथ ही दो जूते भी लगा दिए। इतने पर भी भक्त राम नारायण हंसते हुए वहाँ ते चल दिए। भक्त राम नारायण को लाला दयाली राम पे बड़ी दया आ रही हती। बाने मन ही मन सोचो कि मैं ऐसो का करूँ के दयाली राम को बर्ताव मेरे प्रति बदल जावे। अब बाने मन ही मन दयाली राम को अपने प्रेम भरे व्यवहार से बदलने को निश्चय कर लियो। प्रेम प्रेम का और द्वेष द्वेष का जनक होवे। अब लाला दयाली राम राम नारायण से जो कछु भी कहतो राम नारायण जीवा को बड़े प्रेम ते उत्तर देवे। धीरे धीरे लाला दयाली राम पे भक्त राम नारायण की बातन को असर हैवे लगो। अब लाला दयाली राम मन ही मन अपने किए पे पछतावे लगो। इधर भक्त राम नारायण को पूरी तरह विश्वास ना भयो कि दयाली राम को स्वभाव बदल गयो है। अतः भक्त राम नारायण दयाली राम को पूरी तरह से बदलवे को आतुर है गयो। अब बाने एक दिन रात को एकांत में बड़े करुण है के भगवान आशुतोष से प्रार्थना करी, हे भगवान मुझे अपने साथी दयाली राम के इस स्वभाव का बड़ा दुख है। आप तो अंतर्यामी हो, यदि मेरे मन में बाके लिए जरा सो भी बैर होए तो मोए कठिन ते कठिन दंड दे दो, मोए स्वीकार है। परंतु बाके मन में मेरे लिए प्रेम शांति पैदा कर दियो। यदि मेरे दुख ते वाय सुख मिले तो आप मोकू भरपूर दुख दे दियो। मेरा सब कुछ धन दौलत रुपया पैसा सब कछु ले लियो, परंतु बाके मन में मेरे प्रति द्वेष को खत्म कर दियो। मैंने तो आपते कबहू ना मांगो, फिर भी जो कछु आपने मोह दियो बाय में आपकी कृपा समझ के लोगन की भलाई में ही लगा रहे हूँ। परंतु मेरो ऐसो कहनो भी मेरो अभिमान ही है। मैं कौन हूँ कछु करवे वारो, भगवान सब कछु तो आप ही करा रहे हो, मुँह में ही कछु दोष छिपो भयो है। जाके कारण लाला दयाली राम के मन में मेरे नैया इतनी बैर भावना पल रही है और मेरे ही वजह ते बाको मन इतनो अशांत है। यद्यपि पाप मोए दीख ना रहे हो, परंतु अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ और वरदानी महादेव मुँह पे आपकी बड़ी कृपा है। ये बात मैं अच्छी तरह जानूँ, अब जैसो आपे उचित लगे वैसो ही करो। परंतु मेरो मन बार बार जई बात को सोच के दुख से भर रहे हो कि कैसे दयाली राम को समझाऊं कि बाके मन में मेरे नैया बैर भावना मिट जाए। ये बात कहते कहते भक्त राम नारायण को नींद आ गई। हृदय की सच्ची प्रार्थना तो भगवान जरूर सुने। अतः भगवान हाथ में डमरू और त्रिशूल लेके बड़े ही मनमोहक रूप में बाके सामने प्रकट है गए और बोले, भक्त मैं तेरी सच्ची प्रार्थना ते बड़ो ही प्रसन्न हूँ। भगवान के दर्शन करके राम नारायण को सबरो शरीर रोमांच ते भर गयो। भगवान बतावे लगे, यह दयाली राम पहले जन्म में एक पिशाच हतो, आगे के और पहले जन्म में जो दक्षिणापत में ब्राह्मण हतो और तू बड़ ही वही पे एक व्यापारी हतो। तेरी बुद्धि व समय भी सही हती और जे ब्राह्मण है के इनके बावजूद भी मांस मदिरा को सेवन करतो और चोरी करके धन कमातो, वो बड़ो ही दुराचारी है गयो हतो। एक दिन बाने तेरे घर में चोरी करी, तब भी तेने बाकी संग बड़ो ऐ अच्छो व्यवहार करो और बाय जो चाहिए हो वो दे के बाय मेरी भक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करवे को कहो। तेरी बातन को बापे बड़ो असर भयो और वो मेरी भक्ति करवे लगो। एक बार रामेश्वर जाके बाने मेरे ऊपर जल और बिल्व पत्र चढ़ाए। अपने इन्हीं पापन की वजह से वो दूसरी योनि में पिशाच भयो, परंतु तेरे संग और मेरी भक्ति की वजह से बाकू वो योनि 10 बरस में ही छूट गई और बाने पुने क्षत्रिय कुल में जन्म लियो। पिछले मानव शरीर में बाको जीवन द्वेष हिंसा क्रोध और भय की भावना ते भरो भयो। निरीहों को सतानो, भले करवे वाले इनके संग भी बुरो करवो, बाको स्वभाव

0: बन गयो। भई प्रवृत्ति की वजह ते बाने तोते जा जन्म में भी बैर पाल रखो है, परंतु तेरे हृदय में अब भी पहले जैसे ही निर्वैर तथा पवित्र प्रेम भरो भयो है। तेरी जय अच्छाई की वजह ते बाके बुरे व्यवहार को तोपे तो कोई असर ना भयो, परंतु बाको हृदय जरूर परिवर्तित है गयो। आज तेने बाके नैया जो प्रार्थना करी है बातें वो हमेशा के नैया पवित्र है गयो। तुझे धन्य है जो अपने प्रेम और सद्भावना ते बड़े बड़े असुरन को भी संत बना रहे हो है। मैं तो पे बहुत ही प्रसन्न हूँ। जे बात मैं भली भांति जानूँ कि धन दौलत में तेरी बिल्कुल भी रुचि ना है। जा नैया ही तू मेरे द्वारा दी गई संपत्ति को दूसरे की सेवा में लगा रहे हो है। हर कोई व्यक्ति मेरी सेवा नहीं कर सकता। तू सुख शांतिपूर्वक यहाँ का कर्तव्य पूरा करके मेरे दिव्य लोक को जाएगो। तू तो निश्चिंत है के मेरो भजन करतो रहे। भगवान शंकर जी जो ही इतनी बात कहकर तर ध्यान भई कि राम नारायण की नींद टूट गई। बाने देखो दयाली राम बाके पैरन में पड़ो रो रहे हो है। राम नारायण ने बाय भगवान शंकर की कृपा समझ के सीने ते लगा लियो। दयाली राम बाके पैरन में ते उठवे को काई कीमत पे तैयार ना हो रह रहे हो। वे बार बार अपने किए पे पछता रहे हो और भक्त राम नारायण ते माफी मांग रहे हो। बाकू अपने किए पे बहुत ही पछताताप है रहे हो। भगवान शंकर जी की कृपा और राम नारायण के प्रेम भाव ने बाके सब पापन को और पाप बीजन को नष्ट कर दियो। राम नारायण ने बाकू उठा के अपने गले ते लगा लियो और बाय बहुत ही अच्छी तरह ते समझा बुझा के तथा बाय शंकर जी की भक्ति को उपदेश दे के विदा कर दियो। श्री दयाली राम को भी अपने पहले जन्म की याद आ गई। बू ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करवे लग गयो तथा भगवान शंकर जी की उपासना में लग गयो। भक्त राम नारायण के नैया अब बाको प्रेम अटूट है गयो। अब बाको बहुत ही ज्यादा आदर और सम्मान करवे लगो। दोनों साथी मिलके भगवान शंकर जी की सेवा में ही अपनो पूरो समय बितावे लगे।
1: अभी आपने जे भक्त कथा सुनी, भक्त राम नारायण कथाकार है गौरी अग्रवाल और अभी के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है।

0: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को सरकार देगी मुफ्त स्कूटी। 12 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर, कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रस्तावों में 3 अगस्त से विधानसभा के मॉनसून सत्र, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और विंध्य एक्सप्रेसवे जैसे अहम फैसलों को सहमति प्रदान की गई। कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेसवे 333 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि प्रयागराज से शुरू होकर भदोही मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा विंध्य पूर्वांचल स्पर लिंक को भी स्वीकृति दी गई। श्री खन्ना ने बताया कि 3 अगस्त से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा। आगामी सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे।
1: राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का आगामी सत्र 3 तारीख से प्रारंभ होकर 6 तारीख तक चलेगा और इसमें सप्लीमेंट्री भी आएगी।
0: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दिए जाने के बारे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना में इस वर्ष करीब 50,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। इसमें राज्य के उच्च संस्थानों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त स्नातक छात्राओं में से शीर्ष 5% छात्राएं इसकी पात्र होंगी।
2: इसमें उच्च संस्थानों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त छात्राओं में से जो टॉप 5% होंगे, उन छात्राओं की मेरिट के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। जिनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए वार्षिक से कम, एक तो ये प्रावधान है। दूसरा, इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को।
0: उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके परिवार की आय सीमा 12 लाख वार्षिक से कम होगी। साथ ही छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव, वाराणसी में 500 बेड के अत्याधुनिक कामकाजी

0: छात्रावास, अग्निशमन तथा आपात सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 25 करोड़ 78 लाख रुपए के प्रस्ताव। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद ने प्रदेश में विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
1: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से श्रावस्ती भी एक था। पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच में महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार में योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्यों और प्रगति के जरिए पिछले 9 सालों में प्रदेश की नई पहचान बनाई है।
2: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सटी से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल अहम बैठक होगी। बैठक में ट्रस्ट के नियमों के अनुरूप विभिन्न समितियों के पुनर्गठन, मंदिर के सीईओ समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। बैठक से पहले आज प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
4: भगवान श्री रामलला मंदिर के छावा विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होने वाली दूसरी बैठक के लिए इसके सदस्य अयोध्या पहुंचने लगे हैं। बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव के पद और न्यासियों के 3 खाली पदों पर विचार विमर्श करेगा और राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। वहीं कल होने वाली बैठक के मद्देनजर एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी और एडीएम सिटी योगानंद पांडे ने आज बैठक स्थल के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा के विपणन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसमें 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के 4th दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। दीक्षांत समारोह में 22,315 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब है। वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर

0: बनाए हुए है। हमीरपुर में पिछले 24 घंटों में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: बीते 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही झमाझम वर्षा किसानों के चेहरों में मुस्कान लौटा दी है और मौसम को भी पूरी तरह सुहावना कर दिया है। कुछ दिनों पहले वर्षा के अभाव में किसानों की बोई गई खरीफ की फसल उड़द, मूंग, तिल, अरहर, ज्वार की फसलें सूखने की कगार पर पहुंचने लगी थी, लेकिन मानसूनी वर्षा ने फसलों को जीवंत कर किसानों के चेहरों में मुस्कान लौटाने का काम कर रही है। हालांकि कहीं कहीं जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। शिव कुमार सेठी, आकाशवाणी समाचार, हमीरपुर।
0: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने कल राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को सरकार देगी मुफ्त स्कूटी। 12 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर, कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम है नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नास, सलमा नास, असद अरहाम और हाशमी परिवार के सभी सदस्य। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, कीर्ति कुमार, डीकेश, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या और उनके परिवारीजन। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना MP से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, संचित, प्रथमेश, सर्वद, प्रणाली, सानवी और कल्पना देशमुख। आप हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, साबिया मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास। जमानिया रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक, स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नोहानकर, निर्मला विशाल, नारायण इंगले, सुपायन ताडे और आशीष मोहरेकर। बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोडवड़े, अनीता गाठोड़े और रमेश राव गाठोड़े। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डाबर खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर और जिया हलक डाबर। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम कुमार सुरलकर और उनके परिवारीजन। दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमला बंछोर। रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। अनारकली बाजार जगराऊ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक।

दीपिका मल्होत्रा, गभी मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। ग्राम अमना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। सिद्धार्थनगर, दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। श्री बढ़नी रकोला से अरुणा बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर। सिद्धेश्वरनगर, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, पूजा और शिव्या रामटेके। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर नामदेव। डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनुष्का और तन्मय गजभिये। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फैराज, फरहीन फरहान, फरिया ताहिरा। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, रोहिणी, सविता, निकेत, ऋषिकेश, जीविका और सैनिका दले। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया। काशी निवास बंगाली पांजा, नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती, जानवी, वैष्णवी और हर्षल रंभाड़े। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली शाहदरा से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चेतन मस्कीन और मेघा मस्कीन। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुणा श्रीनिका और श्रीनिजा। मामलबाड़ी महाराष्ट्र से सुपान तायडे, विजय तायडे। विदर्भ से वसंतरा भोजने और उनके परिवारीजन। तेलंगाना भोंगीट से मोहम्मद बुरहाउद्दीन, फरजान लल्ला, फरहान लल्ला, साइमीरा अजमीन गुड़िया। नाज मंजिल महसूल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। भरवट बकाल भुलडाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे। मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा, गौरव वर्मा और गरिमा वर्मा। आइए सुनते हैं आप सबके लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है दो कलियां। गीत साहिर का, संगीत निर्देशक रवि।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल सुरों में दो कलियां फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी को फिल्म है काला पत्थर। गीत सहिर का, संगीत निर्देशन राजेश रोशन। जो हमें संदेश मिले उनके नाम हैं शेरगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले और लोकेश एस काले। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। जैन मंदिर वाली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और परांजल राय। इंद्रिया बिहार दिल्ली से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर बेबी अंसारी। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का। राजकिला मधुबनी बिहार से नवीन, ज्योति सिंह, कुमार सागर, श्वेता सागर, शिव सागर, रंगोली बाबू, केपी सिंह, अघोरी बाबा और उनके मित्रगण और परिवारीजन। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा।

गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, दादरीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कृणाल मेहरा, महुआ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हिंश कुमार चंदन। आइए सुनते हैं आप सबके लिए काला पत्थर फिल्म का यह गीत।

और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुना, और अब सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म हेड डॉन। गीत अनजान का संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी। पसंद भेजने वाले श्रोता हैं मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव।

देवता मोरिया, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका प्रभा देवी और मास्टर अलकबीर। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री सैनी। महादेवपारा से मीरा सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े। काटर रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरेशे।

0: राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, माला मिश्रा, रुद्र गुप्ता और रश्मि गुप्ता। रणवीर हाउस भूचो कैनचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र वीरेंद्र, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत।
1: का रंग जमा हो चकाचक हिर लो पान चबाए अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म होई जाए।

जीना तेरी गली में, यह था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की थी। इसी गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृहमंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय ये अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के

0: जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधा कृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खरगे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खरगे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह

2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में ICP शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

समवेत स्वरों में अभी आपने सुनी कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है

ये थे कुमार सानू और अलका याग्निक। और अब सुनते इसी फिल्म में पंकज उदास की आवाज में गाया ये गीत।

ये थे कुमार सानू और अलका याग्निक। इसी गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी सनम। इस फिल्म के गीतकार थे समीर, संगीत निर्देशक थे आनंद मिलिंद। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन

0: एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और

0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
1: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
2: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
3: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्को

0: उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाये रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये थी सपना मुखर्जी और साथी फिल्म थी जांबाज। गीत इंदिवर का था, संगीत निर्देशक थे कल्याण जी आनंद जी। और आइए सुनते हैं इरशाद कामिल की रचना, संगीत निर्देशक MM क्रीम, गायक स्वर अमन त्रिखा, श्रेया घोषाल और साथियों के।

0: मिस्टर टाइम क्या हुआ।
1: ये थे कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज। फिल्म थी सिंदूर, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: Mantan. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए जैव अर्थव्यवस्था 2035 हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोडमैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
1: नमस्कार, बायो इकोनॉमी 2035 के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैली केडिया। डॉक्टर शैली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते, धन्यवाद।
1: डॉक्टर शैली, जैविक अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी कुछ नया टर्म है, तो इसको किस तरह से देखते हैं और हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में इसके मायने समझा सकें?
2: जब हम बायो इकोनॉमी की बात करते हैं या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो सरल शब्द में कहूँ तो जैव अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें पौधे, पशुओं, सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और जितनी जो रेन्यूबल बायोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं उसका यूज करके हम अलग अलग चीजों में उसका यूज करते हैं, जैसे कि हम दवाइयां हो, भोजन हो, ईंधन हो, रसायन हो, सामग्री हो, हम उसका उपयोग ये सारे चीजों में करते हैं और हम अर्थव्यवस्था के प्रति उसको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तीन शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहें, जिस तरीके से इंडिया में इसको देखा जा रहा है या ग्लोबली भी देखा जा रहा है, एक तो जैसे उस शब्द में ही है जैव अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है, दूसरा रोजगार और तीसरा पर्यावरण। तो हम जब इंडिया में उसको बोलते हैं तो बायो E3 पॉलिसी बोलते हैं, तो बेसिकली बायो इकोनॉमी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फूड सिक्योरिटी हो सकता है। अभी हम देखें तो बहुत चर्चा में हॉर्मूज है, उसके कारण हमें कैसे एनर्जी सिक्योरिटी और पेट्रोल नेचुरल गैस इंपोर्ट्स जो हम करते हैं उससे हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके एनर्जी सिक्योरिटी में भी बायो इकोनॉमी से हमारा रिड्यूस डिपेंडेंस हो सकता है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इंपोर्ट्स, एंड ऑल्सो लोअर पोल्यूशन और डेफिनेटली जैसे रोजगार की हम बात करते हैं।
1: आपने कहा कि बहुत सारा इसका विस्तृत व्यापक अर्थ है, तो मोटे तौर पर इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं?
2: एकदम मोटा मोटा देखा जाए तो अभी जस्ट 4-5 दिन पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें आप देखा जाए तो 4 क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका जैव औद्योगिक क्षेत्र, बायो इंडस्ट्रियल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका बायो फ्यूल हो जाता है जो ईंधन के प्रति काम आता है, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स आता है, केमिकल्स होते हैं, बायो प्लास्टिक्स होते हैं, आजकल प्लास्टिक भी बड़ी बड़ी समस्या है। दूसरा एक क्षेत्र है जैव फार्मा, इसको बायो फार्मा या जो आपके स्वास्थ्य के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू हो, कोविड के टाइम भी इंडिया में पूरे वर्ल्ड एक वैक्सीन रेस में जुट गई थी, बायोसिमिलर डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, एंटीबॉडीज, जीन थेरेपीज, तो ये सारे बायो फार्मा और हेल्थ क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है आपका जैविक कृषि, विच इज बायो एग्रीकल्चर, जिसमें आप देखा जाए तो जैविक कीटनाशक या फिर आपके बायो फर्टिलाइजर, बायो खाद्य जो होते हैं, बायो स्टिम्युलेंट्स और इवन बायो सर्टिफाइड फूड न्यूट्रिशन के लिए, और क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप देखते हैं, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे निपटने के लिए ड्रॉट रेजिलियंट क्रॉप्स हो गया, तो ये आपका जैव कृषि में आता है। और चौथा है आपका जैव सेवाएं और अनुसंधान। अगेन आप देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको आप अगर यूज करके, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में यूज करें, क्लिनिकल रिसर्च में यूज करें, तो उससे बहुत ही बारीक लेवल का रिसर्च हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, और जैसे जिससे आपके नए नए दवाएं की खोज हो सकती है।
1: औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण जरूरत है अगर हम रोजगार की बात करते हैं या हम उत्पादन की बात करते हैं, तो अगर बायो इंडस्ट्री का जिस तरह से आपने जिक्र किया, जिसमें बायो फ्यूल की भी आपने बात करी, बायो प्लास्टिक की भी बात करी, इस बारे में बताएं ये किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हमारे लिए एक रोजगार का साधन भी उपलब्ध करा सकता है और अर्थव्यवस्था को सहारा भी दे सकता है।
2: तो जैसे कि हम बायो इंडस्ट्री में, जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल बायो फ्यूल का बात कर ले, बायो गैस की बात कर ले, तो हम जो आप समझ लीजिए कोयला या फिर कोई फॉसिल फ्यूल यूज करके एनर्जी

प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके जगह अगर हम बायोफ्यूल यूज करें तो एक तो वो पोल्यूशन कम क्रिएट करता है, दूसरा जो बाहर से फ्यूल आता है उस पे कम डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एक दूसरा बड़ा एरिया है आपका प्लास्टिक्स। हम रोज प्लास्टिक्स यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी अलग अलग चीजों को पैक करने के लिए भी प्लास्टिक यूज करता है। अगर उसके जगह हम बायो प्लास्टिक्स यूज करें तो वो थोड़ा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है। तो

0: इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है तो खेती भी उसी मात्रा में करनी पड़ेगी। उससे फिर रोजगार का ये लिंकेज है कि किसान को उससे रोजगार मिलेगा, और जो उसके जो बीच में जो उसके सप्लाई चेन्स है उसमें जितने लोग हैं उसमें रोजगार मिलेगा। और थोड़े से और आप थोड़े से हायर लेवल पे जाए तो रिसर्च में, या जो आपका जो बायोटेक वाला जो टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी काफी बढ़त हो सकती है।
1: जी, आपने जैसे औद्योगिकीकरण की बात करी तो इसमें आपने एक जिक्र किया था बायो प्लास्टिक का। प्लास्टिक निश्चित तौर पे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा आज के डेट में चुनौती है, तो ये बायो प्लास्टिक से इस खतरे को कितना कम किया जा सकता है?
0: तो डेफिनेटली जब हम बायोप्लास्टिक्स की बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो भी मटेरियल है फिलहाल अभी तक एक कोर R&D स्टेज पे है। जैसे आप मटेरियल्स की बात करें, कौन सा
1: जी
0: मटेरियल, उसमें आपका एल्गे भी आ सकता है, उसमें आपका जो क्रॉप रेसिड्यू होता है खेती करने के बाद जो पौधा बच जाता है उसको जलाने के जगह उसको आप यूज करें बायो पैकेजिंग में। तो क्योंकि प्लास्टिक्स आपके अलग अलग टाइप के पैकेजिंग में यूज होता है, आप जो भी सामान हम लाते हैं किराने की दुकान से ज्यादातर चीजों में वो चाहे वो उसमें वो प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, तो आप देखा जाए तो प्लास्टिक का यूज बहुत सारी चीजों में होता है। और अभी फिलहाल हम देखा जाए तो अगर हम वो सारा पैकेजिंग को ही रिड्यूस कर सके या रिप्लेस कर सके बायो पैकेजिंग से प्लास्टिक्स की जगह, तो आप सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब देखा जाए बायो प्लास्टिक अभी भी थोड़ा सा न्यू एरिया है, पर इसमें इसीलिए जो नीति आयोग ने अभी एक रोड मैप बनाया है वो इसमें कह रहा है कि आपको 50,000 करोड़ की एक फंड सेटअप किया जाए उसमें, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू ये सारी इनोवेशंस को प्रमोट किया जाए जो आपकी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, सोसाइटल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉन्ट्रीब्यूट करें।
1: आपने बताया 50,000 करोड़ का एक फंड नीति आयोग ने इसका प्रस्ताव किया है। अगर मोटे तौर पे अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इसका कितना व्यापक बाजार है, और अगर GDP यानी अर्थव्यवस्था में जो GDP का योगदान रहता है उसमें ये बायो इकोनॉमी का कितना योगदान फिलहाल है?
0: तो अगर हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन GDP में काफी तेजी से बढ़ रहा है, और देखा जाए इंडिया में ही अगर हम 10 साल पहले 2014 के करीब हम देखें तो उसमें उस समय उसका बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन $10 बिलियन के करीब, और अभी आज के दिन में करीब करीब 4.8% या आप समझ लीजिए लगभग 5% ऑफ GDP बायो इकोनॉमी बेस्ड सेक्टर से ऑलरेडी आ रही है। और इसका नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट आया है उसमें ये तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2047 तक 2.6 ट्रिलियन GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन उसको हो सकता है, और 2035 तक 6.91 बिलियन। बट हम देखा जाए तो अगर हमें पिछले 10 सालों में लगभग 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन GDP को।
1: जी, मतलब 2014 में जो सिर्फ $10 अरब का बाजार था भारत की अर्थव्यवस्था में, जिसका इतना योगदान था, वो अब बढ़ते बढ़ते 2025 तक वो तकरीबन $195 अरब तक पहुंच गए। तो बहुत बड़ा योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में दे रहा है, तकरीबन 5% का अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है। अब अगर हम बात करें तो इससे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन में भी हमको काफी मदद मिलती होगी। और अभी आपने जिक्र किया था जो खेती के जो रेसिडुअल्स हैं, मतलब खेती में करने के बाद जो बच जाता है, जिस तरह से पराली जलाने की भी समस्या होती है, क्या खेती में इस बायो इकोनॉमी को या बायो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भी हम उसका कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं?
0: डेफिनेटली अभी बहुत सारे प्रयास जारी हैं और कोशिश किया जा रहा है कि पराली को यूज करके उससे पैकेजिंग मटेरियल या फिर उससे बायो एनर्जी बनाया जाए, उसको मशरूम ग्रो करने के काम में भी लिया जा रहा है, या उससे ईंट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है
1: जी
0: उसके लिए भी यूज किया जा रहा है। पर उसके अलावा भी हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का एग्रीकल्चर में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी जैसे बताया जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए देखा जाए तो सूखा गर्मी इन सबों को मतलब टॉलरेट करने वाली जो क्रॉप वेराइटीज है वो भी पार्ट है। फिर उसके बाद आप जो बोलते हैं कि जो इनपुट्स होते हैं एग्रीकल्चर में जो जाते हैं, चाहे वो खाद हो चाहे वो कीटनाशक हो, तो वो भी बायो पेस्टिसाइड उसमें यूज करके या बायो फर्टिलाइजर्स यूज करके आप सॉइल हेल्थ भी इंश्योर कर सकते हो और प्लांट प्रोडक्टिविटी भी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इनमें बहुत पोटेंशियल है आज के दिन में, बट ऑल्सो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेक्टर, तो उसमें आप देखा टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, इनोवेशन, इसमें भी बहुत सरकार को इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि

0: कि वो टेक्नोलॉजी को एक लैब से फील्ड में या एक लार्ज स्केल कमर्शियल एप्लीकेशन तक लेके जा सके।
1: आपने जैसे बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र अब उतना नया नहीं रह गया, लोगों की जागरूकता खासतौर पे इसके प्रति काफी हो गई है, तो सरकार ने भी इस पे बहुत विशेष ध्यान देना शुरू किया है, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि भी जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनसे बचाव करने के लिए ये जो बायो इकोनॉमी है, जैविक अर्थव्यवस्था है, वो सहायक या योगदान कर सकती है?
0: बिल्कुल, सबसे पहले ही जो बात की थी, फ्यूल की बात हो रही थी, एनर्जी की बात हो रही थी। अगर हम कोयला या फॉसिल फ्यूल के जगह हम बायो फ्यूल यूज करते हैं या बायो एनर्जी यूज करते हैं एक सही मात्रा में, तो उससे डेफिनेटली आप एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की तो बात हम कर ही रहे हैं, पर एक जो एक क्लाइमेट अडेप्टेशन होता है
1: जी
0: स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो आप देखिए क्रॉप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोल लीजिए या क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर बोल लीजिए, तो वैसे टेक्नोलॉजीज वैसे क्रॉप्स अगर डेवलप हो जो ड्रॉट को सह पाए, तो इससे डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन दोनों में ही बहुत फायदा होगा।
1: जी वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो ये बायो इकोनॉमी का कितना बड़ा योगदान रहता है? फिलहाल अगर इसका आकार देखा जाए तो वैश्विक तौर पे कौन से देशों में बहुत ज्यादा अभी इसको प्रभावी तौर पे काम ले रहे हैं इसे?
0: वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें आपके जो टॉप कंट्रीज हैं उसमें डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां पे बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भी है। यूरोपियन यूनियन में देखा जाए उधर भी मतलब काफी बड़ा योगदान है बायो इकोनॉमी का। तो ये सारे जो अभी आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में ये बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, एक ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जैसे देखा जा रहा है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन था, तो ये ग्लोबल लेवल पे ये बहुत ही तेजी से ये सेक्टर उभर के आ रहा है, जिसमें आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोप हो, और आज के दिन में देखा जाए डेफिनेटली चाइना, चीन, वो
1: जी
0: भी बहुत तेजी से उभर के आ रहा है।
1: भारत सरकार ने आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए या इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या क्या अक्षर बनाए हैं और क्या इसका टारगेट रखा है, अगर आप संक्षेप में बता पाएं?
0: एक तरीके से देखा जाए आज के दिन में भी आप बायो इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अभी भी मुझे लगता है कि एक तरीके से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए कि ये क्या है और उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, थोड़े से और प्रयास की जरूरत है। साइंस लेवल पे या साइंटिफिक कम्युनिटी लेवल पे आप देखें, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, तो ये सारे अपने बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटीज करते रहते हैं, वेबिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन निकालते हैं, और जैसे मेरे ख्याल से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए और उसको थोड़ा सा और सरल तरीके से वो मैसेज पहुंचाने के लिए, जैसे आप अपने रेडियो के माध्यम से इसको आपका ये प्रयास है, पर मुझे लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस, चाहे वो इससे लिंक्ड एजुकेशन रिलेटेड अवेयरनेस हो, कल को क्या क्या मतलब आज के दिन में हमारे इतने सारे युवाएं स्कूल में हैं, वो आगे सोचेंगे कि उनके पास और क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो ये सब चीजों के बारे में, इसके स्कॉलरशिप के बारे में प्रमोट करने के लिए, इससे रिलेटेड जितने कोर्सेज है उसके बारे में जानकारी थोड़ा सा और एटलीस्ट आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इसमें और प्रयास करने की जरूरत है।
1: जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जैव अर्थव्यवस्था 2035, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोड मैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं नमित राज और प्रस्तुति है आकाशवाणी नजीबाबाद की। कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपको सुनवाएंगे 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एथलेटिक्स कोच तरुण सहरावत से भेंटवार्ता। नेपाल और भारत के बीच खेली गई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी श्रृंखला में भारत की ओर से प्रतिभाग करने वाले कबड्डी खिलाड़ी तनिष कुमार से भेंटवार्ता और साथ ही आप सुनेंगे इस हफ्ते के प्रमुख खेल समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का ये सफर बीते हफ्ते के प्रमुख खेल समाचारों के साथ। खेल समाचारों की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेले गए फुटबॉल विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप की ट्रॉफी जीत ली है। रोमांच से भरे फाइनल मुकाबले में निर्णायक गोल दागा स्पेन के फेरान टोरेस ने। वहीं स्पेन के कप्तान रोड्री को पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। गोल्डन बूट का खिताब फ्रांस के किलियन एम्बापे को दिया गया जिन्होंने टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 10 गोल दागे। तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर फ्रांस ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस बार के विश्व कप में पहली बार कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया जो अब तक के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच

0: बीच खेली गई द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला को इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम किया। श्रृंखला का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला गया, जिसमें मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी और 27 रनों से ये मुकाबला हार गई। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने शानदार 138 रनों की शतकीय पारी खेली। इस मैच में हरफन मौला खेल दिखाने वाले जैकब बेथेल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने 91 रन बनाने के साथ एक विकेट भी लिया। वहीं जो रूट को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान जापान की स्टार खिलाड़ी अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-17, 21-17 से हराकर पहली बार जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। 31 वर्षीय पीवी सिंधु इस जीत के साथ ही जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी। इस बार की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित होगी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले इस 30वें संस्करण में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी 5 श्रेणियों पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल में खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 2009 के बाद पहली बार भारत में वापसी कर रहा है। भारतीय दल में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के नेतृत्व में 10 भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। अगली खबर बॉक्सिंग से। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एशियन अंडर 19 एवं अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीते। भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अंडर 19 महिला वर्ग में भारत ने 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक जीते। 51 किलोग्राम भार वर्ग में चंद्रिका भोरेश पुजारी और प्राची ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं अंडर 23 महिला वर्ग में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। वहीं पुरुषों में स्वर्ण पदक विजेता रहे 50 किलो भार वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और मुक्केबाज गंगा ने 55 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले महिला हॉकी विश्व कप के लिए शुक्रवार को भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी, जबकि सोर्ड मराइन मुख्य कोच की भूमिका में रहेंगे। विश्व कप के लिए उसी टीम को चुना गया है जिसे कुछ दिन पहले एशियाई खेलों के लिए चुना गया था। कुश्ती में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक अपने नाम किए। भारत ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। भारत के लिए अमन सहरावत ने 57 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं में नेहा सांगवान ने 59 किलो और काजल ढोचक ने 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा अंतिम पंघाल, मानसी अहलावत और हंसिका लांबा ने अपने अपने भार वर्ग में रजत पदक जीते। साल 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इन खेलों में 126 भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। बीते हफ्ते के प्रमुख खेल समाचारों को जानने के बाद आइए कार्यक्रम खेल दर्पण के इस अंक को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एथलेटिक्स कोच तरुण सहरावत से भेंटवार्ता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पहले भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की और फिर खेल के मैदान में देश का गौरव भी बढ़ाया। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं तरुण सहरावत। मैं एक नजीवाद तहसील के एक छोटे सा गांव पड़ता है चमरौला
0: जी,
1: मैं उसका निवासी हूं। और मेरे फादर मुझे एमबीबीएस कराना चाहते थे अब मेरे

0: रुचि क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्षेत्र कंपटीशन था एथलेटिक्स का, तो महावीर पीटीआई जी थे एक हमारे, तो मैं बोला सर मैं भी खेलने जाऊँ, बोला नहीं नहीं पढ़ाई करो,
1: अच्छा
0: मैं चला गया। अगले दिन मैं चुपचाप वहाँ जहाँ कंपटीशन होता वहाँ गया
1: जी,
0: तो मेडल तो नहीं आया वहाँ, कोई इस प्लेस नहीं आई, मगर पीटीआई ने मुझे देख लिया, बोला इधर आ तू, मेरे दो तीन रैपट उसने साहब मारे।
1: अच्छा
0: बस उसी टाइम ही पता नहीं क्या हुआ, मन ये किया कि अब मैं करके दिखाऊंगा। गांव में नहर थी, नहर पर प्रैक्टिस करता था मैं
1: जी,
0: नहर पर प्रैक्टिस कर करके मैं अपना जिला स्तर का कंपटीशन खेला, वहां मेडल आए, फिर मंडल स्तर चार जिलों में खेला वहां मेडल आए। तो ललक ये थी कि बस इंडिया खेलना, उस टाइम पर पीटी ऊषा भागती थी
1: जी। अच्छा उस समय आपकी उम्र क्या थी?
0: छोटा था, सिक्स क्लास में था।
1: सिक्स क्लास में थे आप, और सिक्स क्लास में आपने पीटी उषा,
0: हाँ
1: पीटी उषा को देख के शुरू
0: हाँ,
1: किया था।
0: हाँ पीटी उषा जी थी, उनके मेरे पापा उनकी कहानियां सुनाते थे
1: जी,
0: तो बस यही उन्हीं की देखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। और एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए, कोच नहीं मिला, फिर भी मैं हौसला नहीं छोड़ा,
1: हौसला नहीं छोड़ा,
0: स्टेट चैंपियन में गए, वहां से मैं फिर जूनियर नेशनल में मेडल दिया
1: जी,
0: उसमें गोल्ड था, फिर यूनिवर्सिटी आया खेलने के लिए, जब इंटर हो गया वहां से मेरा सिल्वर मेडल था।
1: तरुण जी खेलों की दुनिया से निकल आप सेना में भर्ती हुए
0: जी,
1: ठीक है, तो जो सेना का अनुशासन था
0: जी
1: वो कितना काम आया खेलों में?
0: सर जब हम फौज के अंदर गए तो कुछ थोड़ा सा ऐसा था कि यार इनडिसिप्लिन टाइप रहता सिविल आदमी, जब हम वहां गए हमने थोड़ा सा ट्रेनिंग भी किया
1: जी,
0: और ट्रेनिंग में ये पता चला कि यार ये जो जो हम एक डिसिप्लिन में बॉडी रखते हैं ये हमारे माइंड को भी फोकस करता, हमारी बॉडी को भी फोकस करता, तो डिसिप्लिन तो मस्ट है, उसके बगैर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते।
1: अच्छा जैसे सेना में आप थे तो एक तो सेना की ड्यूटी होगी, एक आप खेल भी खेल रहे थे, तो दोनों को मैनेज कैसे करते थे?
0: ड्यूटी तो कभी कभी देनी पड़ती थी।
1: अच्छा
0: क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था और कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता कि मेरा स्पोर्ट्समैन अगर ड्यूटी देगा ज्यादा तो फिर प्रैक्टिस में मेडल नहीं ला पाएगा। फिर भी ऐसा नहीं था कि हम फ्री सो रहे थे, हम ड्यूटी भी देते थे, कुछ ऐसी ड्यूटीज थी जो हम कर सकते थे। और हमारे जो बड़े सीनियर थे कोचेस थे उन्होंने यही सिखाया था कि यार कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा तो खोना पड़ता
1: जी,
0: तो ये चीजें तो नॉर्मल थी कि ड्यूटी वगैरह ये तो नॉर्मल हो जाती है, मगर एक मेडल लाने के लिए जो हमारा संघर्ष था वो कड़ा था जी, उसमें डाइट फोकस हो जाता, उसकी मेहनत हो जाती, कभी कभी ऐसा होता कि इंजरीज आ जाती हैं, कभी हैमस्ट्रिंग खिंच जाना, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाना, तो उससे क्या होता था डिस्टरबेंस तो होता था एक खिलाड़ी को
1: जी। अच्छा आपने तरुण जी इंजरीज के बारे में बात की, चोट भी लग जाती है, तो ऐसे में हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा वीक कहीं ना कहीं होने लगता है, तो उससे कवर अप कैसे करते हैं अपने आप को?
0: सर जब एक स्पोर्ट्समैन को इंजरी हमें भी हो जाती है
1: जी,
0: और होता क्या है कि हम लोग एक्स्ट्रा कर जाते हैं कुछ वर्क।
1: अच्छा
0: जैसा अभी हैमस्ट्रिंग खींचने का मैटर हो जाता है कि भैया तुमने उस पर ज्यादा लोड कर दिया इसलिए वो खींची, और एक कोई भी मसल खींचने के लिए कम से कम नहीं तो 4 से 5 दिन लगते हैं सही होने के लिए
1: जी।
0: हम क्या करते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं तुरंत एकदम, यार मेरा कंपटीशन आ गया, मैं भी स्पोर्ट्समैन होता क्योंकि वो मेहनत करने वाला बंदा होता, रेस्ट कैसे करे,
1: बिल्कुल
0: अंदर से इतना दर्द होता है कि वो जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ होता।
1: अच्छा एक चीज और होती है कि जैसे एक तो अगर हम कंटिन्यू किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें अगर बीच में ब्रेक हो गया 10-5 दिन का तो वो भी बड़ा फर्क में
0: बहुत सर, हो जाता है। वो फर्क इतना पड़ता है कि अगर हमारी ट्रेनिंग 10 दिन छूट चुकी है
1: हाँ,
0: तो हम 3 महीने पीछे चले जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: उस बॉडी को कवर करने के लिए हमको कम से कम नहीं तो 15-20 दिन तक लगना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी तक हम बात कर रहे थे अपनी उस जर्नी की जब तक आप सेना में रहे
0: जी,
1: तो रिटायरमेंट क्यों लिया था?
0: सर इसका एक मेन कारण ये था कि जब मैं कभी इंडिया लेवल या फिर बाहर खेलने जाता था तो अपने क्षेत्र का बच्चा बड़ा कम निकलता था।
1: अच्छा
0: तो मुझे ऐसा लगा यार मैं अगर मेरी सर्विस पूरी हो गई है, पेंशन मेरी मिलने लगी है
1: जी,
0: तो यार मैं चलता हूँ और अपने क्षेत्र के बच्चों को निकालने का काम करूंगा।
1: अच्छा
0: जी मैंने उसी के खातिर एनआईएस किया, योगा कोर्स किया, न्यूट्रिशन का कोर्स किया कि मैं एक जब बच्चों को सिखाना जाऊं तो मेरे पास सब कुछ हो जो प्रॉपर मैं उसको फेस करा सकूं।
1: एनआईएस का आपने जिक्र किया, एनआईएस के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना चाहिए।
0: जी सर एनआईएस होता है एक अच्छा कोच बनाने के लिए।
1: अच्छा
0: उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि आपका कई सारे इवेंट मिलते हैं उसमें जो एथलेटिक्स के, जैसे एथलेटिक्स वाला एनएस कर रहा है या फिर कुश्ती में कर रहा है या फिर किसी और इवेंट में कर रहा है, अलग अलग इवेंट के अलग अलग होते हैं, वहाँ पढ़ाई होती है पूरी तरीके से, कैसे हम बच्चों को फेस करा दें।
1: अच्छा।
0: हाँ, जीरो से बिल्कुल एकदम, जब लास्ट में एक साल हो जाता है, टेस्ट होते रहते हैं बीच में, एक साल का होता है या पटियाला होता है, ग्वालियर होता है, कोलकाता में भी होता है, तो मैंने जो किया था वो पटियाला किया था।
1: अच्छा।
0: पढ़ाई भी बढ़िया होती है वहाँ, पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर हर एक टेस्ट को पास करना पड़ता है।
1: तो जैसे आपने कहा कि जो खेलों में प्रशिक्षण देना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स होता है, तो कौन अप्लाई कर सकता है इसमें?
0: सर, अभी तो इसमें कैटेगरी रख दिया है कि आपका नेशनल में मेडल होगा तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
1: अच्छा। मिनिमम क्वालिफिकेशन नेशनल का
0: मेडल जी, या फिर आप कोई ऐसा ओपन नेशनल खेल रहे हो जो हाई लेवल की गेम है और आपका मेडल भी नहीं आया, क्वालिफाई भी कर दिया, तो भी आप खेल सकते हो।
1: अच्छा।
0: इसके लिए शॉर्ट भी है, 6 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स भी है, एनआईएस का, आप उसे कर सकते हो, उसमें भी प्लेटफॉर्म है।
1: यानी जो प्रशिक्षण वहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं इनका भी फिटनेस
0: बिल्कुल
1: टेस्ट होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा, इस दौरान ही आपका जो ये खिलाड़ी वाला सफर था, जो आप बाधा दौड़ के प्लेयर हैं, तो ये भी चलता रहा कंटिन्यू साथ में, तो थोड़ा सा वहाँ का अनुभव हम जानना चाहेंगे कि आपने एशियन गेम्स में परफॉर्म किया और वहाँ पे सिल्वर मेडल आपको प्राप्त हुआ, कैसा लगा ये उपलब्धि पाकर?
0: सर, मैं जब खेलने के लिए गया तो अनुभव ये रहा कि मैंने ये देखा कि यार हमारे इंडिया से बाहर का कंट्रीज का, वहाँ एक तो टेक्निकल फेज ज्यादा है, सुविधाएं ज्यादा हैं, और दूसरा वहाँ के कोच अव्वल दर्जे के हैं। हमारे इंडिया में भी हैं बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, थोड़ा सा क्या ना कि माहौल नहीं मिल पा रहा।
1: अच्छा।
0: दूसरा, ट्रैक नहीं मिल पा रहा किसी फील्ड पे जाने के लिए। अभी मैंने एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ओपन किया है जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस एथलेटिक्स की, एथलेटिक का फिजिकल फिटनेस होती है वहाँ।
1: अच्छा।
0: जब आप अच्छे लेवल का फिजिकल फिटनेस करोगे तभी तो किसी गेम में जाओगे।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: उसका टेस्ट होते रहते हैं, स्किल टेस्ट, स्पोर्ट्स के, रनिंग के हों चाहे फिर किसी भी चीज के हों, तो फिर डिसाइड होता है कि भैया इसको इस गेम में उतारा जाए, 100% रिजल्ट देगा।
1: तो क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप वहाँ, क्या क्या कराते हैं बच्चों को?
0: सर, मैं वहाँ बच्चों को एथलेटिक्स का ऑल गेम कराता हूँ, जितने भी गेम है, चाहे वो जैवलिंग हो, लॉन्ग रेस हो, 100 मीटर हो, हडल्स हो, या फिर लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, सबका हम बढ़िया से उनको इवेंट वाइज जो प्रैक्टिस कराते हैं। दूसरा, फिजिकल फिटनेस बहुत अव्वल दर्जे का, हम लोग उनको भी ट्रेनिंग देते हैं जो अभी फिजिकल फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस की हो गई।
1: अच्छा, अच्छा।
0: या आर्मी की हो गई, उनको भी तैयार करते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, जो बड़े बच्चे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे बच्चे हैं जो अभी स्टेट खेलने जा रहे हैं या जिला स्तर में गोल्ड मेडल है, जो स्टेट में मेडल है, नेशनल की तैयारी भी कर रहे हैं, उस टाइप के बच्चे भी हमारे पास हैं।
1: आगामी अगस्त में
0: जी
1: आपका सिलेक्शन हुआ है दक्षिण कोरिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी?
0: सर, काफी ज्यादा तैयारी उसके लिए मेरी, और कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे में वर्क कर रहा हूँ सर।
1: अच्छा।
0: बिजनौर हमारा भी कच्चा ट्रैक है, वहाँ से मुझे स्पीड वर्कआउट करने के लिए, हडल्स वर्कआउट करने के लिए मैं हरिद्वार जाना पड़ता मेरे को।
1: अच्छा।
0: हफ्ते में 3 डेज एक सेक्शन मैंने रखा इवनिंग का, मैं यहाँ से बिजनौर से 11 बजे निकलता हूँ, और फिर हरिद्वार थोड़ा रेस्ट करके, और फिर मैं ट्रैक पर 3 बजे या 4 बजे जाता हूँ, 8 बजे मैं वर्कआउट करके फिर वापिस आना पड़ता है बिजनौर।
1: अच्छा, ये डेली का रूटीन है आपका?
0: हफ्ते में तीन दिन
1: जी। अच्छा।
0: और उसमें क्या ना, देखो ऐसा ना, स्पोर्ट्स में पैसा बहुत खर्च होता है भाई, बहुत ज्यादा, आपके शूज, आपके स्पाइक्स, आपकी किट महंगी आती हैं बहुत, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड है हमारे पास
1: जी
0: के उनको डाइट नहीं मिल रही, मैं खुद प्रोवाइड कराता हूँ क्योंकि उनमें टैलेंट है
1: जी।
0: तो हम यही चाहते हैं कि जो बच्चा जिला स्तर में या फिर मंडल स्तर में मेडल आता है स्टेट स्तर में, उनको कम से कम ये तो हो कि हाँ भाई डाइट प्रोवाइड करा दो, क्या क्या खाना, जैसे एक साई की डाइट चलती है प्रॉपर फेज में, उनको दिलाओ, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, ट्रैक अच्छा होना चाहिए।
1: सही बात है, प्रतिभा देखिए हर क्षेत्र में है, लेकिन सही गाइडेंस की जरूरत है और सही सुविधाओं की जरूरत है। एक चीज मेरे दिमाग में अभी अभी आ रही है कि जैसे आजकल बच्चे स्टेरॉयड वगैरह लेते हैं खिलाड़ी, तो वो कितना सही है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं बॉडी पे?
0: सर आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है, मैं भी सोचने वाला था इसको बताने वाला था। ये जो एक अभिशाप है स्पोर्ट्स में, हमारे

0: ये जो ये स्टेरॉयड वगैरह ले रहे हैं ना, दे कौन रहे हैं? पहले तो ये जो स्टेरॉयड, अगर ये सक्सेस होता तो भारत सरकार क्यों बंद करती इसको? ये एक ऐसा नशा है, ये ऐसा पॉइजन है जो हमारे स्पोर्ट्स को ख़त्म कर रहा है
1: खत्म कर रहा है।
0: जी। तो ये बहुत गलत है और मैं इसके हमेशा विरोध में खड़ा रहूँगा कि ये ना हो। अच्छी अपनी डाइट खाओ, घर का खाना बहुत अच्छा खाओ, ट्रेनिंग स्मार्ट तरीके से करो।
1: जी, तो बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। जड़ पे काम करना जरूरी है। कोई भी समस्या तभी खत्म हो सकती है जब हम उसकी
0: बिल्कुल
1: जड़ पर काम करें। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं लेना चाहूंगा कि जैसे हमारा क्षेत्र बिजनौर है, छोटा जिला है और प्रतिभा की कमी नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: तो अपने यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को क्या गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप?
0: मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को यही गाइडेंस देना चाहता हूँ भाई कि गलत राह पर चलो मत, और भैया मेहनत करो। अभी कुछ देर पहले सर बोल रहे थे स्टेरॉयड का, उसे तो यूज ही मत करो। उसको यूज करोगे आपके फेफड़े, आपके लीवर, ये सब खराब हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, मेहनत करो, बस शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। सर साथ में मैंने एक चीज़ और ऐड की है, हमारा जो यूथ है वो गलत ट्रैक पर जा रहा है। तो मैंने उस यंग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहा हूँ, और हर गांव गांव जाके पेरेंट्स को समझाया जा रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ, तो उस चीज़ का फेस कर रहे हैं। दूसरी बात ही जो अभी बताई थी हमने कि भैया स्टेरॉयड नहीं लेना, उस पर भी हम विचार करते हैं और घर वालों को भी समझाते हैं। दूसरा कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बच्चे जो है माँ बाप परेशान है उनसे कि यार हमें सुनते नहीं है।
1: जी, मतलब ये ऐसे युवाओं की बात आप कर रहे हैं कि जैसे
0: यस
1: जो एक तो बेरोजगार हैं,
0: हाँ
1: पढ़ाई
0: यस
1: लिखाई कम की
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: और ज्यादातर नशेखोरी की तरफ बढ़
0: यस
1: रहे हैं।
0: यस। अगर हमारा यूथ सही चलेगा, हमारा समाज बदलेगा, हमारा जो समाज की ग्रोथ बदलेगी, सभ्यता चेंज होगी, हमारे अगली पीढ़ी मजबूत होगी।
1: अगली पीढ़ी मजबूत होगी। बिल्कुल सही आपने बात की, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्रिमिनेलिटी भी बढ़ेगी।
0: यस बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: तरुण जी, आपने सेना में रहकर देश की सेवा की, खेल के मैदान में देश का नाम रोशन किया और अब नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामना है कि आपके मार्गदर्शन में और भी प्रतिभाएं आगे आएंगी और देश का गौरव बढ़ाएंगी।
0: धन्यवाद सर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए अब आपको सुनवाते हैं नेपाल और भारत के बीच खेली गई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी श्रृंखला में भाग लेने वाले कबड्डी खिलाड़ी तनिष कुमार से भेंटवार्ता। श्रोताओं, कार्यक्रम खेल दर्पण में आज हमारे साथ हैं युवा कबड्डी खिलाड़ी तनिष। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है तनिष।
2: धन्यवाद सर।
1: तनिष, भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय सीरीज हुई थी कबड्डी की, उस कबड्डी टीम के आप प्लेयर हैं, लेकिन सबसे पहले आपका एक शॉर्ट इंट्रो चाहेंगे।
2: सर, मैं मूर्तिदेव सरस्वती इंटर कॉलेज नजीबाबाद जिला बिजनौर का स्कूल का छात्र हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में हूँ। मुझे 8th क्लास से ही कबड्डी खेलने का शौक हो गया था। स्कूल में बहुत से लड़के कबड्डी खेलते थे, जो शुरू में डर लगता था कबड्डी के, मेरी पैर हाथ नहीं टूट जाए डर लगता था इस वजह से। फिर जब मैं उसमें फोकस करा तो फिर मेरा डर भागा। फिर हमारे स्कूल में GIC वर्सेस MDS के स्कूल के टीम का मैच हुआ और हमने उसमें पहला स्थान पाया, जब से मुझे बहुत शौक लगा कबड्डी खेलने का।
1: अच्छा तनिष, कबड्डी खेलने का आपको शौक है और आपने, जैसा आपकी बातों से लग रहा है कि स्कूल लेवल से आपने शुरू किया और 8th क्लास से शुरू किया, तो ये जो द्विपक्षीय सीरीज हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, तो इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ उसके बारे में बताइए।
2: सर, मैं अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ। मेन कबड्डी प्लेयर मेरा दोस्त विवेक है।
1: अच्छा,
2: तो उसने मुझे बताया हापुड़ में ट्रायल चल रहे हैं
1: जी,
2: वहाँ पर एक कोच थे अरुण कुमार सर, उन्होंने ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के होने के बाद मेरा इंडिया वर्सेस नेपाल के लिए सिलेक्शन हुआ, मैं राइट कॉर्नर रहा हूँ।
1: तनिष, टूर्नामेंट में जैसे हम गए नेपाल, तो आप पहली बार इंडिया से बाहर गए होंगे।
2: यस सर।
1: कैसा महसूस हुआ?
2: सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इंडिया में पहली बार गए, इंडिया से बाहर जाते जब बॉर्डर से गुजर रहे थे, कुछ अलग सी फील आ रही थी।
1: अलग सी फील आ रही थी, डर भी लग रहा होगा।
2: जी सर जी।
1: अच्छा, इस टूर्नामेंट में कितने मैच हुए थे दोनों टीमों के बीच में?
2: सर, दो मैच हुए थे, बस तीन, सॉरी सर, तीन
1: तीन, तीन मैच हुए
2: जी,
1: थे
2: जिसमें दो मैच जियो जीत जाती उसका फाइनल था।
1: अच्छा
2: जी सर,
1: यानी दो मैच नेपाल ने जीते और एक मैच इंडिया ने जीता। अच्छा, कबड्डी का आपको शौक है तनिष, तो आपने बताया कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई को और कबड्डी को कैसे मैनेज करते हैं?
2: सर, सुबह में मैं रनिंग करने जाता हूँ जो कि मेन है कबड्डी के लिए
1: जी,
2: कि जिसकी वजह से सांस ना फूले। 40 मिनट का गेम होता है कबड्डी का, और शाम को 5 बजे के समथिंग मैं अपने ग्राउंड पे जाता हूँ, ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता हूँ 3 घंटे। 3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद शाम को करीबन 9 बजे से लेके 10, 10:30 बजे लोग पढ़ाई करता हूँ।
1: अच्छा, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी कोच के अंडर में कर रहे हैं?
2: सर, कोच के अंडर में मैं JD अकेडमी में करता था।

0: पर अभी जो गर्मी की वजह से मैं वहाँ पर नोएडा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस घर पर ही कर रहा हूँ।
1: तो कहाँ देखते हैं अपने आप को आगामी जो 1-2 साल में अपने आप को, क्योंकि अभी आपकी उम्र काफ़ी कम है ददेश, तो आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
0: सर बस इंडिया की तरफ से खेलने का सपना है मेरा सर, इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है।
1: इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है। चलिए थोड़ा सा हम अपनी बात को आपकी पर्सनल लाइफ से जोड़ते हैं। देखिए जो भी श्रोता हैं जो हमें सुन रहे हैं तनिष,
0: जी
1: तो वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि खिलाड़ी ने कौन सी उपलब्धि हासिल की, वो जानना चाहते हैं कि उसके पीछे की मेहनत आपकी कैसी रही। तो जब आपको पता चला कि आप द्विपक्षीय सीरीज जो नेपाल के साथ इंडिया की हुई उसमें आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो उसके बाद तैयारी के लिए कितना वक्त मिला था आपको?
0: सर, मुझे करीबन 1 मंथ का समथिंग मिला था, जिसमें मैंने अपने पूरे 100% दिया, सुबह भी शाम भी प्रैक्टिस कर रहा था मैं। फिर मैंने सर थोड़ी सी टाइम के लिए पढ़ाई रोक दी थी
1: अच्छा।
0: जी सर, फिर मेरे क्लास टीचर बोल रहे थे तो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, यह है वो है। मैंने सर अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस चल रहे हैं सर ने, चलो कर लो कर। हमारे PTI सर हैं आलोक सर, वे भी हमें बहुत सोर्स करते हैं स्पोर्ट्स के लिए।
1: अच्छा, तो पूरी तैयारी की, आपको 1 महीने का समय मिला, उसका पूरा आपने सदुपयोग किया
0: जी
1: और
0: सर
1: जी जान मेहनत की। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये तो एक टूर्नामेंट की बात रही, इसके अलावा आपने कुछ मंडल स्तर पे खेला हो या नेशनल
0: जी सर
1: वगैरह
0: जी
1: खेला हो?
0: हाँ सर, हमारे स्कूल से स्कूल की टीम गई थी सर, वहाँ से किरतपुर, किरतपुर से नांगल जट, नांगल जट से अमरोहा, अमरोहा में जाकर मंडल स्तर खेलता है अमरोहा में, तो अमरोहा में जाकर अमरोहा की टीम फिर फाइनल हुई थी, पर उसमें मेरा सर सिलेक्शन हुआ था, पर वहाँ पे कुछ ऐसा कारण हुआ कि मैं जा नहीं सकेगा।
1: मंडल स्तर के लिए।
0: जी
1: अच्छा तनिष, जैसे देखिए कबड्डी का जो ये गेम है इसमें
0: जी
1: चोट भी काफी लगती है,
0: जी सर
1: तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मतलब इतनी ऐसी चोट लगी कि आपने सोच लिया छोड़ ही दूं कबड्डी
0: जी
1: को?
0: सर इंजरी की बात मैं स्कूल में ही बता रहा हूँ, मैं स्कूल में बड़े बड़े बच्चों के साथ खेल रहा था
1: अच्छा।
0: जी सर, तो मेरे गोड़ में इंजरी आई थी बहुत तगड़े वाली, तो मैंने ये तक बोल दिया था आज के बाद कबड्डी नहीं खेलूंगा। फिर
1: अच्छा।
0: सर 3 दिन बाद फिर दोबारा खेलने चालू कर दी, फिर 3 दिन बाद जिन बच्चे ने मेरी इंजरी करी थी उन बच्चों के ऊपर ही टैकल पॉइंट करे मैंने।
1: बहुत बढ़िया। तो ये होता है कि इम्प्रूवमेंट हमारा, कि इंजरी को हमने बहाना नहीं बनाया कोई और उससे हम उबर कर वापस आए। एक बात मेरे जहन में अभी आ रही है कि कबड्डी ही क्यों?
0: सर कबड्डी शुरू से फेवरेट स्पोर्ट्स है, छोटा सा था मैं सर करीबन मान के चलो 9 साल तक का, तो मेरी एक दीदी है वहाँ पर, तो उनके समूह के संती जो ना मैं सानपुर ये यहाँ
1: जी
0: पर कबड्डी खेलना,
1: जी जी
0: यहाँ
1: जी
0: से ये फर्स्ट आया था प्राइस मैंने।
1: अच्छा।
0: जब से और भी ज़्यादा लगन लगी फिर स्कूल में कबड्डी खेलने लगी
1: तो इसलिए आपका इंटरेस्ट कबड्डी में
0: जी
1: है। तो परिवार का कितना सपोर्ट है इसमें?
0: सर, परिवार का ही सपोर्ट है, पर घर वालों को भी डर लगता है कि कहीं बच्चा चोट फिट ना खा ले, इसलिए पापा ही थोड़ा मना करते थे कबड्डी मत खेलो, पर मैंने फिर भी छुप छुप के खेली।
1: अच्छा। एक कबड्डी का प्लेयर होने के नाते अगर मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल करूं, तो कबड्डी में अगर कोई सफल होना चाहता है बच्चा, तो क्या चीज़ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा?
0: सर पहले फोकस करना, कबड्डी पे फोकस करो और अपनी मेहनत में लगे रहो, ये मत सोचो कि मेरे से खिल नहीं रहा ये नहीं हो रहा, पर एक दिन जरूर हो जाएगा जब मेहनत करते रहेंगे, मेहनत का फल जरूर मिलता है सर।
1: कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि लंबाई में ज्यादा होते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो शॉर्ट होते हैं, तो लंबाई का कितना फायदा मिलता है?
0: सर लंबाई के लिए एक तो रेडर ही फायदा देता है, क्योंकि ग्राउंड अलग अलग टाइप के होते, सीनियर का ग्राउंड लंबा होता है, जूनियर का ग्राउंड छोटा होता है, तो रेडर का फायदा लंबाई से बहुत ज्यादा होता है
1: अच्छा,
0: कि रोकना मुश्किल हो जाता है रेडर को।
1: रेडर को
0: जी
1: यानी लंबाई का कहीं
0: जी
1: थोड़ा सा
0: सर
1: इम्पैक्ट जरूर पड़ता है
0: जी
1: खेल
0: जी
1: पे।
0: सर जी
1: अच्छा, थोड़ा सा हम बात इस बारे में करेंगे कि जहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं इसका, वहाँ पे क्या कैसा माहौल रहता है, किस तरह से सिखाते हैं कोच? जैसे सपोज आप यहाँ पर थे, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कबड्डी के बारे में आपको नहीं पता होंगी, तो वहाँ पे जाके आपका अनुभव कैसा रहा कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, स्ट्रेटेजी सीखने को मिली?
0: सर, कोच हमारे मतलब हर चीज़ बताते थे, मुझे जो ना राइट कॉर्नर पर चैन मारने नहीं आती, जैसे बोलते हैं कि ट्रेडर को रोके कैसे जाए, मतलब कवर कवर की कोई गलती नहीं होती, कवर को दिखाना दिखाना होता है,
1: अच्छा
0: तो उन्होंने मुझे ये भी सिखाई कैसे लगती है, अपने हाथ से हाथ पकड़ के सिखाई,
1: अच्छा
0: माई बेस्ट कोच मैं उन्हीं मानता हूँ सर।
1: अच्छा एक बेहतर कबड्डी प्लेयर बनने के लिए और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए जो मतलब आप सोचते हैं कि
0: सर
1: एक एक खिलाड़ी को मिलनी जरूर चाहिए?
0: सर कबड्डी प्लेयर को तो ऐसी बात है सर, डाइट पर अपना फोकस देना चाहिए, क्योंकि
1: अच्छा।
0: ये खेल जान गई है, जब बोलो शरीर में जान नहीं होगी तो बेकार है खेलना।
1: तनीष आपसे बात करके आज हमें बहुत अच्छा लगा, आपने आज बताया कि आपकी उम्र छोटी हो सकती है लेकिन

0: देखिए, सपने बड़े होने चाहिए श्रोताओं, तो इसी तरह मेहनत करते रहिए। तनिष, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: थैंक यू सर।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दत्तात्रेय वीणा वादन। वादक कलाकार हैं DR पार्वतीकर। आज आप सुनेंगे इनका दत्तात्रेय वीणा पर बजाया राग यमन कल्याण। तबले पर इनके साथ संगत की है अब्दुल सलाम ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे दत्तात्रेय वीणा पर बजाया राग यमन कल्याण। वादा कलाकार थे पंडित डी आर पार्वतीकर। तबले पर इनके साथ संगत की अब्दुल सलाम ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी

0: प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET-related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately. But now you're saying no,